मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

सुबह के सूरज ने अभी अभी तो अपनी आंखें खोली हैं कि उसकी चमक से आसमां के तारे छुप गए, चारों ओर सारे फूल खिल गए और पंछी अपने सफर को निकल पड़े। बहती हवाओं की ताजगी एक नई जिंदगी की कहानी को बयां कर रही है और कह रही है कि जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। आगे बढ़ने के इसी संघर्ष और मंजिल को पा लेने के हौसले के साथ लेकर नमस्ते लखनऊ का एक और उत्साह और उमंगों भरा अंक, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात लखनऊ, नमस्कार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, करते हैं सुबह सवेरे की शुरुआत देश दुनिया की खबरों के साथ। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में पहली मुलाकात किसान भाइयों के साथ। कार्यक्रम है कृषि चर्चा। आज कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर शिवनायक सिंह से भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल इस समय आपके खेत में है तो वहां सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं गन्ना वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जहां गन्ने की फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
2: जी किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, इस समय हमारी गन्ने की फसल खेतों में है। एक वो फसल है जिसको आपने सितंबर अक्टूबर बोया गया होगा, जिसको कि हम शरतकालीन गन्ना कहते हैं। दूसरा गन्ना हमारा है जो फरवरी मार्च में बोते हैं, और तीसरे गन्ने की फसल हम उसको कहते हैं जब गेहूं की फसल काट करके और विलंब में गन्ने की बुआई की जाती है। तो जो शरद काल में गन्ना बोया हुआ है तो उसमें कल्ले निकलने का समय पूरा हो चुका है, उसमें भरपूर कल्ले निकल आ चुके होंगे। आगे कल्ले निकलने से उनको रोकना है, लिहाजा ये जरूरी है कि अब आप अपने खेत में गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू कर दें, जिससे कि जो बाद में जो निकलने वाले कल्ले हैं वो ना निकले। क्योंकि बाद में जो कल्ले निकलते हैं वो पहले से जो निकले हुए कल्ले हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारी उपज में गिरावट का कारण बनते हैं। दूसरी हमारी फसल जो बसंतकालीन गन्ना है या लेट में बोया हुआ गन्ना है, तो उसमें कई एक हमारी गन्ने की फसलें होंगी जिसमें कि कल्ले निकलने की भी अवस्था चल रही है
1: जी।
2: तो ऐसे में देखिए, इस समय वातावरण में बहुत शुष्कता है, पानी बरस नहीं रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो पानी गन्ने को तो चाहिए। लेकिन किसान भाइयों से मेरा पूरा निवेदन है, गन्ने के खेत में जो है ना फ्लड मेथड से गन्ने की सिंचाई ना करें।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत है, चरम पर है
2: जी,
1: तो ऐसे में फसल की प्यास बुझाना जरूरी है
2: जी।
1: तो सिंचाई का उपयुक्त समय क्या होगा?
2: देखिए, ऐसा नहीं कि सिंचाई के जो उपयुक्त समय है सुबह शाम अगर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है।
1: डॉक्टर साहब, कोई टॉप ड्रेसिंग भी करनी है इस समय?
2: शरद काल का गन्ना है, वहां अगर आप टॉप ड्रेसिंग गन्ने में यूरिया की कर चुके हो तो ठीक है, लेकिन जो बसंत काल में बोया हुआ गन्ना है या जो लेट में बोया हुआ गन्ना है उसमें आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी है।
1: डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल जो इस अवस्था में है तो फसल सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
2: बहुत ही समसामयिक आपने प्रश्न पूछा है। इस समय देखिए, गन्ने में जो शीर्ष वेधक है, ऐसे में कीटनाशक दवा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। कि एक रसायन आता है जिसको कि हम क्लोरेंट्रा नीली प्रॉल के नाम से जानते हैं, इसकी 150 मिलीलीटर दवा को 400 लीटर पानी में मिला करके आप गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे ड्रेंचिंग करनी है, यानी पौधों को भिगोना है। प्रति एकड़ गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे प्रयोग करना है। गन्ने के खेत में समुचित नमी होनी चाहिए, यदि नमी नहीं भी है तो आप इसको प्रयोग में ला करके यानी ड्रेंचिंग कर दें और तत्पश्चात पानी चला दें, तो जिससे क्या होगा ना कि ये दवा गन्ने की पौधों के अंदर पहुंच जाएगी और जो कीड़ा लगा हुआ है वो नियंत्रित हो जाएगा और जो लगने वाले कीड़े हैं वो भी नहीं लगेंगे। जैविक नियंत्रण भी हमारे गन्ने की खेती में किया जा सकता है, और इसको ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, ट्राइकोकार्डे 50,000 जो आरजीवी अंडे होते हैं ये एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं, और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इन कार्डों को चार चार स्ट्रिप उसमें होती हैं, उनको निकाल करके आप गन्ने की पत्तियों के नीचे आपको स्टेपलर मार करके उसको
1: चिपका देना
2: है, और ऐसे आपको एक हेक्टेयर में 10 स्ट्रिप आपको लगानी है। तो इस तरह से आप जो है ना जैविक नियंत्रण विधि से भी आप गन्ने की कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
2: मेरा नंबर है 94-151-52-102, 94151-5

0: 102।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मिठास के किसान भाइयों बहनों का?
0: बीमारी रहित बीज अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो आप इस गन्ने की जो लाल सड़न की बीमारी है उससे काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं।
1: डॉक्टर एसएन सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें इस समय किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। डॉक्टर शिव नायक सिंह से भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है कार्यक्रम सुविचार का। आज का विषय संस्कार, स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का।
3: मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके ज्ञान या पद में नहीं बल्कि उसके संस्कारों में निहित है। ज्ञान किसी को बाहरी जगत का अधिकारी बना सकता है किंतु संस्कार ही उसे भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी बल्कि वो विद्यार्थियों के चारित्रिक उत्थान और नैतिक परिष्कार का साधन भी थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते, जहां विद्यार्थी केवल गणित, व्याकरण, वेद वेदांग या अस्त्र शस्त्र चलाना ही नहीं सीखते थे बल्कि सबसे पहले स्वनियंत्रण, अनुशासन और संयम का अभ्यास भी करते थे। गुरु का आचरण विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत पाठ्य पुस्तक होता। शिष्य उनके आचार विचार से प्रेरणा लेते और जीवन में उन मूल्यों को उतारते थे। मनुष्य का मन यदि असंयमित हो तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। मन में उठने वाली वासनाएं, इच्छाएं और विकार व्यक्ति को भटका देते हैं। इसी को रोकने के लिए शास्त्रों में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विकारों में फंस गया तो वो पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा और यदि साधना द्वारा शुद्ध कर लिया गया तो वही मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। एक विद्वान व्यक्ति यदि ईमानदार ना हो तो उसका ज्ञान समाज के लिए खतरा बन सकता है। एक बुद्धिमान यदि चरित्रहीन हो तो उसकी प्रतिभा विध्वंस का साधन बन सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति यदि संवेदनहीन हो तो वो समाज को बांधने के बजाय तोड़ देगा। इसीलिए शिक्षा का पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थी सुसंस्कारी और आत्मानुशासित नागरिक बने। संस्कार मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा जुटाना नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए योगदान देना है। संस्कार हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देते हैं। वो हमें वाणी का माधुर्य, व्यवहार की शालीनता और आचरण की पवित्रता सिखाते हैं। वे लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाकर हमें सेवा, सहयोग और परोपकार की राह पर ले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, इन्हें टालना संभव नहीं, परंतु इन्हीं कठिनाइयों में ये परखा जाता है कि मनुष्य का मन कितना दृढ़ और संस्कारित है। आलस्य और प्रमाद मनुष्य को नीचे गिराते हैं, परिश्रम और आत्मसंयम उसे ऊपर उठाते हैं। स्वार्थ और छल जीवन को अंधकारमय करते हैं, त्याग और सेवा जीवन को दिव्य बना देते हैं। वास्तव में विपत्तियां ही वो कसौटी हैं जिस पर मनुष्य के संस्कार परखे जाते हैं। शास्त्रों और संतों ने बार बार यही शिक्षा दी है कि स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और विचार उदात्त हो, धन संपत्ति क्षण भंगुर है पर संस्कार स्थायी है। ये सत्य है कि भौतिक प्रगति आवश्यक है, परंतु यदि उसके साथ आंतरिक संस्कार ना हो तो वो प्रगति अधूरी और विनाशकारी सिद्ध होगी। आज जब संसार भौतिकता, स्पर्धा और उपभोगवाद की दौड़ में उलझा हुआ है, तब ये और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने मन को संस्कारित करें। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल विद्या के केंद्र ना होकर चरित्र निर्माण के तीर्थ बने। घर परिवार में माता पिता बच्चों को केवल सुविधाएं ही ना दें बल्कि अच्छे संस्कार भी दें। समाज को अपने उत्सव और परंपराओं के माध्यम से लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और सेवा भाव जगाना चाहिए। संस्कारित मन ही जीवन को सच्चा वैभव प्रदान करता है। शिक्षा, धन, पद, प्रतिष्ठा ये सब तभी सार्थक है जब उनके साथ आंतरिक शुचिता और सुसंस्कार जुड़े हों। जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित करता है सच्चे अर्थों में वही विजयी कहलाता है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है।
2: संस्कार, डॉक्टर शिवा राकेश के स्वर में इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ के सफर में अगला पड़ाव ईश्वर की आराधना का। सुबह के 6:15 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना।

कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। और इसी भक्ति भाव से आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम की शुरुआत महेंद्र कपूर के स्वर में इस भक्ति गीत के साथ।

भटक भटक के मैं दुनिया हारा, मुश्किल में दिया न कोई साथ, सुलझ गई हर एक मुश्किल, माता रानी ने जब पकड़ा हाथ।

वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन तिरलोक है गुरु प्रभु अमृत की खान।

हरी हरी जपत फिरे कर्म किए न एक, फिर जग रूत फिरे हरि हित किए न एक। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और यही है हरि का नाम।

जब भी टूटने लगे हौसला और आस, भगवान याद दिलाती हैं मैं हूँ तेरे पास। ईश्वर के स्मरण के साथ और इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, संत अनूप सिंह और लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। प्रभु के सिमरन में अगली प्रस्तुति श्री रामचरितमानस गान, आइए सुनते हैं।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया और गायक कलाकार सुरेश वाडिकर। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत में समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य

0: अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आयव्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवोचत यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16 सहस्रं बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31 अधिक 200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य 5 दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2 दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति इष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः 40 अधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में, अब बातें सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय गर्मी में लू से बचाव। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और सूरज अपनी तपिश से जमीन

0: को झुलसाने लगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर पर इसका असर दिखने लगता है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अप्रैल से जून के बीच जो गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। ये न सिर्फ गर्म हवा होती है बल्कि शरीर के तापमान को असंतुलित करने वाली एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। आज हम बात करेंगे कि गर्मी में लू से कैसे बचा जाए और क्या सावधानियां हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी। श्रोताओं, लू लगना कोई मामूली बात नहीं है। जब वातावरण का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है और हवा में नमी कम होती है, तब ये गर्म हवाएं शरीर से तेजी से पसीना सुखा देती हैं। शरीर में मौजूद जल तत्व और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी, घबराहट, बुखार और कई बार बेहोशी तक महसूस हो सकती है। खास तौर पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और वे लोग जो दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान, ट्रैफिक पुलिस, उनके लिए लू गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गर्मी में खुद को सूरज की सीधी तपिश से बचाना ही सबसे असरदार उपाय है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इस समय बाहर निकलना अगर जरूरी ना हो तो घर में ही रहें, और अगर निकलना ही पड़े तो सिर पर हल्का गीला कपड़ा, टोपी या छाता जरूर रखें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले हल्के सूती कपड़े पहने और आंखों को धूप से बचाने के लिए चश्मा जरूर लगाएं। पानी पीना लू से बचाव में सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पीना चाहिए। दिन में बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ जैसे देसी पेय शरीर में ठंडक लाते हैं और खोए हुए लवणों की पूर्ति करते हैं। मुनक्का और खजूर को रात भर भिगोकर सुबह खाने से शरीर को ताकत मिलती है और लू से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आहार भी श्रोताओं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौसम में तली भुनी और मसालेदार चीजों से परहेज करें। हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन करें जिसमें मौसमी सब्जियां, दही, फल और तरल पदार्थ शामिल हों। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब गर्मी के अनमोल उपहार हैं जो शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं। दोपहर के भोजन में प्याज और पुदीने की चटनी जैसे देसी उपायों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज में प्राकृतिक शीतलता होती है जो लू से बचाने में मदद करती है। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो सबसे पहले उसे ठंडी जगह पर ले जाएं, उसके शरीर को ठंडे पानी से पोछें और उसे नमक शक्कर वाला घोल दें, यानी नमक शक्कर वाला पानी दें। यदि हालत गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लू का असर कई बार जानलेवा भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में कई बार इसे मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन ये लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। लू से बचाव केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि ये एक सामूहिक जागरूकता की भी जरूरत है। गांव और मोहल्लों में छोटे छोटे समूह बनाकर गर्मी के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें पानी पिलाते रहना और लक्षणों पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। श्रोताओं, मौसम का बदलना प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस बदलाव के साथ हमारी आदतें, खान पान और जीवन शैली भी बदले, यही समझता है। लू से बचना कठिन नहीं है अगर हम कुछ सरल सावधानियां अपनाएं और अपने शरीर को समय पर राहत दें। ये गर्मी की तपन केवल चुनौती ही नहीं, ये हमें अपनी देसी समझ, हमारे पारंपरिक ज्ञान और शरीर की जरूरतों से फिर से जोड़ने का अवसर भी है। तो आइए इस गर्मी में हम अपने और अपने अपनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें। दिनचर्या में ठंडक, संतुलन और सावधानी को शामिल करें। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: गर्मी में लू से बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 401.6 मीटर और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात्रि 11:10 से। आज इस श्रृंखला में सुनेंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को, विषय होगा स्वास्थ्य। दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे रात्रि 10 बजे। और अब आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में एक जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनेंगे पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। लोकगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी शिखा श्रीवास्तव। इनके स्वर में अवधि लोकगीत सुनेंगे सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोकरंग में और दोपहर 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे अनिमेश मुखर्जी के स्वर में गीत और भजन। हिंदी कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 8:00। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे महेंद्र भीष्म की कहानी बचाओ। वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। खेल जगत इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय हुआ शाम 7:31 पर। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में शाम 5:10 पर होगा इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता, राष्ट्रीयकृत बैंक की समेकित विकास योजनाएं। इस विषय पर राजीव कुमार से भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें नव दृष्टि के अंतर्गत जानेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा AI की नई पहचान के बारे में। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र की वार्ता स्वच्छ गांवों के लिए स्मार्ट समाधान। साथ ही होगी चर्चा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर। खेती किसानी ये कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 6:50 पर, जिसमें आज सुनेंगे भेंटवार्ता सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर श्याम राज सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके अलावा कार्यक्रम में कृषि विविधीकरण विषय पर चर्चा के साथ सुनेंगे लोकगीत और जानकारी की बातें। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें सुनेंगे भेंटवार्ता कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार। इस विषय पर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर आंगन में महिलाएं सुनेंगी नाटक माई मरे मौसी जिए। आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का और कलाकार होंगे नूतन वशिष्ठ, राघवेंद्र सिंह, सुधांशु पटेल, कपिल तिलहरी, वंदना श्रीवास्तव और ओम प्रकाश उजाला। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी चर्चा और डालेंगे एक नजर योजनाओं पर। आज सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश बैतबाजी। जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:15 पर। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिले की हलचल। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय बच्चे बचे आभासी दुनिया के भ्रम से। प्रेजेंटर होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। इन सभी कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं के मनोरंजन के लिए समय समय पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का भी प्रसारण होगा, जिसमें शामिल होंगे पत्र, ईमेल और फोन कॉल्स। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अपने रेडियो सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। प्रेजेंटर हैं डॉक्टर शिबा राकेश। आज विविधा कार्यक्रम में विषय है बच्चे बचे आभासी दुनिया के भ्रम से।

नमस्कार श्रोताओं, समय है सुबह के 7:10 का और ये समय होता है विविध रंगों से सजे कार्यक्रम विविधा का। और आज की विविधा में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शीबा राकेश। दोस्तों, आज सुबह जब मैं टहल रही थी तो मौसम बड़ा सुहावना था। गर्मियों के बावजूद एक सुहाना सा

सूरज सबका इंतजार कर रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी और वहीं बेंच पर बैठे एक 7-8 साल के बच्चे पर मेरी नजर पड़ी। उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थीं और उंगलियां तेजी से चल रही थीं। पास से एक बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी तितली गुजरी, पर उस बच्चे ने सिर उठाकर उस तितली को देखा तक नहीं। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास की वास्तविक दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही आज की हमारी और आपकी कड़वी हकीकत है। इसीलिए विविधा में मैंने सोचा कि आज बात एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर की जाए, और ये विषय है बच्चे और आभासी दुनिया का भ्रम। श्रोताओं, आज का दौर डिजिटल दौर है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस तकनीक ने हमारे बच्चों के सामने एक समानांतर दुनिया खड़ी कर दी है, जिसे हम आभासी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जो रील्स, वीडियो गेम्स, लाइक, कमेंट्स और फॉलोइंग से बनी है। ये दुनिया देखने में बड़ी रंगीन, बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। जरा सोचिए, अभी कुछ सालों पहले तक बच्चों की शामें कहाँ बीतती थीं? खेल के मैदान में, जहाँ धूल होती थी, पसीना होता था, दोस्तों से नोक झोंक होती थी और टीम भावना सीखी जाती थी। आज के दौर में बच्चों की शामें कहाँ बीत रही हैं? बंद कमरों में, अंधेरे में, आंखों के ठीक सामने चमकती फोन की स्क्रीन्स पर। और हम इसे आधुनिकता का नाम देते हैं। पबजी या फ्री फायर जैसे कितने ही नकली खेलों में नकली दुश्मनों को मार रहे हैं हमारे बच्चे और नकली जंग जीत रहे हैं। लेकिन इस नकली जंग में वो क्या खो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? वो खो रहे हैं अपना असली बचपन, अपनी सेहत और अपनी सामाजिक समझ। आभासी दुनिया का ये भ्रम बच्चों के कोमल मन को कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहला तो नुकसान यही है कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। घंटों एक ही जगह बैठे रहने से बच्चों में मोटापा, आंखों की कमजोरी और अनिद्रा जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। मानसिक स्तर पर वो एक शॉर्ट अटेंशन स्पैन के शिकार होते जा रहे हैं। उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मानिए इंस्टेंट नूडल्स। अब असल जिंदगी में चीजें उनके मुताबिक नहीं होती तो वो चिड़चिड़े, हिंसक या फिर पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यह दूसरा बड़ा भ्रम है बनावटी पहचान और अकेलेपन का। सोशल मीडिया पर सैकड़ों फॉलोअर्स या फ्रेंड्स होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा अकेला नहीं, ये सिर्फ एक संख्या है। असल में बच्चा अपनों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करता है। घातक स्थिति ये है कि वो स्क्रीन पर दिखने वाली चमक दमक को ही सच मान बैठता है। कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, हमारे बच्चे उसकी नकल करना चाहते हैं। जब वो अपनी असल जिंदगी की तुलना उस झूठी दुनिया से करने लगते हैं, तो उसके भीतर हीन भावना यानी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है। यहाँ मेरा मानना है कि कसूर केवल बच्चों का नहीं, एक समाज और अभिभावक के तौर पर हमें भी आत्ममंथन करने की गहन आवश्यकता है। आज कई घरों में देखा जाता है कि जब बच्चा रोता है या तंग करता है तो माँ बाप उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा देते हैं ताकि वो खुद शांत रह सके। आजकल कुछ लोग इसे डिजिटल नानी भी कहने लगे हैं। हम अपनी सहूलियत के लिए अपने बच्चों को एक ऐसी दलदल में धकेल रहे हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। जब हम खुद घर आकर बात करने के बजाय फोन पर बैठे रहते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। तो अब बात ये आती है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का उपाय क्या है? क्या इसका उपाय ये है कि हम अपने बच्चों से मोबाइल को पूरी तरह छीन ले? नहीं, आज के युग में ना तो ये मुमकिन है और ना ही ये ठीक तरीका है। तकनीक खराब नहीं, उसका अति प्रयोग खराब है। हमें अपने बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट सिखाना होगा। अभिभावकों को कुछ छोटे और जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे हम उन्हें क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, बात करें, उनके स्कूल, उनके दोस्त और उनकी भावनाओं को समझें। घर में कुछ नियम तय करें और एक नो गैजेट जोन जरूर बनाएं। जैसे खाना खाते समय या सोने से कम एक घंटा पहले परिवार का कोई भी सदस्य फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्वालिटी टाइम दें, बच्चों के साथ बैठकर बातें करें, प्रकृति और किताबों से बच्चों को जोड़ें।
बच्चों को बाहर घूमने ले जाएं, जहां वो पार्क जैसी जगह पर

जाकर पेड़ पौधे, मिट्टी और खुले आसमान का एहसास ले सकें। उन्हें कॉमिक्स और कहानियों की किताबें पढ़ने की आदत डालें। परियों की दुनिया आज भी आभासी दुनिया से कहीं ज्यादा रंगीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले आप खुद उदाहरण बने। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फोन छोड़े, तो सबसे पहले उपदेश नहीं आचरण ठीक करना होगा। हमें अपने बच्चों को इस आभासी दुनिया के माया जाल से बाहर निकालना ही होगा, ताकि वो असली दुनिया में खुलकर सांस ले सकें। वीडियो गेम के ग्राफिक्स चाहे कितने भी सजीव क्यों ना हो, वो असली बारिश की बूंदों और गीली मिट्टी की खुशबू का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो एक संवेदनशील इंसान बन सके, असली रिश्ते बना सकें। और ये याद रखें कि बचपन दोबारा नहीं लौटता, हमें इसे स्क्रीन के पिक्सल्स में खोने से बचाना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि हमारी जिंदगी जो ईश्वर ने हमें दी है, वो एक बहुमूल्य वरदान है। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनके पास असीमित ऊर्जा और बेहतरीन आइडियाज हैं। एक बार अपने बच्चे को अपने साथ बैठा कर ये बताइए कि जिंदगी का मजा दोस्तों के साथ खुलकर हंसने में है, ना कि चैट पर LOL या ROFL लिखने में। असली सुकून माता पिता के साथ चाय की चुस्की में है, ना कि किसी अजनबी के लाइक और कमेंट्स के इंतजार में। जहां हमारे बच्चे इतना समझे, वहां उन्होंने असली जिंदगी का मूल्य समझ लिया। मुझे आशा है कि विविधा का आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा। कल किसी नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे कार्यक्रम विविधा में। तब तक दीजिए शीबा को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा मीडियम वेव 401.61 मीटर पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं। सुनिए प्रादेशिक समाचार गोरखपुर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

0: प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो उद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर, न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

0: योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की, और आप है नमस्ते लखनऊ के सफर में। बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। प्रस्तुत है वायलिन वादन, कलाकार हैं पंडित डी के दातार। सबसे पहले सुनते हैं वायलिन पर राग अहीर भैरव। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगीति कर रहे हैं नयन घोष, स्वर मंडल पर राजन माशलेकर और तानपुरे पर मदन बोंगलम और एम दतार।

अभी आप सुन रहे थे वायलिन पर राग अहीर भैरव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंडित डी के दतार। वायलिन पर आइए अब सुनते हैं राग मिश्र भैरवी, रचना कहरवा ताल में निबद्ध है।

वायलिन पर ये थी राग मिश्र भैरवी की प्रस्तुति। कलाकार थे पंडित डी के दतार। आपके साथ तबले पर संगति की नयन घोष ने, स्वर मंडल पर राजन माशेलकर ने, तानपुरे पर मदन बोंगल और एम दतार ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए हिंदी समाचार पत्र का समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के

0: फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड

0: अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
5: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
3: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं और आइए आप सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम नमस्ते बरेली का पिटारा। कार्यक्रम में बात होगी आज ढेर सारी, आज क्या है खास, साथ ही साथ कल जो बहुत बड़ा दिन है हम सभी के लिए, क्या नहीं मालूम, बताते हैं। कल है विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम आपके साथ एक प्रश्न लेकर आए हैं प्रोग्राम में कि कैसे मनाएंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस। और श्रोताओं इस बारे में आप अपनी राय हमको लिख सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर, वहां आप ये जरूर लिखिए कि कैसे मनाएंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस। हम कुछ चुनिंदा विचारों को जरूर अपने कार्यक्रम में चलते चलते साझा करेंगे आपके नामों के साथ, लेकिन हाँ वो विचार ही हो। आप लोग हर प्रोग्राम को फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम समझते हैं, तो ठीक ऐसा नहीं है। प्रोग्राम में जरूर बताइए कि कैसे आप मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस। तो प्रोग्राम की हम बात करेंगे, प्रोग्राम है बेहद खास।

0: और खास है इसलिए क्योंकि आज 4 जून को हम मनाते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर इनोसेंट चाइल्ड एग्रेशन अगेंस्ट एग्रेशन। तो दरअसल बच्चे मन के सच्चे, बड़ा ही कोमल मन है बच्चों का, और हम देखते हैं कि बच्चों के मन पे समाज में, अपने आसपास घट रही घटनाओं का, परिवार में घट रही घटनाओं का, या हम हरी द्वारा की जा रही एक्टिविटीज़ का उनके मन पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है ना श्रोताओं, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। और हम ये देख रहे हैं कि आजकल बच्चों के मन पर, बच्चे भी देखिए कि थोड़ा आक्रामक हैं, कारण बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे, वो जो देख रहे हैं सीख रहे हैं, मोबाइल, डिजिटल क्रांति, आउटिंग कम है, आउटडोर गेम्स कम है, इंडोर गेम्स ज़्यादा हैं, एकल परिवार, ये बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं मिलकर ये व्यवहार परिवर्तन है। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आज के दिन को मनाने की, कि वो आज का दिन जो है वो इसलिए ज़रूर हम बताते चलें कि मनाया जाता है कि बच्चों के मन पर ये जो आक्रामकता का विचार हावी हो रहा है, ये समाज के विभिन्न पहलुओं से, आसपास घटित हो रही घटनाओं से घट रहा है, चाहे वो प्रभाव भावनात्मक हो, शारीरिक हो या मानसिक। तो इस ढेर सारी जो बातें हमने आपसे की आज के इस विशेष दिन पर, इन बातों को और तफसील से समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं भावना कंचन, जो कि एक पेशे से एक शिक्षिका भी हैं और बेहतर तरीके से आपको बताएंगी। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे बरेली के मनोसमर्पण चिकित्सा संस्थान के, जो कि एक मनोवैज्ञानिक शैलेश शर्मा द्वारा चलाया जाता है, वो भी हमसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और बात करेंगे बच्चों के मनोविज्ञान के संबंध में आज के दिवस के बारे में। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ बता रही हैं भावना कंचन इस दिवस के बारे में।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं भावना कंचन। आज हम बात करेंगे अपने बचपन की। कितने खुश होते हैं ना बचपन में। बचपन होता ही ऐसा है, ना कोई परेशानी ना कोई टेंशन, बस खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। और यही बचपन खतरे में पड़ जाता है जब वो कुछ ऐसा देखता है, आसपास के माहौल को महसूस करता है जो उसके लिए नहीं बना है। कई बार युद्ध, हिंसा या घर में जो आपसी कलह होता है ना, उसका बचपन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जब इस तरह का नकारात्मक वातावरण देखते हैं तो वो अंदर तक हिल जाते हैं, उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत सारी नेगेटिविटी ले करके बैठे होते हैं, किसी से कहते तो नहीं है लेकिन हाँ, मन में बहुत कुछ होता है और यही नकारात्मकता धीरे धीरे उनके मन में घर कर जाती है। बड़े तो हो जाते हैं लेकिन उतना खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि मन में डर बैठा होता है ना, और ये डर सिर्फ इस वजह से क्योंकि आसपास उन्होंने ऐसा कुछ देखा होता है जो उन्हें नहीं देखना होता, यानी कि वातावरण, आसपास का माहौल, लड़ाई, झगड़ा, गाली गलौज और कई बार तो युद्ध और हिंसा की चीज़ें, जिसका बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा मानसिक असर पड़ता है, शारीरिक और भावनात्मक असर पड़ता है। वो डर, तनाव, दुख और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और इसी वजह से वो नेगेटिव हो जाते हैं। कई बच्चे पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, उनका बचपन प्रभावित हो जाता है और उनके आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। कुछ बच्चों को चोट लग सकती है, घर छूट सकता है या फिर अपने प्रियजनों से बिछड़ने का जो गम होता है ना, इन सब कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, आसपास का जो माहौल है उसको सुरक्षित रखें और शांतिपूर्ण वातावरण दें, क्योंकि जो वातावरण होता है ना आसपास का, वो बहुत ज़्यादा असर डालता है बच्चों पर। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वर होते हैं, वो आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और फिर महसूस करते हैं। कहा जाता है ना कि बच्चे जितना किताबों से पढ़कर नहीं सीखते उतना आसपास के माहौल को देखकर सीख जाते हैं।

0: वो आने वाला कल है और इसलिए हमें मिलकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और साथ ही साथ हिंसा के खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बच्चों को ऐसा माहौल दें कि वो खुल कर जिए, खुल कर हंसे, अपने मन की बात शेयर कर पाएं और साथ ही साथ आगे बढ़ें। नमस्कार।
1: तो बच्चे जब तक खुलकर नहीं जिएंगे तब तक वो कैसे फूल की तरह खिल पाएंगे, उनके मनोविज्ञान की बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बरेली के मनोवैज्ञानिक शैलेश शर्मा जी, जो कि अपना एक मनोसमर्पण संस्थान सेवा भाव से निःशुल्क रूप से भी चलाते हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। तो श्रोताओं, फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरेली के मनोवैज्ञानिक और मनोसमर्पण चिकित्सा संस्थान के संस्थापक शैलेश शर्मा जी। शैलेश शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: तो शैलेश जी, हम लोग आज यानी कि 4 जून को मनाते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन भी कहते हैं। शैलेश जी, कुछ हमारे श्रोताओं को इस दिन के बारे में बताइए कि क्या ये दिन है, क्यों मनाया जाता है?
2: जी देखिए, आज हम इसलिए ये दिन मनाते हैं कि जैसा कि आपको मालूम है और हमारे श्रोता भी जानते हैं कि आजकल पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बच्चों के जो शारीरिक और मानसिक और जो भावनात्मक पीड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये पीड़ा दूसरों के जो भावनात्मक दूसरा का जो अग्रेशन है उसका उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी पीड़ा बढ़ गई है। आजकल के बच्चे कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल हो, स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, कहीं पे भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। हर जगह असुरक्षा का माहौल इसलिए है क्योंकि बच्चों को किसी ना किसी प्रकार से और लोगों से खतरा बढ़ गया है पहले की तुलना में। और इसका मेन कारण ये भी है कि लोगों में अपने जो उनकी भावनाएं हैं और जो नकारात्मक भावनाएं हैं जिनमें सबसे ज्यादा अग्रेशन है और लोगों का अग्रेशन बढ़ गया है और वो अग्रेशन उनको मैनेज करने का एक सही तरीका नहीं मालूम है, जिसका शिकार बच्चे हो जाते हैं।
1: साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो एक बच्चा जो है वो कोमल है, उसका मन कोमल है, मासूम है और उसकी जो पीड़ा है विशेषकर मानसिक भावनात्मक या फिर शारीरिक किसी भी तरीके की पीड़ा से वो पीड़ित हो सकता है, तो कुल मिलाकर के उस चीज को पहचानने का ये विशेष दिन है।
2: जी, और इसलिए भी क्योंकि देखिए बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि वो सामने वाला जो अग्रेशन कर रहा है उनके साथ में, जो भी वायलेंट बिहेवियर कर रहा है, उस वायलेंट से कैसे बच सके।
1: जी जी। तो शैलेश जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि खास तौर से इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो कि मासूम भाव रखते हैं, मासूम होते हैं, उनका ये जो किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक जो शोषण हो रहा है, इसकी रोकथाम के कुछ प्रमुख उपाय बताइए।
2: सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनके माता पिताओं से मेरा ये आग्रह रहेगा कि बच्चों में इस प्रकार की समझ विकसित करें और समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चों की बातों को सुना जाए। जब तक आप बच्चों की बात को नहीं समझेंगे तब तक आप उनके विचारों को समझ नहीं पाएंगे और उनमें सही और गलत का फैसला आप विकसित नहीं कर पाएंगे। पहले बच्चे की सही और गलत भावनाओं को और उनके विचारों को सुने कि बच्चा कहना क्या चाह रहा है और उस हिसाब से उनको बताया जाए कि सही और गलत में अंतर क्या है। सही गलत का जब आप अंतर बताएंगे तभी बच्चे में पूरी तरीके से मैच्योरिटी बढ़ेगी और उसके अंदर समझ भी बढ़ेगी कि हमें किस तरीके से सही और गलत के प्रति हमको अंतर समझ के उसके प्रति में व्यवहार करना है, आगे बढ़ना है और लोगों से हमें डील भी करना है। और जहाँ पे भी सुरक्षित स्थानों पे बच्चों को भेजें और उनके साथ में हमेशा सुरक्षा का माहौल क्रिएट करें, अच्छा वातावरण क्रिएट करें जो कि परिवार से ही शुरू होता है और धीरे धीरे समझ बढ़ाएं और लोगों में स्वयं के बच्चों के प्रति भी और उनके बच्चे के प्रति भी जागरूकता जरूर फैलाएं।
1: बिल्कुल।
2: और हमें जो ट्रस्ट है मनोसमर्पण सेवा संस्थान, ये हमेशा कार्यरत और समर्पित है। यदि किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो हमारी संस्था के माध्यम से भी अपने बच्चे के बारे में सही जानकारी

0: पढ़ाई ले सकता है, बच्चे की काउंसलिंग भी करा सकता है,
1: जी
0: ये
1: जी
0: टोटली निःशुल्क है बच्चों के लिए।
1: जी जी बिल्कुल शैलेश जी, आपकी संस्थान और आपके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: वेल, आपने ट्यून किया है 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। और श्रोताओं, प्रोग्राम में हमने आपसे पूछा है एक प्रश्न और आप भी शामिल हो सकते हैं कार्यक्रम में। जल्दी से जल्दी हमारी पोस्ट पर जाकर बताइए कि कैसे मनाएंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। तो सबको इस दिन के मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे हम आगे, लेकिन आप कैसे मनाएंगे, अपनी राय, अपने विचारों को लिखिए हमारी पोस्ट पर। हम कुछ चुनिंदा और संबंधित पोस्ट और विचारों को जरूर साझा करेंगे अपने कार्यक्रम में आज ही। तो जल्दी से जल्दी अपने विचारों को वहां लिखिए। लेकिन श्रोताओं, आपको बताते चलें, इन दिनों हम लोग देख रहे होंगे कि एक प्रक्रिया चल रही है, भारत की जनगणना 2027। हम देख रहे हैं कि हमारे घरों पर आ रहे हैं जनगणना कर्मी और वो इस समय मकान सूचीकरण का काम चल रहा है। देखिए, किसी भी देश की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ होता है वहाँ की जनगणना और सुरक्षित और सटीक आंकड़ों का। तो जब भी जनगणना के अधिकारी आपके पास आए, आप उनको सहयोग करें, अपनी सटीक जानकारी उनको दें और संभव हो तो इतनी धूप में वो आपके घर आ रहे हैं, उनसे एक गिलास पानी को पूछ लीजिए, क्योंकि वो हमारे ही बीच के लोग हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जिससे हमारे पास एक ऐसा डेटा आएगा, एक ऐसा आंकड़ा आएगा जिससे कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी, जिससे सड़कें, नालियां, बिजली और भी मूलभूत आवश्यकताएं जिनकी आवश्यकता है वो उनके बारे में सटीक जानकारी होगी, तभी सरकारें जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना पाती हैं। तो कुल मिलाकर के भारत की जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। समाज में सारे ही काम हो रहे हैं, लोग अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस समय छुट्टियां चल रही हैं, हालांकि टीचर पढ़ाने जाता है और बिचारी जो मतलब हमारे समाज के ही जितने भी लोग हैं, वर्गों से जितने भी सभी लोग आते हैं, सब अपने अपने कार्यों पर जाते हैं। ऐसे में जनगणना कर्मी चाहे वो किसी भी विभाग के हों, जब हमारे पास आ रहे हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम अपना पूरा पूरा सहयोग उन्हें दें और बड़े ही प्रेम पूर्वक उनके द्वारा मांगी गई जानकारी उन तक साझा करें। हाँ, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जनगणना कर्मी हैं, अगर आपको लगता है कि आप उनकी पहचान के बारे में ज़रूर उनसे जान सकते हैं, उनके पास एक पहचान पत्र होगा जिससे आपको मुतमईन होंगे, आप सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, जिसको हम जानकारी दे रहे हैं वो वही जनगणना कर्मी है जो इस प्रक्रिया के अधीन नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल अपना सहयोग दें, ये हमारे लिए ही है। और जल्दी से जल्दी हमारी पोस्ट पर अपने विचार साझा कीजिए कि कैसे मनाएंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम, सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, आपको हम बताते चलें कि हमारे कार्यक्रम में हमने आपसे पूछा है कि कैसे मनाएंगे आप विश्व पर्यावरण दिवस, तो अपनी राय हमारी पोस्ट पर जरूर लिखिए, हम शामिल करेंगे हमारे श्रोताओं के द्वारा लिखे गए कमेंट्स को उनके नाम के साथ। अब बताते चलें आपको बरेली और आसपास की बातें। देखिए, कल हम सबने देखा होगा कि दिल्ली में एक भीषण अग्निकांड हुआ है ना श्रोताओं, तो दरअसल बहुत सारी चीज़ें कई बार गैर जिम्मेदाराना चीज़ें होती हैं और हम देखते नहीं हैं कि बसावट घनावट जो चीज़ें हैं इस तरीके से हो जाती है कि वो इतनी घनी हो जाए कि वहाँ वेंटिलेशन ना हो, तो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है किसी न किसी स्तर पर। तो हम भी इस प्रकार के अग्निकांड से बच सकें, इस प्रकार की घटनाओं से बच सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी नियम जो कि बनाए गए हैं विकास प्राधिकरणों द्वारा उनका हम स्वयं तो पालन करें, साथ ही साथ यहाँ बहुत ज़रूरी बात है उन सभी जिम्मेदार लोगों को, अकाउंटेबल लोगों को, चाहे वो सरकारी अफसरान हो, चाहे वो प्राधिकरण विकास के लोगों हो, नगर निगम या जो भी उस काम को निगरानी करने के जिम्मेदार लोग हैं, वो भी समय पर अपनी निगरानी रखें और इस प्रकार के अतिक्रमण को, इस प्रकार की बसावट को जो कि अवैध है, ज़रूर इसको नज़र में रखें जिससे कि इस प्रकार के भीषण अग्निकांड होने से बच सकें। तो कुल मिलाकर के अब बरेली के भी बहुत सारे कई मोहल्ले ऐसे हैं, कई होटल रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो घनी बसावट में हैं, जो इस तरीके से बने हैं, इन पर ध्यान देने की बात है और नगर निगम और प्रशासनिक अफसर अब इस ओर भी ध्यान देंगे। साथ ही साथ बरेली के जो कमिश्नर सर हैं उन्होंने भी मंडल में, यानी कि बरेली मंडल में जो पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी एक टीम बनाई है और कोर टीम बनाई है और जो खास तौर से फोकस करेगी बरेली और आसपास के क्षेत्रों को।

में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं तलाशेगी। देखिए, बहुत सारी आसपास की खबरें होती ही हैं, लेकिन खबरों से इम्पॉर्टेंट जो मैसेज हमको मिलता है या जानकारी हम तक पहुंचती है, उसमें भी एक संदेश छुपा होता है। हमें पहचानना है उस संदेश को। हम देख रहे हैं इन दिनों लगातार ट्रेनें चल रही हैं, बहुत सारी ट्रेन चल रही हैं, और समाचार भी है कि समर स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन हाँ, रेलवे प्रशासन से जो बहुत सारे यात्री हैं गुहार कर रहे हैं कि भाई अभी इन ट्रेनों को कम से कम समय पर तो चलाइए। स्पेशल ट्रेनें चलाने का क्या मतलब है अगर वो चार चार आठ आठ और दस दस घंटे लेट चलें, तो इससे बड़ी ही तकलीफ होती है, खासकर इस गर्मी के मौसम में। तो प्लीज़ इस ओर ज़रूर ध्यान दें कि समयबद्धता को लेकर जो चिंताएँ व्यक्त की हैं यात्रियों ने। अब ये तो पॉइंट हुई भाई वहाँ पर, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमारे भी हैं। देखिए, हम बार बार लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं आपसे कहते हैं कि जिस भी चीज़ का हम प्रयोग करें, हमेशा इस बात को दिमाग में ये रखें कि हमारे बाद उस चीज़ का प्रयोग कोई और भी करेगा, खास तौर से सार्वजनिक जगहों की और सार्वजनिक चीज़ों की बात करें। तो अब हम आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की बात करें। जैसे उदाहरणतः हम लोग ट्रेन में जाते हैं, देखते हैं टॉयलेट कितने गंदे होते हैं। कारण ये है कि अब फ्लश नहीं किया या पानी नहीं डाला या ठीक से, ये बेसिक सिविक सेंस है कि अब बेसिन में ही गुटखा खा के थूक दिया, ये इस प्रकार के धूम्रपान करना तो वैसे ही सार्वजनिक स्थानों पर अपराध है। अभी मैं आपको बताते चलूं श्रोताओं की, सुबह सुबह मैं आ रहा था, साफ सड़कें थी और बीच सड़क पे लगभग आधी चार पाँच फिट अंदर को सड़क पर इतना बड़ा जो है वो लाल रंग का गुटखा टाइप का थूका हुआ था। ऐसा लग रहा था एक वो दूर से ही धब्बा चमक रहा था। क्यों करना है ये सब? प्लीज़, ये जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा, और चल जाना चाहिए अब तक, कि कौन सी जगह हमें थूकना है और कौन सी जगह नहीं, उस दिन ये ज़रूर हम कायदे में सही मायनों में सिविक सेंस अपना पाएंगे और बरेली को उच्च स्तर तक ले जा पाएंगे।

और श्रोताओं, अब हम पढ़ते चलें कि हमारे कुछ चुनिंदा साथियों ने जरूर से लिखा है कि अपने पर्यावरण, ये हैं हमारे नियमित श्रोता राजेंद्र गंगवार जी, आप कहते हैं अपने पर्यावरण को बचाए रखना क्योंकि आगे आने वाले समय में पेड़ नहीं रहेंगे, जीवन ही क्या रहेंगे क्योंकि आजकल पेड़ों की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, इससे हवाएं भी जहरीली होती जा रही है जिससे मुश्किल होता जा रहा है। देखिए ये बात राजेंद्र जी सबको पता है कि पेड़ कट रहे हैं, कम हो रहा है, हो तो सब रहा है, ये करना क्या है, इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न था। राजेंद्र जी कैसे मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस? खैर, आप इन्होंने कहा है कि चाहे जन्मदिन हो या सालगिरह, एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाएं। बिल्कुल जरूर लगाएंगे। राजेंद्र जी, बेहतर होता आप यहाँ जरूर लिखते कि आप कल के दिन को किस प्रकार से मनाएंगे। तो अगले हमारे साथी हैं, आप हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, और आप कहते हैं हम पर्यावरण दिवस को मनाएंगे पेड़ लगाकर। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही संदेश लिखा है, जैसा कि हम वर्षों से करते आए हैं, प्रेरित करेंगे लोगों को पर्यावरण बचाने के लिए। जी हाँ डॉक्टर साहब, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज किया और हमारी आशा भी यही थी इस प्रश्न को लिखने की, हम अपने श्रोताओं से जान सकें कि वो और भी किन किन माध्यमों से विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। जैसे कि आप पानी को बचा करके विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं, आप पानी को ज़्यादा वेस्ट न करके भी विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं, आप हमारे छत पर, अपनी छत पर कुछ पक्षियों के लिए पानी और दाना रखकर भी विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं, आप सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा कचरा न फैलाकर भी विश्व पर्यावरण दिवस मना सकते हैं, आप कल ये प्रण भी ले सकते हैं कि कल से आप सिंगल यूज प्लास्टिक यानी पॉलिथिन का प्रयोग न करेंगे, न या फिर कम करने की प्रतिज्ञा लें और फिर न करें। आप ये भी प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि कल से आप धूम्रपान नहीं करेंगे, कोई करेगा तो उसको टोकेंगे, लेकिन टोकेंगे तो तभी ना जब खुद नहीं करेंगे। तो आप ये भी प्रण ले सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं इनमें सरकार रोपित करती है, लेकिन क्या हम उन्हें गोद नहीं ले सकते? क्या अपने आसपास लगाए जा रहे वृक्षारोपण कैंपेन में हम उनमें जल से सिंचाई करने का कुछ अपनी तरफ से प्रण नहीं ले सकते? तो देखो जाए तो 100 तरीके हैं इस दिन को मनाने के लिए। हमें उम्मीद थी कि आप लोग जरूर लिखेंगे, बहुत सारे कॉमेंट्स आए भी हैं, जो दो प्रासंगिक कॉमेंट्स थे वो हमने लिए। उम्मीद है हम लोग लगातार आकाशवाणी बरेली के माध्यम से पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बहुत सारी बातें आपसे करते रहेंगे। आप प्रोग्राम से जुड़े रहिए, फिलहाल घड़ी ने बिल्कुल

सारा कर दिया है कि समय नहीं बचा है। आइए अब हम आपको जो है ले चलते हैं आगे लोकगीतों की तरफ, और कार्यक्रम लोकगीतों का समय हो गया है। फिलहाल सुनते हैं कार्यक्रम लोकगीतों का ये पहला मधुर लोकगीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

प्रतिभा के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकगीतों का अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

विशाल मिश्रा की आवाज में हक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था, विशाल मिश्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी की बोल है मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दिवस है, यानी हिंसा और आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बच्चों की दुनिया सपनों और उम्मीदों से भरी होती है, उनकी सुरक्षा, प्यार, दुलार, शिक्षा उनका अधिकार है। लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन निर्दोष बच्चों की ओर आकर्षित करना है जो किसी न किसी रूप में आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए हैं। ये दिवस सिर्फ संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि हम सभी को बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अस्थिरता का वातावरण है, इन सब से होने वाले दुष्प्रभाव में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज और समाज सभी की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त प्रेमपूर्ण वातावरण मिले ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपने मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्य पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सिमर कौर और नवेश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना। अब सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाज़ों में ये सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है।
2: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। ट्यून किया है आपने 100.4 FM और आइए सुनते हैं लोकगीत। लेकर आ रहे हैं आपके लिए गीतापंत के मधुर स्वर में ये मधुर लोकगीत।

गोपाल कुमार वार्ष्णेय के गाए इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकगीतों का अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:45 हो रहे हैं और आपको एक बार पुनः जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया था।

एसपी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एसपी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन। हम तुम

0: ये था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं। श्रोताओं, अब आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चलाई जा रही सीरीज आकाशवाणी के दीवाने में आज जो बाइट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो संदेश आपके लिए लेकर आए हैं, ये संदेश है माननीय अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का। आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
4: आकाशवाणी को 90 साल हो गए और 90 साल में आकाशवाणी ने जो देश की सेवा की है वो अपने आप में एक स्मरणीय है। आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, न्यूज, बच्चों के खेल के, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जितने कार्यक्रम आते हैं उसमें मैं यहाँ के जो कंपेयर करने वाले हैं या उद्घोषणा करने वाले हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं। मैं आकाशवाणी में कार्य करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ।

आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए, और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, आकाशवाणी बरेली @gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI, बरेली BARREILLY, आकाशवाणी बरेली @gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद जो कि कार्यक्रम है आपका अपना फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपकी पसंद हमारे पोस्ट पर हम आमंत्रित करते हैं। कार्यक्रम जब तक आपके हमारे पास मैसेज आएंगे तब तक के लिए हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं फिल्म वारिश का ये गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत है उत्तम जगदीश का।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं कुछ पत्र, और ये पत्र हमें मिला है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा रियाज, रिफाकत शमरीन, रेहान माहिरा नूर। ये अगला ही पत्र हम जो पढ़ रहे हैं, इसे लिखा है जंक्शन से गरीब भाई नासिर, सादिक, विक्की, वीरेश चौहान, सोनू, अयान खान, प्रदीप पाल और आपके सभी साथी। ये गीत सुनना चाहा है छावनी अशरफ खां, पानी की टंकी के पास होली चौक से, रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा देवी, रीता देवी, विनोद और वंश, ग्राम बपोस, बमरेली, तहसील मीरी, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से ये पत्र भेजते हैं हमें। राम सरन दुबे, अवधेश, कमलेश, सर्वे, सुमन, सुजाता, काजल, अर्चना, सुषमा, अमित, अनिकेत और राधिका दुबे। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म 1942 लव स्टोरी का ये सॉन्ग कुमार सानू की आवाज़ में।

आप श्रोताओं के कुछ कमेंट्स हमें हमारे नमस्ते बरेली वाले पोस्ट पर आ रहे हैं। उनमें से आप है मालवा रेडियो श्रोता संघ गुल बालो तहसील आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से कुंवर कृपाल सिंह, विक्रम दिलीप, नरेंद्र सिंह और आपके परिवार के सभी साथी। आप हैं मुकेश राजपूत ग्राम कुमारपुर से, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और आपके सभी साथी। ये मैसेज हमें भेजा है पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य।

जिला दुलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक, बलवीर और आपके सभी साथी।

सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम में आप हमें कमेंट कर रहे हैं हमारे नमस्ते बरेली वाली पोस्ट पर, और हमारे पास ढेर सारे आपके पत्र भी हैं। तो फिलहाल कुछ चुनिंदा कमेंट्स को शामिल करते हैं जो आपने हमें किए हैं हमारे नमस्ते बरेली की पोस्ट पर। आप हैं दयानंद भवानीपेट शोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मस्कीन, ऋतिका वानी, आरव चंद्रकला, काशीनाथ गणेश, संगीता आरोही और प्रियांशी। पलारी छत्तीसगढ़ से संगीत की फरमाइश की है हमें नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा और ईशान देवांगन। कटरा चांद का पुराना शहर से आप हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण दृष्टि और मानवी मौर्य। ये पत्र हमें भेजा है किला फूलबाग छावनी से विशन दत्त, भारद्वाज, शिवदत्त, गंगादत्त, गोपाल, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, भावना, देवकी देवी भारद्वाज, शिवरा, नीलम भारद्वाज और श्री राम राठौर। इस गीत की फरमाइश करते हैं तलैया उलर जागीर से फजलुद्दीन अबरार और अफजाल, नकटिया से ताराचंद और बबली इस गीत को सुनना चाहते हैं। ककराला बदायूं से ये पत्र हमें भेजा है मशहूर खान, सरफराज, याकूब, विकास, कर्मवीर, प्रवीण, अनिल, काजल, चंचला और रेखा कश्यप ने इस गीत की फरमाइश करते हैं हमें। वजीरगंज लहरापुर से होशियार मोहम्मद शेर, खुशनुमा भी, खुश मोहम्मद, नूरजहां बेगम, संजुरन, जीशान, आसमीन और चांदनी भी, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साजन का ये गीत।

0: आपकी चाय।
1: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है,
1: अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
1: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना। अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद और हमारी पोस्ट आ चुकी है इस समय हमारे कार्यक्रम से संबंधित। ये मैसेज हमें मिला है सिकलापुर मौर्य मंदिर के पास से रतनमाला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव और चंद्रप्रकाश मौर्य का। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। भोजीपुरा से आप हैं हसमुख जी, हसनान, हसान, समस, इनाया, शानूर, पलकनूर, ताज, मोहम्मद, अबानूर और गुप्ता जी। बाबूदीन जी का ये मैसेज मिला है मेरठ कैंट से। आप हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी साहिल और भारती बंगेल, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिटा बजाज। ये मैसेज हमें भेजते हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतलमाला और आरती गौरी ओम। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण मुनीस और राहुल शर्मा का मैसेज मिला हमें नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। पटेल नगर मलोड से आप हैं रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति और चुल्लू रानी का मैसेज भी प्राप्त हुआ हमें। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना, मयंक और तन्वी, साथ में है जयपाल यादव। आप हैं गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज कैफ, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। रायपुर से नीलू मेघ, नीलम, वंदना कुमार और बिटू कुमार का मैसेज भी मिला हमें। जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा शिवांश और आपके सभी साथी। आप हैं जमशेदपुर से तंजीम कौशर, इशिता, जुमरी तलैया से सोनम, बरकाकाना से नाजनी, तबस्सुम अफजल और इफ्तिखार इब्राहिम। फुलवाइया शेरकोट बिजनौर से मैसेज भेजते हैं वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर। फजिल का पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा बगाड़िया का भी मैसेज फ्लैश हुआ। और ये मैसेज फ्लैश हुआ है अरुण कुमार शर्मा, रेनू देवी शर्मा, राहुल, वंदना कुमारी शर्मा, प्रियंका और आपके सभी साथियों का। कहां से ये मैसेज तो लिखा ही नहीं आपने। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश, गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज भी फ्लैश हो चुका है हम तक। जतीन चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और आपके सभी साथी। आप हैं पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन शानिया, इलियास मुशाहिद, रोनी अक्सा, आयशा उमर और समीना अंसारी। मांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और आपके सभी साथियों का मैसेज भी फ्लैश हो चुका है। कुंडेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, अभय और आपके सभी साथियों का मैसेज आया हम तक। आप हैं जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, रामबाऊ तांदले, जोधार आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का सागुते। महाराज की तरपुसी कीर्तन गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, टिंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी मैसेज करते हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। आप हैं निमिशोदा हमारे पद्मा तो नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। भाटपारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, इनोखेलाल वर्मा का मैसेज भी फ्लैश हो गया है। अद्भुत दिग्जित जी मैसेज मिल करते हैं हमें मणिनाथ बरेली से और आपके सभी साथी हैं साथ में। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने, संगीत है गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

यालोड से, कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से ये मैसेज करने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत, रजय, प्रकाश, प्रियंका, मन्नत, कीरत, गुरशब्द, राहुल और आपके सभी साथी। टैगोर कांडत नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और आपके सभी साथी। आप हैं शार्दुल से, राजस्थान से राम कुमार रिवाल, चंद्रकला रिवाल और आपके सभी साथी। हमारे निवेश होता है आप बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिगिया, नमन अपार डिंगिया, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का मैसेज भी आया हम तक, जमशेदपुर से और ढेर सारे लगातार आप लोगों के मैसेज हम तक आ ही रहे हैं। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खानदान का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

आप सुन रहे प्रोग्राम आपकी पसंद, ढेर सारे मैसेज आपके लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना और तुलसी मस्कीन का मैसेज मिला है। मुरादाबाद दुलापुर से आप हैं फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल, धर्मवीर, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, करण, राजू, चंद्रपाल, उल्फत, बबलू, वेदपाल और संजीव गंगवार का मैसेज मिला है। कुल्लिया नवाबगंज से नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का मैसेज भी फ्लैश हुआ हम तक। गंजडुंडवारा से आप हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, अयान और उस्मान अंसारी। अलकनाथ मंदिर के पास से ये मैसेज किया है हमें बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र, इला देवी, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद, दीक्षित और महावीर कश्यप, रमेश चंदसैनी, रॉबिन भाई और आपके सभी साथी। जगदीश धाकड़, रंजू भाई धाकड़, युवराज और शिवांगी धाकड़ का मैसेज मिला है। जिला रतलाम, मध्य प्रदेश, ग्राम हिंगड़ी।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। प्रोग्राम में अगले गीत के लिए ये मैसेज हम तक पहुंचा है लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह और आपके सभी साथियों का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से आप हैं राज शर्मा, मीना, योगेश निवान, सौरभ, शाइना और मैंडी शर्मा। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजनाथ मऊनाथ भंजन से ये मैसेज हमें करते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन और आपके सभी साथी। शिव मंदिर मऊ से ही इस मैसेज को किया है हमें मुन्ना भाई, स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीयूष स्वर्णकार। मोहल्ला मलुकपुर जुगन गली से आप हैं शे इम्र, बेबी इमरान, हानिया, इरफान और इरम। डॉक्टर अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका शर्मा और आपके सभी साथी हैं विराटनगर नेपाल से। यूपी बरेली के गांव जेरड से आप हैं शोएब शान, बसीम भाई, अशद, सहरत, शहरत, तोड़ी, अलवी। आप बेहतर हो, थोड़ा और साफ साफ अपने नामों को लिखें तो पढ़ने में हमें थोड़ी आसानी होगी। भोजपुरा से ये मैसेज हम पहले ही शामिल कर चुके हैं कार्यक्रम में। टापकी रोड अगोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर। आप हैं गंज टुंडवारा से उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल यास्मीन, आफ्ताब अंसारी। सेव वाटर सेव लाइफ के साथ ये मैसेज हमें किया है गंज टुंडवारा से खिलू परवेज, इमराना नाज, नवाजिश, दानिश, अमन अफरीदी और आपके सभी साथी। आप हैं राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। आकोट से विनायक बिंडे, मंगला, शुभम, विजय और पवन जरिए के संजीव राव डावेराव और आपके सभी साथी इसी गीत को सुनना चाहा है। हरजिंदर सिंह झिंदा, जसवीर जसी और सीता गीता ने नथाना पंजाब से। सुहारा बिजनौर से आप हैं आसिफ अली चौधरी, आसिफ चौधरी, अरफा तदीब और कादिर चौधरी। गुजरात पाटन से धीरज भी राबरी का मैसेज भी फ्लैश हुआ हम तक। ताज मोहब्बत अंसारी, गुलाम साबिर राय, मेराज जहां का मैसेज मिला है लक्सर, हरिद्वार। उत्तराखंड से जमशेदपुर से हैं तंसीम कौशल, इशिता और आपके सभी साथी। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटी, रीता, रजत और मयंक भाटिया का मैसेज भी फ्लैश हुआ। लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और आपके सभी साथी। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना मानवी, तन्वी गौहर। अनारकली बाजार जगराउन से आप है सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, स्वीट बेबी, काव्या और आपके सभी साथी। अमरावती से कमरुल्ला, आयशा, हदिया, अफिया और सईद भाई, सुफियान, अनस, अयज, अल्फिया और आपके सभी साथी। ये मैसेज हमें भेजते हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से तेज बहादुर यादव, दीपचंद्र, ममता, रौनित और वानिका। हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिडाल का मिडा और आपके सभी साथी। आमिन अली मैसेज करते हैं बदायूं रोड बोतरी रेलवे फाटक चंदौसी संभल से। अमर रमेश कुमार खत्री और किशन लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर शेख, शंकर गुल शर्मा, आप सबने मैसेज किया है हमें चनेश्वर गोट कराची से। पश्चिमपुरी से उत्तम सिंह, जुनेजा, भूपेंद्र, सीमा, अनमोल, साहिबा और आपके सभी साथी ये मैसेज किया करते हैं हमें। सहारनपुर से जॉन रिकेस्ट्रो, रोजी पॉल डॉर विलेज रिकेस्ट्रो। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का मैसेज भी मिला हमें। बुलंदशहर से उमेश कुमार गौड़, रानी गौड़ और आपके सभी साथी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म सरगम का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा अमित कुमार हैप्पी राय, नुदेव नेवादा दुबिहा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। इस गीत को सुनना चाहा है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास, धनंजय ट्यूल, पीवी कुलथे। ऐशबाग लखनऊ से आप हैं वारिस अली खान, इस्लामुन निशान, शकील, शहनाज और दानिश। जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल। मारहरा एटा से नवी हसन अब्बासी, अनम, यशव, शहनाज, नवेद, रशीद, सुहेल, असफ। आप हैं

लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडाजी चौबे लाडी जी, रिमझिम और सक्षम चौबे, पंजाब बखर से रीना रिहाना खान और आपके सभी साथी, सुधीर नूतन जी का भी मैसेज फ्लैश हो गया है और प्रदीप सालूजा का मैसेज आया है हम तक, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अर्पण का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

और श्रोताओं, फिल्म अर्पण के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद का समय लगभग संपन्न हो चला है। प्रोग्राम में हमने आपके ढेर सारे नामों को शामिल किया, आपके ढेर सारे पत्रों को शामिल किया और आज हमारी फेसबुक पोस्ट जरूर थोड़ी देर से पहुंची आप तक, लेकिन हाँ, प्रोग्राम में आपके ढेर सारे पत्रों को भी शामिल किया हमने। साथ ही साथ प्रोग्राम नमस्ते बरेली में भी हमने आपसे आज जानना चाहा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस आप कैसे मनाएंगे, तो आपने वहाँ पर भी अपनी फरमाइश की गीतों को पोस्ट किया, वहाँ से भी हमने आपकी फरमाइशों को पूरा किया। कुल मिलाकर के बस इस माध्यम से आपको कहना यही है कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है aapkapatramila.bareli@gmail.com। तो अब कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त ब्रजेश को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं सबरंग, और कार्यक्रम सबरंग में हम सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों को। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राहत फतेह अली खान और मोमिना की गाए इस गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम सबरंग में लेकर आ रहे हैं आपके लिए अमृता कोटलकर का गाया ये गैर फिल्मी गीत।

श्रोताओं, अमृता कोटलकर के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम सवरंग अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। ट्यून किया है आपने 100.4 FM और इस समय स्टूडियो की घड़ी में हो रहे हैं 11:15। समय हो गया है प्रोग्राम झुमका गिरारे का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम झुमका गिरारे।

श्रोताओं, स्वागत है आपका प्रोग्राम झुमका गिरा रे में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। श्रोताओं, कार्यक्रम झुमका गिरा रे, जैसा कि आप जानते ही हैं, केंद्रित होता है बरेली की किसी खास जगह पर, बरेली की किसी खास बात पर, बरेली की ही संबंध में हम उस पर विशेष केंद्रित करके ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। और इस बार का कार्यक्रम हमारा केंद्रित है बरेली में स्थित श्री साईं रक्षा धाम मंदिर पर। हम आपको लेकर चलेंगे मंदिर में, बात करेंगे वहाँ कुछ श्रद्धालुओं से, और फोन लाइन पर भी हमारे साथ जुड़ेंगे श्रद्धालु, और अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव हैं, अलग अलग मनोकामनाएं हैं, और वो किस रूप में सिद्ध होती हैं, पूर्ण होती हैं, इन सारी बातों पर हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आइए लिए चलते हैं आपको श्री शिरडी साईं रक्षा धाम बरेली। आइए मुख्य पुजारी से आए, सुनवाते हैं आपको बात।

0: क्या समय रहता है?
1: सुबह बाबा के पूजा का समय जो रहता है सुबह 7:30 बजे कांकड़ आरती होती है।
0: अच्छा।
1: और दोपहर में मध्यान्ह आरती होती है 12:30 बजे।
0: जी।
1: शाम को धूप आरती होती है 6:30 बजे।
0: जी।
1: और शयन आरती जो होती है सेज आरती बोलते हैं वो 9 बजे होती है 9:30 बजे तक।
0: जी।
1: उसके बाद बाबा का पट बंद हो जाता है।
0: जी। तो महाराज जी ऐसा हम लोगों ने भी बरेली में सुना और देखा और पाया भी है कि लोग और भक्त बड़ी ही आस लेके बाबा के पास आते हैं और बाबा उनकी बड़ी ही श्रद्धा से झोली भी भरते हैं, तो इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा?
1: भक्त का भाव सिर्फ बाबा से।
0: जी।
1: बाबा भक्त को यही जानते हैं कि आप किस मन से आ रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं।
0: जी।
1: भक्त सिर्फ बाबा के भाव से आता है, अपने मन से आता है कि बाबा के पास इसलिए आता है कि उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं
0: जी
1: वो पूर्ण रूप से सत्य होती है। सर,
0: तो साथियों श्रोताओं आप देख रहे हैं हमारे सम्मुख विराजे हैं साईं बाबा जी। कहा जाता है कि ये शिरडी की सत्य प्रतिमूर्ति है, न जाने देश के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ आते हैं और अपने भाव को प्रदर्शित करते हैं।
2: हमने बात की मंदिर के प्रबंधक महोदय से, उन्होंने बताई मंदिर के प्रासंगिकता और पौराणिकता साथ ही साथ ऐतिहासिकता के बारे में।
0: साथ है इस समय मंदिर के प्रबंधक ओम साईं राम।
3: साईं राम
0: जी, आपका नाम?
3: अमर सिंह।
0: अमर सिंह, अमर सिंह जी, इस प्रांगण के बारे में, मंदिर के बारे में कुछ बताइए।
3: 1996
0: जी,
3: और लोगों की आस्था प्रचुरी
0: जी,
3: पहले बहुत ही भीड़ आती थी
0: जी, जी
3: अब भी आ रही है
0: जी, जी
3: लोगों के अच्छे अच्छे काम
0: काम
3: सफल हो रहे हैं
0: जी,
3: बाबा से आस्था जुड़ी हुई है
0: जी,
3: हमारे भी बहुत काम, हमने तो बाबा को साक्षात देखा है।
0: अच्छा।
3: बिल्कुल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही देखा है बाबा, हमारे बच्चों ने भी बाबा के लिए हमारे सिर पर हाथ रखते हुए देखा है।
0: जी,
3: हमारे घर चल रहे हैं
0: जी, जी। तो क्या सुखद अनुभव फील हुआ जब बाबा आपके सम्मुख थे, आत्म साक्षात्कार हुआ आपका?
3: आत्म साक्षात्कार हुआ तो ऐसा लगा था कि पूरा शरीर बिल्कुल शीतल हो गया, पूरा दिन ऐसा कटा जैसे पता नहीं शरीर में प्राण है ही नहीं।
0: अच्छा, देश के विभिन्न कोनों से हमने भी महसूस किया और देखा है लोग यहाँ आते हैं अपनी मन की मुरादें लेकर, कुछ इस बारे में हमारे श्रोताओं के साथ अपने विचार।
3: जो सच्चे भाव से अगर प्राणी आता है बाबा को अपने दिल में बसा के
0: जी, जी
3: तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती
0: है जी। तो ये साईं रक्षा धाम जो ट्रस्ट है ये किस किस प्रकार के विशेष आयोजन करता है?
3: ये तीन तो विशेष भंडारे होते हैं
0: जी,
3: एक रामनवमी होती है, गुरुपूर्णिमा होती है, दशहरा होता है
0: जी,
3: उस पर विशाल भंडारा होता है
0: जी,
3: और बाकी गुरुवार के लिए और वैसे भी दिन भक्त अपना प्रसाद बनवाते हैं
0: और
3: यहाँ बांटने की और बनाने की सारी व्यवस्थाएँ
0: इस रक्षा धाम के द्वारा निशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ और इस
3: तरीका है ऊपर
0: जी,
3: डॉक्टर साहब बैठते हैं।
0: अच्छा, तो इस भक्तगण इसका भी लाभ ले सकते हैं।
3: हाँ।
0: तो
2: श्रोताओं ये थे मंदिर के प्रबंधक महोदय, हमने वहाँ ढेर सारे श्रद्धालुओं से उनके मनोभाव भी जानना चाहा। आइए सुनवाते हैं आपको कुछ श्रद्धालुओं की मन की बात।
0: भक्त और भगवान के बीच कोई माध्यम नहीं होता, तो इसी कड़ी में हम फिर यहाँ जो श्रद्धालु है उनसे बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु है, आपका नाम?
4: पूनम सक्सेना।
0: पूनम सक्सेना, पूनम जी आप यहाँ कब से आ रहे हैं?
4: 5 साल हो गए।
0: 5 साल हो गए। इस धाम पर क्या ऐसी चीज है जो आपको यहाँ लेके आती है, क्या आपके मन का?
4: बाबा लेके आते।
0: बाबा लेके, बाबा से आपका ये जो अनन्य जुड़ाव, आपने 5 साल से नाता जो आपका बाबा के बीच हुआ, ये धाम एक ऐसा मनोकामना सिद्धि वाला धाम, ऐसा लोग बोलते हैं और लोगों की मनोकामनाएं सच में पूरी भी हुई है, तो ये उनके बाबा के तरफ उनका और लगाव बढ़ाता है। इस कड़ी में आप क्या अपने अनुभव साझा करेंगी, क्या लगता है आप इस धाम पर आके आपको क्या अनुभूति है?
4: बाबा ने हमारी भी कामनाएं पूरी करी है।
0: अच्छा
4: जी,
0: और बाबा से जुड़ा कोई प्रसंग कभी आपको लगा कि नहीं ये शायद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया, अब यहाँ आना और बाबा की पूजा आराधना?
4: हाँ, आना बहुत अच्छा, बाबा के द्वार पे तो हम तो वहाँ भी जाते हैं, बाबा के महाराज
0: महाराज शिरडी।

0: श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम में श्री साई रक्षा धाम, जो कि साई महाराज का मंदिर है। ऐसे में हमने ढेर सारे श्रद्धालुओं से बात की। हमारे साथ फोन लाइन पर इसी क्रम में जुड़ रही हैं श्री साई महाराज की एक अनन्य भक्त जया जी। तो जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आपका याद किया।
0: जया जी, हम लोग बात कर रहे हैं श्री साई रक्षा धाम शिरडी वाले जो साई महाराज का मंदिर है बरेली में, इस धाम की श्रद्धा की, इस धाम की पावनता की, और यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं बड़ी बड़ी दूर से और अपनी मन की मुरादें लेकर आते हैं, तो इस संबंध में आपके क्या अनुभव है इस धाम को लेकर, चूंकि आप भी बाबा में आपकी भी बड़ी प्रगाढ़ श्रद्धा है।
1: मैं ये कहूंगी कि बाबा एक ऐसे बाबा है
0: जी,
1: जो मतलब आपको, आपकी जो अंतर आत्मा है ना, उसको वो पहचान जाते हैं अगर आपकी श्रद्धा है तो
0: जी,
1: है ना। और वो कहते हैं समर्पण, तो आप अगर समर्पण हो तो साक्षात है। मतलब हमने, हमारे सभी देवी देवता है, हम सबको मान सम्मान है हमारा
0: जी,
1: लेकिन ये इनके हाथ के साथ जो बाबा ने किया है
0: जी,
1: उस कमाल को धमाल कह सकते हैं। धमाल भी क्या, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैं बता ही सकती, कोई शब्द नहीं उनके लिए।
0: तो वैसे भी आस्था को शब्दों में बात करने की अगर बात आ जाएगी तो शब्द कम पड़ जाएंगे, वर्णमाला कम पड़ जाएंगी।
1: बिल्कुल, शब्द क्या मतलब, सांसें भी कम पड़ रही उसके लिए। मतलब वो चीज है मेरी लाइफ में, मतलब मैं अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ, वो चीज है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शायद मेरे साथ क्या ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने जो किया, मैंने आज तक यही सोची नहीं पाई कि मैं कहाँ कैसे पहुँच गई, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गई, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया, लेकिन बाबा का हाथ हर दम मेरे सर के ऊपर रहा, बाबा पे समर्पण रही मैं बिल्कुल, और बाबा ने बिल्कुल मतलब ऐसे रखा जैसे फूल से रखा था ना इंसान को, उस तरह से बाबा ने मुझे रखा। और
2: वैसे भी कहा जाता है कि भक्त और भगवान के बीच तो किसी माध्यम की आवश्यकता है ही नहीं। ढेर सारे श्रद्धालुओं ने अपने मन के ढेर सारे उद्गार व्यक्त किए, और सच में इस बावन धाम की पौराणिकता इस आध्यात्मिकता देखते ही बनती है। तो ये थी हमारे उस विशेष कवरेज की प्रस्तुति जो हम लेकर आए थे आपके लिए श्री साई रक्षा धाम बरेली से।

तो श्रोताओं, ये थी प्रस्तुति हमारी कार्यक्रम झुमका किरारे की, जो कि हम लेकर आए थे आपके लिए श्री साईं रक्षा धाम साईं महाराज के मंदिर बरेली से। कैसा लगा आपको कार्यक्रम, जरूर भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झुमका गिरा रे। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।

0: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके
1: जी
0: हैं।
1: हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
0: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहां यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजीत जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहां की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है
0: जी
1: और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है,
0: जी
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
0: जी
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
0: जी
1: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
0: जी
1: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती
1: हाँ
0: हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहां गए थे मैग्नेटिक हिल,
0: बिल्कुल याद है।
1: जहां यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो
0: जी
1: वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: अजीत जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहां की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है।
0: जी
1: इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहां की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिस

0: क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।

0: ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ अंदर आ जाओ। शाबाश।
7: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
7: जी वही।
5: सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
7: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
7: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
7: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
7: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
7: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
7: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
7: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
7: भरत?
5: भरत नाम तो हमने सुना है।
6: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
7: ओह, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
6: हाँ।
7: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
6: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक

0: समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
3: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
3: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
3: है ही नहीं?
0: हाँ।
3: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
3: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
3: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा, जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
3: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
3: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
3: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
3: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
3: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
3: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
3: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
3: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
3: अच्छा।
2: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
3: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
3: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
3: जी सर।
0: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
3: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
3: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
3: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था
3: और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ।

0: और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
2: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह क्या बात है।
2: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
0: हाँ अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग,
2: वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
2: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ सबके साथ।
3: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ,
9: ओफो तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
8: जी
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे।

0: मिल गया।
1: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
0: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
1: कुछ भी तो नहीं,
0: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
0: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
0: हाँ
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
0: हाँ ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
2: ठीक है आओ मेरे साथ।
1: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
4: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
4: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
4: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे रहने दीजिए।
4: भाई साहब जरा हट जाइए। आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते।
6: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
4: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
6: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
4: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
4: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
4: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
4: बहुत अच्छा।

0: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। स्टूडियो की घड़ी में 2 PM के ठीक 12 बज रहे हैं और अब आप सुनेंगे FM रेनबो लखनऊ के प्रोग्राम, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: इस दौरान सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग, विरासत संरक्षण और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल जनभवन में विभिन्न विधाओं में पारंगत 51 कलाकारों को अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि संगीत अकादमी पुरस्कार एक प्रतिष्ठित सम्मान है। अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सभी विधाओं के कलाकारों को संस्कृति विभाग के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने पर 70,000 रूपये मानदेय प्राप्त होगा। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और पीएम पोषण योजना से जुड़े कर्मियों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सभी संबंधित कार्मिकों को नोडल अधिकारी नामित करते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने का आदेश दिया गया है। चित्रकूट में 29वीं प्रयागराज जोन अंतर जनपदीय वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, अमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट की महिला एवं पुरुष टीम हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी विकसित करता है। इस बुलेटिन इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित होगा।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहां से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहां से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह,

0: घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
2: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
3: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, नमस्कार। घड़ी की सुइयों में दोपहर के 12:05 हो गए हैं और हमेशा की तरह इस सुहावनी दोपहर में आपके दिन को और भी तरोताजा करने के लिए मैं आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम शत्रुपा लेके। दोस्तों, कल है 5 जून, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अब आप कहेंगे कि जब कल है तो हम बात आज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी बड़े उत्सव की तैयारी तो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है ना? और आज हम जिस उत्सव की बात कर रहे हैं वो है हरियाली का उत्सव। बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
6: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
7: धड़कता है जो हर दिल में
8: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
5: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, घड़ी में 12:11 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जब बात घर को सजाने की होती है तो क्या किसी बिना पौधे के हम घर को सजा सकते हैं क्या? घर सुंदर लगेगा ही नहीं। और इसीलिए शत्रुपा में हमारी जो चर्चा का विषय है वो है बागवानी। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा पौधा न सिर्फ हमारे घर के कोने कोने को महकाता है बल्कि हमारे मन के आंगन को भी सुकून से भर देता है। तो चलिए अगले एक घंटे प्रकृति की उंगली थाम कर चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर।

0: बनती है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
5: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
6: धड़कता है जो हर दिल में
7: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
4: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
5: धड़कन लखनऊ की।

जी, 12:17 हो रहे हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, जहां आज आपके साथ हूं मैं, आपकी दोस्त राधा। जी, हम बात कर रहे हैं बागवानी की, और आपको पता है कि कई शोध बताते हैं कि पौधों के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है। मिट्टी को छूना, पौधों को पानी देना और नई पत्तियों को उगते देखना ना, मन को शांति देता है। बागवानी एक ऐसी थेरेपी है जो बिना किसी खर्च के हमें मानसिक सुख प्रदान करती है। तो चलिए अभी सुनते हैं ये प्यारा संगीत। अब पता है आपको, गाने भी सुनकर ना बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि ये प्यारा सा सॉन्ग आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
7: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
8: धड़कता है जो हर दिल में
9: सुबह 6 से रात 12 बजे तक,
10: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
7: धड़कन लखनऊ की।
11: Stay tuned to 100.7 FM रेनबो,
12: धड़कन लखनऊ की।
11: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
13: जी हाँ, 12:26 हो चुके हैं और कार्यक्रम है शत्रुपा, और आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। अक्सर जब बात बागवानी की आती है तो हम सोचते हैं कि ये तो बस एक शौक है, लेकिन सच कहूं पौधे लगाना, सिर्फ मिट्टी में बीज डालना नहीं, ये तो एक वादा है आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और छांव देने का। और हम महिलाएं, हम लड़कियां जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है और पौधों से एक बहुत ही खास लगाव होता है, गहरा नाता होता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को बहुत स्नेह से सींच कर बड़ा करती हैं, उसी तरह पौधे भी तो हमारी ममता और समय मांगते हैं, है ना? और जब माँ की बात हो रही है तो माँ से खूबसूरत कोई हो सकता है ना? कोई तो नहीं हो सकता। और यही कुछ कह रहा है ये गाना।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

0: 100.7 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शत्रुपा, जहां आज हम बात कर रहे हैं बागवानी की। जी हम तो बात कर ही रहे हैं और हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हमारी एक्सपर्ट भी जुड़ चुकी है, तो चलिए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम शत्रुपा में। हेलो नेहा।
1: गुड आफ्टरनून मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस विषय पर अपने विचार साझा करने का मौका देने के लिए। जैसा कि हमें पता है कि कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उसके उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
0: हाँ नेहा, तो हमारा जो आज का विषय है वो है बागवानी। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को, कि जिन लोगों के पास जगह कम है लेकिन उन्हें बागवानी करनी अच्छी लगती है, तो वो किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं?
1: देखिए आजकल किचन गार्डनिंग ज्यादा ट्रेंड में है, तो ये बेसिकली उसी के लिए होता है। अगर आपके पास जगह कम है तो आप उसमें भी प्रॉपर तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो छोटे लेवल पर फ्रूट, वेजिटेबल, हर्ब्स, ये सारी चीजें ग्रो करना किचन गार्डनिंग के अंदर में इंक्लूड होता है। तो अगर आपके पास जगह कम है तो आप इसके लिए आपकी बालकनी, टेरेस, विंडो या कोई छोटी खाली जगह हो उसे आप उसमें आप इजिली कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे आप ऐसा प्लेस चूज करें जहाँ पर आपको प्रॉपर सनलाइट मिल सके 4 to 6 hours के लिए। उसके अलावा आप पॉट्स में कंटेनर्स को यूज करके और ओल्ड बकेट, बॉटल, ये सारी चीज यूज करके आप छोटे छोटी जगह पे, कम जगह पे आप बागवानी कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और ये बताइए, इतनी गर्मी में ऐसे में जो पौधे हैं वो स्वस्थ कैसे रहें, क्योंकि अगर उनका ध्यान नहीं देंगे तो वो तो सूख जाएंगे, तो उनका ध्यान कैसे दिया जाए?
1: देखिए गर्मी में पौधों को ध्यान देने

0: ज्यादा जरूरी कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे आपको बहुत ज्यादा एक्सेस सनलाइट और हीट को अवॉइड करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान और पानी की कमी पौधों को खराब कर सकती है, उनको सुखा सकती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा गर्मी में पौधों से बचाना होता है। और आपको दोपहर में पौधों में वाटरिंग नहीं करनी है, अगर वाटरिंग आपको करनी है तो आप सुबह और शाम के टाइम में कर सकते हैं। उसके अलावा आपको रेगुलर वाटरिंग करनी है और दोपहर में पानी इसलिए नहीं देना है क्योंकि दोपहर में पानी देने से वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे रूट को फायदा नहीं मिलता है। तो और उसके अलावा आप मल्चिंग टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। मल्चिंग टेक्निक में आप सूखे पत्ते, ग्रास और कोकोपीट को उसके ऊपर डाल सकते हैं पौधों में, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो जल्दी जल्दी खत्म ना हो।
1: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी मैम आपने। तो चलते चलते ये बताइए कि कल हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के लिए अभी तो मुझे जो सबसे ज्यादा जरूरी संदेश ये लग रहा है कि पर्यावरण हमारा बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बढ़ती हुई गर्मी को देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस लेवल पे जा रही है। तो मेरा तो श्रोतागणों से यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो प्लांट्स लगाएं, और जो आप एयर कंडीशनर और ये सारी चीजें, इनका कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प मिल सके और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करें।
1: जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए नेहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे ये अवसर दिया आपने मेरे विचारों को प्रस्तुत करने का।
1: थैंक यू नेहा। तो ये हमसे जुड़ी थी नेहा और बातें और सारी होने वाली हैं। भाई कल विश्व पर्यावरण दिवस है और हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं बागवानी की। तो भाई जब बागवानी की बात हो रही है और एक्सपर्ट से भी बात हो गई है, तो अभी क्या है, तो अभी आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: हरि का नाम है सबसे पहले, हरि का नाम है सबसे प्यारा। कर लो प्रभु जप हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
6: ओम नमः शिवाय।
5: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
7: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
5: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
8: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

यह घड़ी में 12:49 हो चुके हैं और कार्यक्रम चल रहा है शतरूपा, जहां हम आज बात कर रहे हैं बागवानी की। अच्छा, आजकल किचन गार्डन का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। धनिया, पुदीना, मेथी, टमाटर और मिर्च जैसी सब्जियां तो हम घर में ही उगा सकते हैं। इससे ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मिलती हैं और बाजार पर निर्भरता भी कम होती है। क्यों सखियो, और साथ ही बच्चों को भी प्रकृति और खेती के बारे में सीखने का अवसर भी मिलता है ना? तो किचन गार्डनिंग करिए और घर में ही ताजी ताजी सब्जियां उगाइए। और अभी जो गाना आ रहा है, ये आपको ऐसी वादियों में ले जाएगा ना कि बहुत सुकून मिलेगा। भाई मुझे तो ऐसी वादियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, और आपको?

दोस्तों, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब वक्त शत्रुपा का समाप्ति की ओर चल पड़ा है। तो भाई, आज हमने बात की बागवानी की और कल हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो भाई, आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हमें कम से कम अपने जन्मदिन के दिन और जब भी दिल करे एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, और सिर्फ लगाना ही नहीं चाहिए, उसे एक पेड़ बनने तक सहेजना भी चाहिए। और भाई, इसी के साथ इस कार्यक्रम से हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, जिसका नाम है होठों पे तेरी बात, इस आखिरी गीत के साथ। और न्यूज ब्रेक भी होगा, लेकिन अभी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला के संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। रोड्रीगेज कल भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षी, नागरिक, पुलिस एवं समकक्ष पदों की 8, 9 और 10 जून को होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर अधिकारियों को
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो के प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, जिन्हें हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। और श्रोताओं, अब समय हो गया है कार्यक्रम अनुरोध गीत का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम अनुरोध गीत। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके वो सारे पत्र जो आप हमें लिखकर भेजते हैं देश के कोने कोने से। और श्रोताओं, आप सभी सुन सकते हैं अपनी पसंद की गीतों को कार्यक्रम अनुरोध गीत में। उसके लिए करना ये होगा कि आप हमें लिख सकते हैं पत्रों को अपनी पसंद के गीत के साथ। हमें पत्र लिखने का पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत में जो पत्र पढ़ने जा रहे हैं ये हमें भेजा है तलैया उल्ला जागीर से फजरुद्दीन अबरार और अफजाल, नकटिया से ताराचंद्र और बबली। इसी गीत को सुनना चाहते हैं फूलबाग किला छावनी से विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त, गंगा दत्त, गोपाल, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु मिश्रा, देव की देवी, शिप्रा नीलम और श्री राम राठौर। श्री राम शरण दुबे, अवधेश, कमलेश, सर्वेश, सुजाता, कमल, काजल, अर्चना, सुषमा, अमित, निकेत और राधिका दुबे पत्र में भेजते हैं। ग्राम बापोस बमरौली बीसलपुर पीलीभीत से अशरफ खां पानी की टंकी के पास से ये पत्र हम तक आ पहुंचा है। रामप्रसाद शर्मा, अजय शर्मा, मनोरमा, रीता, विनोद और वंश व कनिष्का का। गरीब भाई ये पत्र हमें भेजते हैं नासिर भाई, सादिक, विक्की, पीरेश सिंह चौहान, सोनू मिश्रा, अयान खान, प्रदीप पाल, नमन और आपके सभी साथियों के साथ बरेली जंक्शन से। इस गीत की फरमाइश की है हमें कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। ककराला बदायूं से आप हैं मशरूर खान, सरफराज, याकूब, विकास, करमवीर, प्रवीण, अनिल, काजल, चंचला और रेखा कश्यप। वजीरगंज बदायूं से आप हैं होशियार मोहम्मद, शेर मोहम्मद, खोश, खुशनुमा भी, नूरजहां, संजुरन, जीशान, आसमीन और चांदनी भी। और भवाली नैनीताल से ये पत्र हमें लिखा है इकराम अली, फैजान, एहसान, शहनाज, अप्पी, बॉबी वर्मा और अजहर। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म एक दूजी के लिए का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत, ट्यून किया है 100.4 FM। प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये लेटर हमें मिला है, गंजुंडवारा से लिखने वाले हैं मुनव्वर लल्ला, नसरीन बेगम, अरबाज शहबाज, पप्पू अफसाना महजबी और आपके परिवार के सभी सदस्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक, रोशनी और प्रांजल राय। इस गीत को सुनना चाहा है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, सिद्दीकी, नाजमा, रियाज, रिफाकत, समरीन, रिहान और माहिरा नूर। ये पत्र हम तक पहुंचा है कस्बा शीशगढ़ से लिखने वाले हैं गुड्डू इदरीसी, फरहान इदरीसी और आपके सभी साथी। बीसलपुर मोहल्ला दुर्गा प्रसाद से ये पत्र लिखते हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। गैक्टा काशी धर्मपुर से फहीम खा सिद्दीकी, अली साबिया और दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कटेरिया और आपके सभी साथी। और आप हैं वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशने, सुशीला प्रभात, अमरीश सलोनी, सचिन नीरू, देविका कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्य कमल वाशने। शेरनगर बहेड़ी से ये पत्र हमें लिखा है अलैक अहमद दरीशी, अशरफ अतीक, शिफाबी और यास्मीन ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म तेजाब का ये गीत अलका याग्निक की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

हैं अनुरोध गीत। ट्यून किया है 100.4 एफएम। प्रोग्राम में हूं मैं, आपका अपना रेडियो दोस्त ब्रजेश। प्रोग्राम की अगली फरमाइश के लिए ये पत्र हमें मिला है शंकरपुर पोस्ट उसावा दातागंज बदायूं से। लिखने वाले हैं पत्र को सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, सूरजश्री और गुनगुन यादव। इसी गीत को सुनना चाहा है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक कृष्णा और समर फूलमाली, जाफर हुसैन, नईमा, कासिम, नदीम और जुनेद अब्बासी। ये पत्र लिखते हैं हमें दौलतबाद मुरादाबाद से। नवाबगंज से ये पत्र हमें लिखा है नसीम अहमद अंसारी, मेराज, मुस्कान, रेहान, अलशिफा और मन्नत ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से ये आप हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दंतरेंगी से भागवत वर्मा और आपके सभी साथी। गनगोला दातागंज से ये पत्र लिखते हैं हमें आलिफ खान, नेहा सालिम, आरिफ आलमशेर, वली अहमद, जहूर और मुशीर खान। बिलासपुर देवरी खुर्द से इस गीत को सुनना चाहा है संतोष तलरीजा, आरती सोनू, अर्चना, कुंवर सिंह गुड्डू और रामदास, आशा सिंह, उषा, ज्योति और आपके सभी साथी। डबर तालाब लोनी से ये पत्र लिखते हैं हमें राजा अहमद, ईशान, आरिस और मरियम जहां। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म सागर का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

प्रोग्राम के अगले गीत के लिए ये पत्र लिखते हैं हमें गंगवार रेडियो श्रोता संघ दलपतपुर चटिया से ओमपाल गंगवार, अनीता और आपके परिवार के सभी साथी। पिपरिया नगरिया सोवरनी जिला बरेली से अमन शाह संध्या और छोटे लाल गंगवार का पत्र भी मिला हमें। हररपुर मटकली से आप शारून अंसारी और आपके सभी साथी ये पत्र हमें भेजते हैं। खान रेडियो क्लब जादोपुर बहरपुरा से अनीस खान, मुनीश, आरिस, मुनाजिर, परवीन, आस्कारा, दरकशा और साजिया खान। बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता और हार्दिक करमकर, साथ में है तनु करमकर। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें भेजी है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद, अभय परमानंद, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। ग्यासपुर बीसलपुर से आबिद अली तबस्सुम और नेहनाज का पत्र भी मिला हमें और इसी गीत को सुनना चाहा है। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर शाहीन और परिमहल कासगंज से आप हैं आबाद खान, गजाला खान और आपके सभी साथी। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म जीवा का ये गीत आशा भोसले और किशोर का, माफ कीजिएगा, अमित कुमार के स्वर में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम के अगली फरमाइश के लिए ये पत्र हमें लिखा है वीडियो कॉलोनी करगना बरेली से पनीलाल सागर, बेनी सिंह, धर्मवीर, आशीष, अमर, हितेश, बंटी, रूबी, रचना, एकता, दिव्या, ममता, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। करोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहा है अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, साथ में है नवेद खान। कस्बा मीरगंज से ये पत्र लिखा है हमें कल्लू भाई, नईम, फहीम, नसीम, दानिश और आदर्श दिवाकर ने। कस्बा बराड़ा अंबाला से ये पत्र लिखते हैं रवि कुमार, राहुल।

रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द, राहुल। खुर्जा से ये पत्र लिखा है हमें उत्तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश करते हैं हमें लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल लचक, निम्मी से एवं सतीश, मुकेश कुमार साहू और आपके सभी साथी। अलीका डबवाली से आप हैं बसंत सिंह छन, राजकुमार और कुलदीप गांधी। अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने पत्र लिखा ये। और भाटपारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार और दीपक कुमार वर्मा। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, तुलसी मस्कीन और जगमोहन प्रजापत का भी पत्र मिला हमें। आप लोगों ने सुनना चाहा है फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये गीत अनुराधा पौडवाल के स्वर में।

कार्यक्रम के अगली फरमाइश है फिल्म बालिका वधू से। इस गीत को गाया है अमित कुमार ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव वर्मन का। सुनना चाहा है आप सभी ने महाराजा रेडियो श्रोता संघ खंडवा ग्राम लोहारी से। आप हैं राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा और नीतू वैद। ये पत्र हम तक पहुंचा है बरेली जंक्शन से। लिखने वाले हैं पप्पू भाई पहलवा, जमील भाई मेराज, मोइन अफजल, बब्बू फिरोज, परवेज बासियत और हसीन भाई, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां का पत्र मिला है हमें आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। सतीश अनिजा, बिमला अनिजा और आपके सभी साथी हैं चंडीगढ़ से। और ये पत्र हमें लिखा है दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पारानी और आकाश कुमार ने। इस गीत को सुनना चाहा है गुजाला तहसील वीर महाराष्ट्र से नारायण देव, दुगे, नानी भाई, सुनंदा, महेश और निर्मला, साथ में है भगवान। मुकेश कासलेकर, दिनकर, विमल और विशाखा कासलेकर भी सुनना चाहते हैं इसी गीत को। आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ये पत्र हम तक पहुंचा है। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का अगले गीत को ही सुनना चाहा है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजदीप और राशि पाटिल। ये पत्र हम तक पहुंचा है बठिंडा रोड डबवाली से। लिखने वाले हैं राजेंद्र नारंग अंजू और मोहित नारंग। इस गीत को सुनना चाहा है गुरु नानक नगर मलोड पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी आरती और तनिष सेतिया। सनावद मध्य प्रदेश से ये पत्र लिखा है हमें दिलीप, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकार ने। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से ये पत्र लिखते हैं हमें नरेंद्र नरवणे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार। और इसी गीत की फरमाइश की है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल जयवीर, अमनदीप कालका से आप हैं शुभ चंद्र बजाज बिट्टा और साहिल बजाज। गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से ये पत्र हमें लिखते हैं और खमरिया छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है साबित खान, सत्या, सावित्री, प्रतीक, धर्मेंद्र और मानस साहू ने। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं मदन पाल ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। प्रोग्राम आ गया है अपने अंतिम पायदान पर और कार्यक्रम की अंतिम फरमाइश के लिए पत्र हमें मिला है आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश आशीष और राधिका गौड़ का। और ग्राम राजपुर थाना बैजोई संभल से आप हैं नवदीप कुमार, रिंकी और आदित्य। आदर्श नगर मनोट पंजाब से ये पत्र लिखते हैं हमें राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरभ और शाइना, साथ में है निवान शर्मा। इस गीत की फरमाइश की है हमें सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम, आयशा, हदिया, अस्मा, सालिया, शोएब, मुज्ताबा, राउफ, शाहिद। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। इसी गीत की फरमाइश करने वाले हैं पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू डिहारका और वंश बत्ता। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये पत्र लिखा है हमें हरदेव, मिका, बलविंदर, जयतेग और मिका विरक। और कृष्णा टीवी नगर टीवी टावर से मिनरी हिल्स नागपुर से ये पत्र लिखा हमें नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल और डोंगर दिवे ने। और ये पत्र भी हमें मिला है हमारे सभी श्रोताओं का। इतनी दूर दूर से हमें पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुनना चाहा है फिल्म सलामी का ये गीत, जिसे गाया अलगा याग्निक ने, बोल लिखे हैं सुरेंद्र साथी ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

औषधा ओ छोड़े जाते हैं आपको फिल्म सलामी के इसी गीत के साथ। स्टूडियो में दाखिल हो गई हैं शिप्रा मिश्रा। आगे के कार्यक्रमों कैसे के लिए और प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 2430001।

0: आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
1: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। दिन के 2 बजे हैं और इसी समय के साथ हम लेकर हाजिर होते हैं कव्वाली, लोकगीत और गजलों के कार्यक्रम को, जिसका नाम है रस रंग। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ।

पूरा दुख और आधा चांद, रूप कुमार और सोनाली राठौर की आवाज़ों में इस गज़ल को आपने सुना कार्यक्रम रस रंग में। और अब रुख कर लेते हैं लोकगीतों की तरफ, देखते हैं पहला लोकगीत किसकी आवाज़ में आ रहा है आपके पास तक।

0: सासू लड़मत लड़मत न्यारा कर दे। इस लोकगीत को आपने सुना इंदु शर्मा की आवाज़ में, और ऐसे गीत गजल कव्वाली आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। कार्यक्रम का नाम है रस रंग। एक रुकते हैं अब एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए और पुनः आपसे मिलते हैं।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: अभियान चन चन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे
1: हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: अजीज नजान की आवाज में संदेश से पहले आप सुन रहे थे कव्वाली, दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और अब आपको ले चलते हैं लोकगीत की तरफ। सोनिका अमित और साथियों की आवाज में ये लोकगीत है।

लचके कमरिया हमारी सोनिका अमित और साथियों की आवाज़ों में इस लोकगीत के साथ ही आज का रस रंग का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे रस रंग, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल, सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सताबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।
1: नी बलिए

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं, तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ। तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाके जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हों तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
2: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
2: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।

0: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा
1: तोता
0: सा
1: खास तौर
0: हाँ
1: से खा ले,
0: खा लिया तो भी हम उसे धोखे खा लेते
1: तो
0: थे,
1: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
0: और भी मीठा
1: और मीठा होगा,
0: होगा।
1: और वो देसी आम, तरह तरह के आम।
0: हाँ
1: तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
0: आपके
1: वो भी
0: क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं
1: लिख
0: एक,
1: भेजें।
0: हाँ और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन
1: बिल्कुल
0: कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं इस बारे में हमें लिखकर
1: विविध
0: बताइए।
1: भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें, और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं
0: हाँ
1: आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप जरूर साझा करें, और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,

0: आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
1: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खास तौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन लें, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने

0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी कितनी अजीब बात है ना कि कितने
1: जी
0: छोटे काम करती थी और
1: जी
0: उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई। और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं। और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कह दिए कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी,
0: क्या
1: जिसे
0: बात है,
1: बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है। और
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा के स्रोत हैं। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठें, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल
1: और
0: करें, है
1: हम
0: ना।
1: लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही आप घुटने तक ही कर
0: अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल।
1: इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है।

0: फिर हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उस स्पर्श मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
1: बिल्कुल।
0: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
1: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी, और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
0: जी
1: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
0: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
0: छूमंतर हो
1: जाती
0: जाती
1: है।
0: थी, है ना।
1: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक
0: गीत
1: गाना
0: सुने,
1: सुनाने का।
0: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ,
0: से।
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक हमारे
0: इंदीवर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं, वो हमारा प्यार स्नेह समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन

0: बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़ी बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं।
1: वैसे ही
0: तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
0: हैं। जी, तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे, और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है, स्पर्श से बच्चों

0: का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था
1: कोरोना
0: कोरोना
1: काल
0: समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी।
1: हाँ
0: तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखें
1: बस
0: आप।
1: हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है,
0: बिल्कुल
1: कहाँ हद से ज्यादा नहीं
0: हाँ,
1: आगे बढ़ना है और कहाँ
0: और
1: हमें गले
0: खास
1: लगाना
0: तौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी।
0: आम बहुत खास है, कहने को
1: आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो,
0: बस।
1: हाँ,
0: मतलब एक आम जैसे तैसे,
1: हाँ,
0: उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और
0: है
1: फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो उसमें जो
1: आम भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता
0: अभी
1: है।
0: लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ रहा
1: है, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथ ही ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन आम, आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
1: जी,
0: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
1: जी,
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीखकर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप
0: पनप जाते हैं, उग जाते हैं, जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का

0: हाँ, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से मैं याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
1: हाँ,
0: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
1: और
0: लेते
1: वो
0: थे।
1: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ
1: जी, वो
0: हाँ
1: आते
0: और
1: थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो फाक
1: अब
0: दो
1: ओ ममता जी, उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
0: उसमें
1: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
1: हाँ,
0: भी,
1: केमिकल नहीं
0: कोई
1: होते
0: दवा
1: थे।
0: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
1: और
0: आम
1: खेलते
0: मिलता
1: कितने थे
0: था।
1: ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है, तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
1: हाँ, ये होठों के यहाँ पे।
0: और आम का पन्ना भी बनता था।
1: हाँ,
0: और साथ में गांव में तो आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो,
0: तो
1: ये
0: ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली
1: और
0: है।
1: आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
0: हाँ,
1: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम
1: घी लगा
0: पापड़।
1: के, आम
0: हाँ,
1: पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: जिसे। तो और बोलिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है। जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहें
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना
1: था।
0: है
1: बिल्कुल,
0: उसे।
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती बिचारा।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। स्टूडियो की घड़ी में पूरे 4 बज चुके हैं श्रोताओं, और इस समय के साथ ही हम लेकर हाजिर हुए हैं आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे आकाशवाणी के दीवाने, जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, नाम है महेश कश्यप।
2: नमस्कार साथियों, मैं महेश कश्यप बीसलपुर जनपद पीलीभीत से आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी के श्रोतियों श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी से बचपन से ही लगाव रहा है, आकाशवाणी को सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं।

0: आकाशवाणी के विभिन्न प्रोग्राम के साथ में ही हमने इतना अपने जीवन का सफर व्यतीत किया है। यूं तो कई आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम हम सुनते हैं, लेकिन आकाशवाणी बरेली से विशेष लगाव रहा है। दिन की शुरुआत भक्ति आराधना कार्यक्रम के साथ में होती है। अगर महिलाओं के कार्यक्रम की बात करें तो नारी संचार कार्यक्रम महिलाओं के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। बच्चों के लिए अंकुर कार्यक्रम भी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजनपूर्ण होता है। युववाणी कार्यक्रम में युवाओं के लिए नई नई जानकारी मिलती है, जो कि बहुत ही रुचिकर बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी युवाओं के लिए प्रदान की जाती है युववाणी कार्यक्रम के माध्यम से। हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी कृषि कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित किए जाते हैं। किसान बाड़ी कार्यक्रम जो है आकाशवाणी बरेली से प्रसारित किया जाता है, जो बहुत ही जानकारी पूर्ण होता है कृषि के संबंध में। जानकारी प्रद कार्यक्रम के साथ में आकाशवाणी बरेली मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखता है। अनुरोध गीत कार्यक्रम हो गया और हेलो बरेली कार्यक्रम होगा, ये ऐसे कार्यक्रम हैं जो सभी के दिलों पर राज करते हैं। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हमें शिक्षा मनोरंजन सभी कुछ प्रदान करता है। आकाशवाणी ये बराबर भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन के कार्य जो कार्य हैं वो आकाशवाणी के साथ में बगैर किसी डिस्टर्बेंस के निपटते हैं, क्योंकि आकाशवाणी एकमात्र एक ऐसा संसाधन है जिसे मतलब रेडियो जैसे कि हमने चालू करके रख दिया और अपना काम भी करते जा रहे हैं, रेडियो को भी सुनते जा रहे हैं, तो हमारे काम में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है आकाशवाणी। आज के परिवेश में यूं तो मनोरंजन के कई साधन हैं, सूचना प्रदान करने के कई साधन हैं, इंटरनेट के कई सोर्स उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आकाशवाणी की बात की जाए तो आकाशवाणी के जैसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आकाशवाणी के 90 वर्ष गरिमामय पूर्ण होने पर आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को एक बार पुनः मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आपने सुना आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम, जिसमें आज हमारे श्रोता थे महेश कश्यप। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 4:03:45 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपको पुनः याद दिला दें कि अभी भी आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं मैसेजेस के जरिए। फेसबुक पर आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और हमें आज के विषय को लेकर जो चार्ट अपडेट हुआ है उस पर अपना जो कमेंट है, आपका जो मत है, वो हमें लिख भेजिए और शामिल हो जाइए हमारे कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:05 होने को हैं। तो लीजिए पेशी खिदमत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, और जिस कार्यक्रम का इंतजार आप पूरे दिन से करते हैं, यानी कि सुबह से लेकर इंतजार करना शुरू कर देते हैं, उस कार्यक्रम का समय अब शुरू हो चुका है। 4:05 हो गए हैं और कार्यक्रम हम लेकर आ गए हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम के लिए हम आपकी फोन कॉल्स दिन में 2:30 से रिकॉर्ड करते हैं। फोन नंबर है 0581251700। और आप फेसबुक पर भी आज के विषय को लेकर अपने जो विचार हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं, हम उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज का विषय आपको बताते चलते हैं श्रोताओं। आज का विषय है कि आपने कोई भलाई का ऐसा काम किया है जिस पे आपको हमेशा गर्व होता हो। आज के इसी विषय को लेकर देखते हैं कि पहले हमारे श्रोता हमसे कौन जुड़े हुए हैं। हेलो।
2: हेलो जी, मैं जिला बदायूं फसवा आतागंज से मोहम्मद आसिफ खान बात कर रहा हूँ।
1: जी मोहम्मद आसिफ, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। बताइए आज के विषय को लेकर, क्या आपने ऐसा कुछ किया है?
2: जी मैम, हमारा एक दोस्त था, वो पढ़ने नहीं जाता था। मैंने उसे समझाया कि पढ़ने से हर कुछ मिलता है, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। तो हमारी उसने बात मानी और पढ़ने चला गया। हमारा यही भलाई का काम है, आज वो पढ़ गया है और हमारा नाम

0: होता है, हमें इस चीज पर गर्व हो रहा है कि हमने कोई अच्छाई का काम किया है।
1: अच्छा, आज भी आप उस अपने दोस्त के संपर्क में हैं?
0: जी
1: बिल्कुल। तब तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा और उसे भी अच्छा लगता होगा कि आपकी एक छोटी सी बात उसे लग गई और उसने वो अच्छी बात आपकी मानी और आज वो सक्सेस है ना?
0: जी मैम।
1: बिल्कुल। तो अपने उस दोस्त के लिए आज कौन सा गीत सुनेंगे?
0: उस दोस्त के लिए सना मेवफा फिल्म का गीत है अल्लाह करम करना मौला दो रहम करना।
1: बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके दोस्त के साथ, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: सुधा, और हमारे कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं और क्या आज के विषय को लेकर उनका मानना है जानते हैं। हेलो जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है।
1: हाँ जी, नमस्कार आपको, पहले तो आपको
0: नमस्कार
1: और सभी आकाशवाणी वालों को, श्रोताओं को प्यार भर नमस्कार।
0: जी, बिल्कुल, नाम बताइए।
1: मैं मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना बजे से 15 साल बोल रहे हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर।
0: पन्नीलाल जी, बताइए कि आपने कोई अपने जीवन में ऐसा भलाई का काम किया है जिसपे आज भी आपको गर्व महसूस होता हो?
1: हाँ, गर्व महसूस होता है क्योंकि मैं उस समय बहुत कैजुअल में था। उससे पहले हेडफोन नहीं लगा था, तो उससे पहले मैं रिक्शा चलाता था, तो मैं एक सवारी, उसके बाद पैसे नहीं थे, मैं छोड़ के आया था। मैंने कहा कि बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा और आज भी मैं उसको याद करता हूँ कि हाँ, ये मैंने कुछ अच्छा काम किया।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। कहते हैं ना, जरूरतमंद के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने पास से, तो उससे अच्छा और क्या काम है ना। और इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि आपका कोई बहुत धन खर्च हुआ या आपकी कोई बहुत पैसा खर्च हुआ, ये तो आपने निस्वार्थ निशुल्क सेवा की और आपको भी आज उस बात पे गर्व है ना।
1: उसको मैं याद किया, आज भी याद कर सवारी के लिए
0: जी,
1: कि हाँ, मैंने उसको छोड़ा था। ये
0: बिल्कुल,
1: मुझे अब तक फख्र महसूस होता है।
0: बहुत अच्छा काम किया आपने। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: और फिल्म का नाम है राजा जानी, और गाने को बोल रहे हैं ये भी सीडी छोड़ो, नैना से नैना जोड़ो।
0: बिल्कुल, हम आप तक पहुंचा रहे हैं अभी।
2: सी दैट।

0: ABCD छोड़ो, नैनो से नैना जोड़ो। बहुत अच्छी बात है, नैनो से नैना जोड़िए और दिल से दिल जोड़िए, जैसे आपके और हमारे जुड़े हुए हैं ना। हमारे कार्यक्रम से आपका जो लगाव है और आपसे जो हमारा लगाव है, यूं ही बना रहे हमेशा। ऐसी मंगल कामना के साथ देखते हैं अगले और कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो,
1: नमस्कार,
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मेरा नाम धीरज लतारी है, गांव डेर, तहसील जिला पाटन, गुजरात से, और रहता हूँ अहमदाबाद, और आपके कार्यक्रम सुनता हूँ जब समय मिलता है तब।
0: बिल्कुल, तो धीरज जी गुजरात से हमारे ऐप के माध्यम से कार्यक्रम सुनते हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप।
1: जी, मोबाइल के जरिए।

0: सुनते हैं और एप्लीकेशन पर साफ सुथरा प्रसार आता है
1: बिल्कुल।
0: और आप लोगों की सभी की प्रस्तुति बढ़िया होती है दीदी, और इसीलिए हम जुड़ते हैं और फॉरेन कार्यक्रम तो मेरा चाहता कार्यक्रम है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धीरज जी, आज का हमारा विषय है कि क्या आपने कोई भलाई का काम ऐसा किया है जिस पर आपको आज भी गर्व महसूस होता हो?
0: जी हमने एक हमारे परिवार में एक पति पत्नी में मनमोटाव हो गया था, यानी अनबन हो गई थी, तो यानी डिवोर्स तक की नौबत आई थी, लेकिन हमने हमारे भाई को समझाया और उनकी मिसिस को भी समझाया और समझावट का आखिर परिणाम यही आया कि दोनों में जो मिलाप हो गया, यानी उनका संबंध जो था वो फिर से शुरू हो गया और आज उनके बड़े बड़े लड़के और लड़कियां हैं। तो हमें ये भलाई तो वैसे कई छोटे मोटे करते रहते हैं, लेकिन ऐसे नेक काम और किसी का अच्छा काम करें तो हमें हमारे हृदय से अंदर से गौरव हम महसूस करते हैं। और
1: बिल्कुल, आपने अपनी सूझबूझ और उचित मार्गदर्शन से एक परिवार को टूटने से बचाया है और इस पर आपको गर्व महसूस होता है, तो बता दीजिए इस अच्छी सी बात के लिए, इस अच्छे से काम के लिए आपको कौन सा गीत सुना दें?
0: ऐसे गाना मेरे को पसंद है, आप तो ऐसे न थे फिल्म का गाना है और गाने के बोले हैं तू इस तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो।
1: बिल्कुल,
0: हमलता जी ने
1: हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है और हमारे दूर दराज के श्रोता भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत खुशी होती है आपसे बात कर, आपके विचारों को जानकर और हाँ आपके पसंद के गीतों को भी सुनकर। तो अगले कौन श्रोता हैं हमारे साथ जुड़े हुए?

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दूर से हमसे जुड़े हुए हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन से हमसे जुड़े हैं आप।
1: जी हाँ बिल्कुल, महाकालेश्वर बाबा की नगरी में आपका स्वागत है।
0: कैसा है वहाँ का मौसम?
1: जी मौसम काफी अच्छा है, बादल भी छाए हुए हैं, थोड़ी ठंडी हवाएं भी चल रही है। कल पानी भी गिरा था यहाँ पे, और अभी
0: अच्छा।
1: आपको बताऊँ खेतों के सामने में लोग हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाते हैं ना बरसात में, तो अभी मतलब खेत को तैयार कर रखा है, मतलब सोयाबीन की फसल के लिए खेत को रेडी कर दिया है अभी से।
0: अच्छा, तो प्रेम सिंह जी ये बताइए कि क्या आपने कोई ऐसा भलाई का काम किया है जिस पर आपको आज भी गर्व महसूस होता हो जब आप उस चीज को याद करते हो तब?
1: जी जैसे कि बताऊँ अभी आपको कि हमारे पास में कुछ पड़ोस में रहते थे लोग, तो उनको मतलब ऐसे आर्थिक स्थिति की मतलब थोड़ी सी कमजोर थी, उनकी कुछ सामान की भी मतलब जरूरत थी उनको खरीदने के लिए, तो हमने उनको कुछ ऐसे उधार पैसे दिए और उन्होंने जो उनकी जरूरत का सामान लिया, और बस वो भी अब तक याद रखते हैं, और हम भी उनको मतलब जब मिलते हैं तो वो भी बस बोलते हैं कि आपने उस समय पे हमारी मतलब थोड़ी समस्या थी तो आपने हमारी मदद करी, तो ऐसे
0: बिल्कुल
1: मतलब वो बात मेरे आप भी याद है मुझे।
0: बिल्कुल, वही यही तो इंसानियत है कि एक इंसान का एक दूसरे इंसान के लिए यही तो फर्ज है ना, उसकी
1: जी
0: विपत्ति में
1: बिल्कुल
0: उसकी जितनी हो सके सहायता करें। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी, जैसे कि आपको बताऊँ अभी सोयाबीन की फसल लगाने के लिए हमने खेत को तैयार कर रखा है, और बस बादल बरसे और पानी बरसे और हमारे यहाँ पे सोयाबीन की फसल पैदावार हो, तो उसके लिए मैं सुनना चाहूंगा फिल्म का नाम रहेगा खानदान, और गाने के बोले नील गगन के उड़ते बादल, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया, वो वाला
0: बिल्कुल
1: गीत सुना।
0: बहुत सुंदर।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में, और कौन से श्रोता है हमारे साथ? हेलो,
3: पहले आपको, तमाम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी।
2: आपको भी हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। नाम बताइए।
3: मैं अमरजीत बात कर रहा हूँ आपसे, खंडिया गेट कॉलोनी।
2: बिल्कुल अमरजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए, आपने जीवन में अपना ऐसा कौन सा भलाई का काम किया है जिस पे आपको गर्व महसूस होता है?
3: जी, एक काम किया था जो हम नदी में नहा रहे थे, तो मैडम एक हमारा दोस्त था जो हमारे साथ में ही रहते हैं, आज भी हम साथ में रहते हैं, तो उनसे तैरना नहीं आता था, तो उनको वो उस पानी में कूद गए और वो अंदर जो है डूबने के लिए जा रहे थे, तो मैडम हमने उनको पानी में से बचाया था, निकाला था मैं।
2: बिल्कुल, तब तो आपने दूसरे का जीवन ही बचा लिया, तब तो वो आपसे बहुत खुश रहते होंगे और रहते हैं आपके संपर्क में?
3: जी जी बिल्कुल, दोस्त है मैं, साथी में ही रहते हैं हम, जब भी एक दो घंटे का समय मिलता है तो हम लोग साथी में ही गुजारते हैं।
2: बिल्कुल, फिर तो आपने जीवन दान दिया है अपने मित्र को, तो बताइए आज गीत कौन सा सुनेंगे?
3: जी मैं गीत सुनना चाहूँगा, फिल्म का नाम रहेगा नसीब, और इसमें गीत के बोल रहेंगे, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं।
2: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: थैंक यू मैम, बाय
2: बाय।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से, और कौन से श्रोता हैं हमारे साथ जानते हैं। हेलो।
2: किसे अपना कहा जाए सजी दिल तोड़ जाती हैं, सजा के दिल की महफिल को अकेला छोड़ जाते हैं। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, हम समझ पा रहे हैं हमारे कौन से श्रोता हैं, क्योंकि ये शायराना अंदाज आप ही का है। विमल जी हैं।
2: बिल्कुल, मैं आपका नियमित श्रोता ग्राम पोस्ट वक्त ना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील तातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ मैम।
1: बिल्कुल, स्वागत है विमल जी आपका। तो बताइए आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे।
2: जी, आज का बहुत ही खूबसूरत विषय है कि कभी आपने किसी का भला किया हो या इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो मैं इस बात पर ये कहना चाहूंगा कि मैं एक बार ट्रेन में जा रहा था और एक व्यक्ति था, मतलब जो ट्रेन के जंक्शन पे था, उसका पर्स गुम हो चुका था और उसके पास मतलब पैसे नहीं थे जाने के लिए। उसने कहा भैया ऐसे से हमारा पर्स मतलब गुम हो गया है और मुझे इतने रुपए की जरूरत है। उसके पास बाकायदा उसके पास सारा मतलब प्रूफ था बेचारे जाने के लिए तरह। तो उसने कहा भैया थोड़ी मदद दे दो। तो मैंने कहा मेरे पास ज्यादा तो पैसे नहीं थे, पर मैंने कहा फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैंने उसे 250 रुपए निकाल के दिए थे अपने पर्स से और उसे उस समय जाने के लिए जो ट्रेन में था उसका टिकट मिल गया और फिर वो आराम से जा सका। तो इसी तरह से मुझे वो दिन आज भी याद है।
1: लेकिन विमल जी, एक तरीका भी है ठगी का, आप श्योर थे कि हाँ उसको वाकई में जरूरत थी?
2: बिल्कुल मैम, मैं उसे समझ सकता था क्योंकि उसने जो ड्रेस पहन रखा था, कपड़े पहन रखे थे, उसके पास जो बैग था उससे जाहिर हो रहा था कि वो जाने वाला ही व्यक्ति था। और अक्सर सफर में ऐसा होता है कि लोगों की गेम कट जाती है, पर लोगों को सावधान रहना चाहिए और झगड़ा किसी के भी साथ हो सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य आपने किया विमल जी। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
2: मूवी का नाम रहेगा तेजा। आपकी बेहतरीन आवाज के साथ इस गीत को सुनना चाहूंगा और इसमें नगमा है, कह दो कि तुम

0: बिल्कुल
1: सुनवा दीजिए।
0: सुनवाते हैं हम आपको आपके पसंद का गीत।
1: मैं कुछ नाम बोल दूं उनसे परिवार के?
0: जल्दी से बोलिए।
1: सबसे पहले मेरी बात रही सरता जी, मेरे बच्चे सुख लग, उनको मैम को ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: ओके।

तो श्रोता, ये तो थी दिन में वो फोन कॉल्स जो हमें मिली और हमने रिकॉर्ड की, उसके आधार पर जो ये कार्यक्रम था वो। और अब रुख कर लेते हैं फेसबुक की तरफ।

कर लेते हैं फेसबुक की तरफ, क्योंकि फेसबुक पर भी बहुत से श्रोताओं के कमेंट्स हमें आज के विषय को लेकर मिल चुके हैं। वैसे आप अभी भी कमेंट्स कर सकते हैं, अभी भी हम आपको कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

तो कार्यक्रम का पहला कमेंट हमने शामिल किया है सादुल शहर राजस्थान से, रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का। आप लिखते हैं कि आज का प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। अगर मैं भलाई का कोई कार्य किया है तो मुझे बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेकी कर दरिया में डालने वाली बात मैं अपने आप पर खुद लागू रखता हूँ। वैसे बताना यह चाहता हूँ कि आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे। हर संभव हर समय यही प्रयास रहता है कि कोई अच्छा नेक कार्य किया जाए, उसमें अपनी सहभागिता हमेशा बनी रहती है। साथ ही लिखते हैं, लेकिन भलाई करने के बाद कोई एहसान गिनाना मेरी फितरत में नहीं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी का भला हो सके तो करना चाहिए, करने की कोशिश रहती है जिसमें हम सफल भी हो जाते हैं, लेकिन हम उसको एहसानमंद होकर कोई भी कार्य नहीं करते। फिर भी कहना चाहूँगा कि नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करते रहो, परमात्मा सब कुछ देखता है, लेकिन एहसान नहीं करना चाहिए। अनोखे लाल जी हैं कटरा चांदखा मौर्य मंदिर बरेली से, क्या लिखते हैं, आज का विषय बहुत ही अच्छा है। अपने दोस्त को मैंने एक सलाह दी, एक जगह उसकी नौकरी लगाने की सलाह दी थी और फिर उसकी नौकरी लग गई। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे वो दोस्त मिलता है तो बड़े प्रेम से मिलता है। जिंदगी में पहली बार ऐसा काम किया और इन्होंने, और इसके लिए ये आज भी शायद गर्व महसूस करते हैं अनोखे लाल जी। रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से लिखते हैं गंगा सिंह रावत, मैंने जरूरतमंदों को रक्तदान किया है। रक्तदान को महादान कहा गया है, इसीलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को साल में 2 बार अवश्य रक्तदान करना चाहिए। आप जरूरतमंद को या ब्लड बैंक में रक्त डोनेट करके पुण्य कमा सकते हैं। इसी विषय को लेकर भेरूलाल बागतर या धाकड़ उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से क्या लिखते हैं, लिखते हैं, ऐसे कई अवसर आते हैं जब हम किसी के प्रति भलाई करते हैं और हमें उस पर गर्व होता है। एक दूसरे की मदद हमेशा कोई करता ही है। कोरोना के समय जब यातायात के समस्त साधन बंद हो गए थे, लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गंतव्य स्थान पगडंडी के रास्ते पर पहुंच रहे थे, तब मानवता के नाते ग्रामीण जन बिना अपनी परवाह किए, बिना उन्हें किसी और उनसे लालच के भोजन पानी और पैकेट ग्रामीण लोग बांट रहे थे। वहां उनकी किसी से भी कोई जान पहचान नहीं थी, फिर भी इंसानियत सबसे बड़ी चीज है जो आज भी लोगों में है। और इसी क्रम में खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा, ये लिखते हैं, जिंदगी में भलाई के काम बहुत से किए हैं, ज्यादा ना बताकर अपनी तारीफ स्वयं नहीं करना चाहते हम। एक भलाई का काम जरूर साझा करना चाहता हूँ। एक बार कुछ दोस्तों के साथ खुर्जा से बुलंदशहर बिक्की पर, मतलब बाइक पर बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति बाइक के साथ बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, खून भी बहुत ज्यादा निकल रहा था, किसी ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हम सब मिलकर उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया हमने। समय पर उस व्यक्ति को इलाज मिल गया एवं वो बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा कार्य, आपने जीवन दान दिया है किसी को। हमारा, लिखते हैं, कुछ समय जरूर गया लेकिन उस व्यक्ति को जीवन दान मिल गया। बहुत अच्छे हमारे श्रोताओं का सराहनीय ये प्रयास। और अब चलते हैं गीत की ओर।

0: से मन।
1: और हमारे कौन से श्रोता हैं जिनके विचार आपसे साझा करने वाले हैं हम? तो आप हैं अयूब खान पठान। कहाँ से है ये, इन्होंने नहीं लिखा है। ये लिखते हैं, मैं UPSRTC में कंडक्टर की जॉब करता हूँ और मैंने एक सवारी का

जो बैग था वो उन्हें वापस किया था, जिसमें चांदी 250 ग्राम और गोल्ड 3 तोला था लगभग। अयूब जी, आज के टाइम में जहाँ सोने चांदी के जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं, और अगर वाकई में आपने ऐसा किया है तो बहुत काबिले तारीफ है ये काम। जी के परमार लिखते हैं गांधीनगर गुजरात से, हम एक सेवा का ग्रुप चलाते हैं, जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत नेक कार्य। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी, आप लिखते हैं, हमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसको करने से हमको ही नहीं बल्कि हमारे साथ वालों को भी गर्व होता है। हर व्यक्ति को हमेशा ही जीवन में अच्छे और खुशगवार कार्य को अंजाम देना चाहिए, जिसकी वजह से व्यक्ति को खुद भी गुरूर होता है। किसी भी अच्छे काम को करने के साथ उसे जताना उचित नहीं होता। आज भी कोशिश यही है कि जीवन में हमेशा ऐसे ही काम किए जाएं जिसकी वजह से हमें हमेशा गर्व हो। वारिस अली खान संजय नगर ऐशवाक लखनऊ से हैं। आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का नमस्कार। आपको भी आज का विषय ने बहुत अच्छा लगा है। मैं जिंदगी में बहुत से कार्य समाज हित में करता हूँ। मैं हर साल 2 बच्चों को मुफ्त पढ़ाता हूँ, उन्हें ट्यूशन पढ़ाता हूँ। दूसरी बात, मैं कानूनी सलाह लोगों को मुफ्त देता हूँ। 2 वर्षों से अस्वस्थ होने के कारण मैं ये कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन घर पर जो लोग आते हैं उनका काम बखूबी कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात। देखा हमारे श्रोता कितने अच्छे मानसिकता के, कितने अच्छे विचारधारा वाले हैं, और उनके विचारों को जानकर, उनकी सोच को जानकर, उनसे बातें कर लगता ही नहीं कि बस ये सिलसिला हम थामे। लेकिन क्या करें, श्रोताओं, समय का जो है एक सीमा है, निश्चित सीमा, उसके चलते हमें रुकना भी पड़ता है। फिलहाल तो अभी संदेश के बाद गीत का समय हो चला है, आप तक पहुंचाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, और आपसे रूबरू होते रहने का अब समय नहीं रहा। वैसे इच्छा तो बहुत थी कि आपसे और भी आपके विचारों को हम सभी श्रोताओं के साथ साझा करें, आपसे और बातचीत करें, और आपके पसंद के इतने खूबसूरत गीतों का जो ये मार्ग है, जो ये रास्ता है, यूं ही चला चले। लेकिन श्रोताओं, स्टूडियो की जो घड़ी है ना, वो कह रही है कि बस आज के लिए बस। तो चलिए, अब हम भी अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दे देते हैं, और कल्पना आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तो आपसे परमेश्वर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आपको जानकारी के दे देते हैं, एक सूक्ष्म जानकारी हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। पांच बजकर 30 मिनट पर नारी संसार में आज चर्चा का विषय रहेगा, महिलाओं के लिए जरूरी है भावनात्मक मजबूती। साथ ही ऋचा तिवारी से की गई वार्ता आपको सुनवाएंगे, विषय रहेगा उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए बदलते आर्थिक अवसर। युवाणी में होगा ओए लक्की और यशी मेहरोत्रा से की गई वार्ता, जिसका विषय होगा अपनी जड़ों से दूर होता युवा। साथ ही होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। समय रहेगा शाम 6 बजे का। 6:30 पर किसान वाणी में आज की बात में जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। साथ ही होगी कृषक गोष्ठी।

समाचार, मौसम और लोकगीतों का सफर। ग्राम जगत में चर्चा का विषय रहेगा समय के महत्व को समझें। साथ ही सुश्री प्रियंका गुप्ता से की गई वार्ता आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा जल संरक्षण आज की आवश्यकता। समय याद रखिएगा 7:00 PM का। और आपके ढेर सारे पत्रों को लेकर आएंगे 7:31 पर कार्यक्रम अनुरोध गीत में। हमारा विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00 PM।

कल सुबह यानी कि शुक्रवार की हम शुरुआत करेंगे फिल्मी फ्राइडे के साथ 8:15 पर। सोशल मीडिया पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे 10:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी लेकर आएंगे 11:30 पर। आपके ढेर सारे पत्रों के साथ फरमाइशी गीत आप सुनिए दिन में 1:00। शाम 4:05 का समय रहेगा आपके बाद आकाशवाणी के साथ का। कल शाम 5:30 पर समय रहेगा लकी 3 कार्यक्रम का। साथ ही काव्य पाठ होगा 5:45 पर श्री पी के दीवाना के द्वारा। युवाणी 6:00 का समय रहेगा, होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में चर्चा की जाएगी विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथ ही श्री सुनील कुमार गंगवार से की गई भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे। विषय रहेगा कृषक अनुभव में सुनील कुमार गंगवार जी से की गई भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे और समय रहेगा 6:30 पर। कृषि पाठशाला में परिचर्चा आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा सह फसली खेतों को लाभकारी बनाएं। प्रतिभागी रहेंगे श्री सुरेश चंद्र और श्री पप्पू। समय रहेगा 7:00 का। आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन लेकर आएंगे 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी संक्षिप्त सूक्ष्म रेखा रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की। और आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली।

समय मिलाइए शाम के 5:05 और 12 सेकंड हुए हैं। अब भजन संध्या लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पहला भजन महेंद्र कपूर की आवाज में है, नरमे है नारायण, नरमे है नारायण।

ईश्वर की कृपा से यह शरीर प्राप्त हुआ है। अब इस शरीर को गुण रूपी रत्नों से सजाना हमारा कर्तव्य है। ज्ञान, ध्यान, तपस्या, प्रेम, सेवा, ये वो रत्न हैं जिन्हें एक बार प्राप्त कर लिया जाए तो सदैव साथ रहते हैं। दुनिया के अन्य रत्न शरीर छूटते ही हमें छोड़ देते हैं, तो क्यों ना उन रत्नों को प्राप्त करें जो जन्म जन्मांतर हमारे साथ रहेंगे।

अनूप जलोटा की आवाज में इसी भजन के साथ आज की भजन संध्या यहीं तक। समय मिला ये शाम के 5:30:27 हुए हैं और आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। घड़ी के इसी समय के साथ अनुप्रीता सिंह कार्यक्रम नारी संसार लेकर हमारे समक्ष आ चुकी हैं, तो लीजिए सुनते हैं इनके साथ कार्यक्रम नारी संसार।

अनुप्रीता सिंह यानी मेरे साथ। सखियों, मुझे लगता है कि हम सभी बहनें ज्यादातर भावनात्मक ही होती हैं, किसी की भी बातों को हमेशा दिल से ही लेती हैं, फिर चाहे वो बातें अच्छी हों या ना हों। लेकिन अब हमें अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए सखियों, क्योंकि जब हम ज्यादा इमोशनल होते हैं ना, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं। कभी कभी हमारे अपने ही इसका पूरा फायदा उठा लेते हैं बहनों। ऐसा मुझे लगता है कि हर किसी के साथ होता है, और हमारी भावनाओं के साथ खेल भी लेते हैं, हमसे अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं और पीछे शायद हमें मुड़कर भी नहीं देखते। हम उनका काम कर चुके होते हैं और हमें लगता है कि शायद ये कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये तो कहेंगे कि हाँ आपने अच्छा किया। लेकिन नहीं, ये सिर्फ हमारा सोचना होता है, ये हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करते। और हम जो है मन ही मन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हमें काम तो सबके आना चाहिए, लेकिन अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को ऐसा कर लेना चाहिए कि जिससे हमें कोई परेशान ही ना कर पाए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी के भी काम बस उतना ही आए जितना कि हम कर सकें। अगर हद से ज़्यादा हम किसी के काम आते हैं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाने लगते हैं, हमारे इमोशंस को समझते नहीं हैं और ये सोचते हैं कि अरे ये तो कर ही देता है। नहीं तो मैं अपनी सभी सखियों से यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए ज़रूरी है भावनात्मक मजबूती।

0: और सखियों, अब मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल। आप पर्यावरण दिवस कैसे मनाती हैं? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, आप पर्यावरण दिवस कैसे मनाती हैं? और आइए अब चलते हैं आपको लेकर हम वार्ता की ओर। विषय है उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए बदलते आर्थिक अवसर। वार्ताकार हैं ऋचा तिवारी।
1: उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए बदलते आर्थिक अवसर। आज का युग परिवर्तन और प्रगति का युग है। समाज, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन परिवर्तनों का सबसे सकारात्मक प्रभाव महिलाओं की स्थिति पर पड़ा है। पहले महिलाओं को केवल घर परिवार तक ही सीमित माना जाता था, लेकिन आज वे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। शिक्षा और तकनीकी विकास ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान किया है। विशेष रूप से उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आज महिला केवल नौकरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर समाज और देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उद्यमिता का अर्थ है नवीन विचारों, कौशल और संसाधनों का उपयोग करके व्यवसाय स्थापित करना और उनका संचालन करना। जब महिला उद्यमिता के क्षेत्र में उतरती हैं, तो वह न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन करती हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराती हैं। इससे आर्थिक विकास को गति मिलती है और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने परिवार और समाज में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले महिलाओं के लिए व्यवसाय शुरू करना कठिन माना जाता था, क्योंकि उन्हें शिक्षा, पूंजी, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन की कमी का सामना करना पड़ता था। परंतु आज परिस्थितियां बदल रही हैं। सरकारें महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, महिला ई हार्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग स्थापित कर रही हैं। तकनीकी और इंटरनेट ने महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं घर बैठे अपने व्यवसाय चला सकती हैं। आज अनेक महिलाएं ऑनलाइन कपड़े, हस्तशिल्प, घरेलू उत्पादें, ब्यूटी प्रोडक्ट और खाद्य पदार्थों का व्यवसाय सफलतापूर्वक कर रही हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट और डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने व्यापार को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों की महिला भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच बना रही है। महिलाओं की उद्यमिता केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तनों के भी माध्यम बन रही है। जब कोई महिला आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है। इससे परिवार और समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति देती है। यही कारण है कि आज महिला केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित न रहकर नेतृत्व और प्रबंधन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की उद्यमिता तेजी से विकसित हो रही है। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाँव की महिलाएं मिलकर दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और कृषि आधारित उद्योग से जुड़ रही हैं। इससे उनकी आय बढ़ रही है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में योगदान दे रही हैं। ग्रामीण महिलाओं की ये प्रगति देश की समग्र आर्थिक उन्नति

उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि महिलाओं के सामने अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। सामाजिक रूढ़िवादिता, पारिवारिक दबाव, संसाधनों की कमी और लैंगिक भेदभाव जैसे समस्या कई बार महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती है। अनेक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं मिल पाती। कई बार परिवार और समाज महिलाओं की क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते। इसके अतिरिक्त घरेलू जिम्मेदारियों के

0: औद्योगिक, फैशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बैंकिंग क्षेत्र जैसे महिलाओं ने अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। इन सफल महिलाओं की कहानी अन्य महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये सिद्ध हो चुका है कि यदि महिलाओं को उचित अवसर और सहयोग मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। वित्तीय स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण पक्ष बचत और निवेश की समझ भी है। आज महिलाएं बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूक हो रही हैं। वे अपनी आय का सही प्रबंधन करना सीख रही हैं। वित्तीय साक्षरता महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और भविष्य की सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार और विभिन्न संस्थाएं महिलाओं के वित्तीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है, जिससे वे आर्थिक निर्णय बेहतर निर्णय तरीके से ले सके। शिक्षा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे बड़ी कुंजी है। शिक्षित महिलाएं न केवल अपने लिए अवसर निर्माण करती हैं, बल्कि अपने बच्चों और पूरे परिवार के भविष्य के लिए भी बेहतर बनाती हैं। आज उस शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रबंधक और उद्यमी बन रही हैं। तकनीकी क्षेत्र और डिजिटल कौशल ने महिलाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। इसीलिए महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। समाज और परिवार की भूमिका भी महिलाओं की प्रगति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार महिलाओं को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करे तो वे अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकती हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों का समान अवसर मिलना चाहिए। लैंगिक समानता केवल महिलाओं के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तभी समाज वास्तविक रूप से समृद्ध और विकसित बन सकेगा। आज का समय महिलाओं के लिए नए अवसरों और संभावनाओं का समय है। उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को न केवल आर्थिक शक्ति ही देती, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान भी प्रदान करती है। बदलती अर्थव्यवस्था, तकनीकी प्रगति, सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के लिए सफलता के अनेक मार्ग खोल रखे हैं। जब आवश्यकता इस बात की है कि समाज महिलाओं की प्रतिभा और क्षमताओं को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अतः कहा जा सकता है कि उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। ये न केवल महिलाओं के जीवन को बदल रहा है, बल्कि परिवार, समाज और देश की आर्थिक संरचना को भी मजबूत बना रहा है। महिलाओं की भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्र का पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसीलिए हमें महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और समान अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वे आत्मनिर्भर बने, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जब महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तभी एक समृद्ध, सशक्त और संतुलित समाज का निर्माण संभव होगा। धन्यवाद
1: सखियों। अभी आपने सुनी है वार्ता, विषय था उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए बदलते आर्थिक अवसर, और वार्ताकार थी ऋचा तिवारी।

0: सखियो, मैंने आपसे किया था सवाल कि आप पर्यावरण दिवस कैसे मनाती हैं। तो आप सोचिए और सोचती रहिए, प्रोग्राम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि मैं पर्यावरण दिवस कैसे मनाती हूँ। और आइए अब हम रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, इनसे मिलिए, और जिसका विषय है आज का, बेटियों को समझाएं गुड टच बैड टच। और इसके विषय में जानकारी दे रही हैं आशा पांडे। सखियों, आज हम आपकी बात करवा रहे हैं एक ऐसी सखी से जो कि हमें बताएंगी कि हमारी बेटियां जब बड़ी होती हैं कि हमारे ऊपर कौन सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो आइए बात करते हैं अपनी इन सखी से। क्या नाम है आपका?
1: आशा।
0: आशा, वेरी नाइस नेम। आशा जी, आज का हमारा विषय है बेटियों को समझाएं गुड टच बैड टच। तो सबसे पहले आप ये बताइए, आपकी बेटियां हैं?
1: हाँ, दो हैं, एक 12 ईयर, एक 8 ईयर।
0: ओके, फिर तो आपकी बेटियां बड़ी हो रही हैं। और जो मेरा विषय है ये आपके ऊपर बिल्कुल सटीक भी बैठता है। यूं तो बेटियां हर घर के लिए बहुत सौभाग्यशाली होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं वैसे वैसे एक माँ की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। तो आशा जी, इस विषय में आप क्या कहेंगी?
1: होती है, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे बच्चे 8 ईयर 10 ईयर के होते हैं, वैसे तो उनको बचपन से ही सिखाना चाहिए कि गुड टच बैड टच क्या होता है,
0: जी
1: बट एक एज के बाद हमें उनको बताना पड़ता है बेटा बाहर ऐसे रहना है, गुड टच बैड टच बताना पड़ता है, उन्हें अकेले ज्यादा देर छोड़ नहीं सकते बाहर, हमें
0: बिल्कुल।
1: उनके साथ रहना पड़ता है।
0: तो आप अपनी बेटियों को जब बाहर बच्चे जाते हैं तो उनको आप क्या समझाती हैं? जैसे आपकी बेटियां हैं, जैसे आपने बताया कि बड़ी बेटी आपकी

0: 12 ईयर की है, तो वो
1: हाँ
0: बड़ी हो रही है, तो जब आपकी बच्चियां बाहर जाती हैं या घर में भी, आप
1: हाँ
0: उनको किस तरह से क्या समझाती हैं?
1: बेटा, किसी के लिए हम नहीं है तो डोर नहीं खोलना है,
0: जी
1: अंदर से ही बात करनी है,
0: जी
1: और बाहर जाओ तो लोग से दूर रहना है, किसी के घर नहीं जाना है, बाहर पार्क में खेलो, ऐसे
0: बिल्कुल
1: ऐसे एरिया में मत जाओ जहाँ कोई ना हो, सारी चीजें बतानी पड़ती है, इवन स्कूल में भी क्या हुआ ये बताओ।
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि बच्चों से हमें हर बात पूछनी चाहिए, और उनकी मदर बन के नहीं, उनकी फ्रेंड बन के उनसे ये भी
1: फ्रेंड बन
0: जानना
1: के हाँ
0: चाहिए कि इवन दैट बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसा स्कूल में होता है जो शायद बच्चों के मन पर छा जाता है, तो अगर हम रोज बच्चों से पूछते हैं तो हमें पता चलेगा कि उनके साथ कहाँ क्या हो
1: हाँ
0: रहा है। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपना जो मेन विषय है हमारा, गुड टच और बैड टच। तो
1: हाँ
0: ये अपनी बेटियों को आप कैसे समझाएंगी, उनको कैसे बताएंगी कि क्या है गुड टच और क्या है बैड टच?
1: अगर मम्मी पापा टच करते हैं, घर में कोई टच करता है
0: जी
1: तो ठीक है, बट बाहर कोई अगर टच करता है तो उनसे दूर रहो, उनको मना करो कि
0: बिल्कुल
1: हमें टच मत करो, और घर में आके बताओ,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोई
0: सही
1: कुछ
0: बात यही
1: परेशान कर
0: है,
1: रहा है तुमको, कुछ भी हो रहा है, घर में आके बताओ।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि बाहर निकल के जो बेटियां हैं उनको 50 तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन ऐसे में हमें ये देखना है कि बच्चे हमारे कैसे हैं, उन्हें हम किस तरह की शिक्षा दें कि बच्चों को बाहर निकल के परेशानियां ना उठानी पड़े। तो अपनी बेटियों को ये जरूर समझाइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये बात आशा जी ने बिल्कुल सही कही है कि माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनका छूना और जो उनका एहसास होता है वो एक अलग चीज होती है, लेकिन गर्ल्स में एक सिक्स सेंस होता है कि उनको पता चल जाता है कि सामने वाला उनको किस नजर से देख रहा है या किस नजर से उनको छूने की कोशिश कर रहा है। बस हमें करना क्या है कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उसी चीज को बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा आशा
1: बेटियों
0: जी,
1: ही, इवन हमको बेटों को भी बताना चाहिए,
0: ये आपने बहुत अच्छी बात कही है, बेटों को भी बताना चाहिए। तो बेटों
1: सारे
0: को
1: बच्चों
0: क्या
1: को
0: बताना
1: बताना
0: चाहिए?
1: चाहिए,
0: जी
1: उनको भी बताना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है।
0: बिल्कुल, जो शिक्षा हमें बेटियों को देनी चाहिए
1: हाँ
0: आज के समय में,
1: सेम, दोनों जेंडर
0: बिल्कुल
1: सेम है आज के टाइम में, दोनों
0: बिल्कुल
1: जेंडर
0: बिल्कुल,
1: सेम है।
0: बेटों को भी उतनी ही जरूरत है ये सब सीखने की, समझने की, जितनी की बेटियों को है।
1: बेटियों को है
0: आपकी बेटियां क्या कर रही हैं?
1: तो 7th में है और
0: जी
1: एक 2nd में है अभी।
0: चलिए, मैं उनके उज्जवल भविष्य
1: हाँ
0: की कामना करूंगी,
1: थैंक यू।
0: और हर एक माँ से यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटों को तो लेकर चलिए, लेकिन बेटियों को खास तौर से अभी से ये चीजें समझानी शुरू कीजिए कि आगे बाहर निकल के उनके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा
1: क्या
0: नहीं
1: बुरा है।
0: है। बिल्कुल, तो आप हमारी सखियों को कोई सजेशन देना चाहेंगी जो माँ हैं और जिनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं?
1: अपने बच्चों को बिल्कुल अकेले बाहर ना छोड़ें, उनके साथ जाएं, कहीं भी जाएं,
0: जी
1: उनको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें, और उनको समझाएं कि बाहर किसी भी ऐसे प्लेस पे ना जाएं जहां कोई ना हो, भीड़ भाड़ में ही रहें, बच्चों को स्पेशली ये समझाना चाहिए।
0: आशा जी, आपकी जानकारी मेरी सखियां जरूर सुनेंगी और उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद भी आएगी। अच्छा, आप कोई गीत सुनना चाहेंगी?
1: हाँ बिल्कुल,
0: जी बताइए।
1: बाबा की रानी हूँ, आंखों का पानी हूँ।
0: वेरी नाइस, तो आपकी बेटियों के लिए आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

और सखियों, मैंने आपसे किया था सवाल कि आप पर्यावरण दिवस कैसे मनाती हैं, आप बताइए। भाई मैं तो जरूर एक ना एक पेड़ लगाती हूँ, इस तरह से मनाती हूँ। और अभी जो आप हमारा सेगमेंट सुन रहे थे, इनसे मिलिए, उसका विषय था बेटियों को समझाएं गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। जो हमारी जानकारी दे रही थी उनका नाम था आशा पांडे। और सखियों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो दीजिए अपनी रेडियो हम सफर अनुप्रीता सिंह को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और अब प्रज्ञा लेकर आ गई है कार्यक्रम युवाणी।

हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल आदाब बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार आप सभी का स्वागत करती है आपकी दोस्त प्रज्ञा पाठक आपका आपके अपने प्रोग्राम युवाणी में। दोस्तों बात करेंगे हम आज अपनी जड़ों से दूर होता युवा के ऊपर। मैं आपसे जरा सी एक बात कहना चाहूंगी, एक कबीर का दोहा है जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाही। कि जैसे हिरण अपनी ही नाभि में छुपी कस्तूरी की खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है, वैसे ही आज का युवा शांति और सेहत की तलाश में भटक रहा है। दोस्तों बदलाव बुरी बात नहीं है, आधुनिक बनना तकनीक सीखना ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी संस्कृति को भूलकर आधुनिक बनना ऐसा तो ठीक नहीं है। ये तो वही बात हुई जैसा किसी पेड़ की जड़ों को काट देना और फिर उसमें मीठे फलों की उम्मीद करना। शाखों में टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कहो कि अपनी औकात में रहें। दोस्तों अगर हमें दुनिया के सामने मजबूती से खड़े रहना है तो अपनी जड़ों को गहरा करना होगा। और इसी पर लेकर आया आपके लिए खास वार्ता अपनी जड़ों से दूर होता युवा। बातचीत कर

0: इस पे यशी मल्होत्रा जी।
1: युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार दोस्त, आकाशवाणी के खास कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होता युवा। कहा जाता है कि किसी भी पेड़ की मजबूती उसकी जड़ों में होती है। ठीक उसी तरह किसी इंसान की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं, भाषा और संस्कारों से होती है। एक युवा होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आज का युवा आधुनिकता और भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर होता जा रहा है। आज तकनीक और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। युवा नई नई चीजें सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात। लेकिन इसी दौड़ में कई बार वो अपनी मातृभाषा, पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं। पहले घरों में दादा दादी की कहानियां सुनाई देती थी, त्योहार पूरे परिवार के साथ मनाए जाते थे और अपनी भाषा बोलने में एक गर्व महसूस होता था। लेकिन आज एक मोबाइल की स्क्रीन ने रिश्तों की गर्माहट को कहीं कम कर दिया है। मानो पूरी दुनिया ही उस 6 से 6.5 इंच की एक मोबाइल स्क्रीन में सिमट कर रह गई हो। युवाओं, आधुनिक बनना गलत नहीं है, समय के साथ चलना भी जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आज हम में से बहुत से युवा ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी भाषा बोलने में झिझक महसूस होती है। लोक संगीत, लोक कला और अपनी परंपराओं से उनका जुड़ाव खत्म होता जा रहा है। विदेशी संस्कृति को अपनाना आसान लगने लगा है, जबकि अपनी ही संस्कृति एक पुरानी सोच लगने लगी है। ये सवाल मुझसे, आपसे और हम सभी से है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि जिस इंसान की जड़ें मजबूत होती हैं, वही जीवन में मजबूती से खड़ा रह पाता है। हमारे देश की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा, अपना पहनावा, अपना संगीत और अपनी परंपरा है। यही विविधता भारत की असली पहचान है। युवाओं को चाहिए कि वो आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी अपनाएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें और अपने त्योहारों और परंपराओं से हमेशा जुड़े रहें। ये कहा भी गया है कि किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिलों और आत्मा में बसती है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो युवाओं, आगे बढ़िए, सपने देखिए, दुनिया को जानिए, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू और अपनी पहचान को हमेशा अपने साथ रखिए। इसी संदेश के साथ मुझे यानी के यशी को दीजिए अब इजाजत। आप सुन रहे थे अपना खास कार्यक्रम युववाणी।
0: दोस्तों, आप चलते हैं प्यारे सॉन्ग की तरफ। आप वरना यही कहेंगे कि इतनी सारी बातें करते रहते हैं, ये पता नहीं सॉन्ग कब सुनाएंगे। और ज़रूरी, चिंता मत करिए, आपका एंटरटेनमेंट करना भी हमारा फ़र्ज़ है। फरमाइश आई हमारे पास बालोद्रा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर की, दुर्गेश नागेपुर और सूरज कुमार ढाक से, जसव खंडवा मध्य प्रदेश से, राजपाल कछपीए सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ की, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक बलवीर, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है दिनेश कुमार वर्मा रंगीनी छत्तीसगढ़ से, दतरंगी बाटापरा से हीरामणि वर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो की, निसार अहमद अंसारी की, संजय डींगिया बागपत से। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
3: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
2: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
3: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
2: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
4: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
5: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
6: चलिए युवा साथियों, हम आपसे वादा करते हैं रोजाना किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आपसे मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। आज भी हमारे बीच में एक खास मेहमान जुड़ी हैं और ये खास इसलिए भी हैं कि आज के इस खास दिन पर हम इनसे बातचीत करेंगे और इस दिन की ये अहमियत अच्छे से समझ सकती हैं। आज का दिन हम युवा साथी मना रहे हैं क्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और आज का खास दिन पर हमने इनको जोड़ा है हमारे साथ। आप ही हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दी। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे आपको हमारे साथ जोड़कर कि इस सफर में, क्योंकि आपके बारे में जब मैंने जाना तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी युवा साथी आज आपको सुनेंगे आपके इस सफर के, इस जर्नी के बारे में जाने।
7: जी नमस्कार, मेरा नाम दीपमाला पांडे है और मैं वन टीचर वन कॉल एक हमारा अभियान है, मैं उसकी फाउंडर हूँ। ये अभियान जो है, हम इस फील्ड में, मैं और मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, नॉर्मल टीचर्स हैं
6: जी,
7: और कुछ डॉक्टर्स हैं। तो हम लोग मिलकर के जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए काम करते हैं।
6: दीपमाला जी, की आज इस विश्व दिवस के रूप में जो मुख्य जो हमारा मकसद है, उद्देश्य है, और हम जो समाज के प्रति जो जागरूकता फैला सकते हैं उसके बारे में मैं आपसे जानना

0: जी प्रज्ञा जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन है, तो मेनली हम ये इस याद में मनाते हैं कि जो दुनिया भर में हमारे लाखों बच्चे हैं जो किसी युद्ध की वजह से, हिंसा
1: जी
0: की वजह से, कोई भी भेदभाव, उपेक्षा, इन सब का सामना करते हैं,
1: जी
0: तो इसके लिए मनाते हैं। और उसकी वजह से जो उनमें शोषण हो रहा है, जो उपेक्षा हो रही है, तो बच्चे उसके लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। रिस्पॉन्सिबल तो हम बड़े लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। तो सभी बच्चों का अधिकार है कि उन्हें सुरक्षित वातावरण मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, सम्मान मिले। और जो दिव्यांग बच्चे हैं वो तो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि
1: जी जी
0: वो कोई भी संकट होता है तो उसमें बहुत पीछे छूट जाते हैं।
1: जी
0: तो मतलब थोड़ा सा हमें इस चीज को संज्ञान में लाने की जरूरत है, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि वो ही इस समय मतलब देश को जो भी आगे बढ़ाना है उसमें सबसे ज्यादा काम जो इस समय वर्तमान में युवा पीढ़ी जो है वही कर रही है। तो उनमें एक संवेदना आए बच्चों को लेकर के कि किस तरह से हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, उनके लिए सुरक्षित समावेशी समाज बना सकते हैं,
1: जी
0: और बिना किसी डर के, भेदभाव के, बच्चे जो है वो अपना बचपन गुजारे और आगे वो हमारे देश के लिए अच्छा काम करें।
1: अच्छा दीपमाला जी, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने एक अपना एनजीओ खोल रखा है और काफी सारे टीचर्स वगैरह उसके साथ जुड़े हुए हैं, और आप दिव्यांग बच्चों के लिए एक आवाज के रूप में सामने आई हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप उन बच्चों के बीच में रही हैं, तो आज के इस दौर में जैसे बच्चे किस तरह से मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हो रहे हैं, आप मुझे बताइए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि आप उनको करीब से जानती हैं।
0: जी बिल्कुल। अभी क्या है, जो हमारे जो बच्चे हैं,
1: जी
0: मतलब मेनली मैं ये देखती हूँ कि समाज में अगर किसी भी तरह की अराजकता फैली है या किसी
1: जी
0: भी तरह
1: जी
0: का हिंसा हो रही है या दिव्यांगता के ही शिकार हैं बच्चे, तो एक जो असंवेदनशीलता आ चुकी है समाज में, तो उसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है बच्चे के डेवलपमेंट में, उसकी पढ़ाई में, उसकी ग्रोथ में, अपब्रिंगिंग में, पूरी पर्सनालिटी पे उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट जाता है।
1: जी
0: तो इन सब चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं, वो चाहे स्कूल हो, घर हो, सोसाइटी हो, कहीं पे भी अगर वो बच्चा इनसिक्योर फील कर रहा है किसी भी वजह से, हमारे असंवेदनशील व्यवहार की वजह
1: जी
0: से कर
1: जी
0: रहा है, या कोई भी वो हिंसा देख रहा है किसी भी तरह की, चाहे घर में देख रहा हो या बाहर देख रहा हो, तो वो सब उसके पर्सनालिटी में बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट ला रहे हैं। और वो अंदर ही अंदर वो जो एक आक्रोश और हिंसक प्रवृत्ति जो है वो
1: जी
0: बचपन से
1: जी
0: ही बच्चों में जन्म लेने लग जाती है। तो ये सारी बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जो मैंने महसूस की हैं, वो बच्चों में आ जाती हैं कि अगर वो अपने आसपास गाली देते हुए ही सुन रहे हैं
1: जी
0: तो वो अनकॉन्शियसली वो शब्द जो होते हैं उनके दिमाग में बैठ जाते हैं और वो रिपीट करते हैं उन चीजों को। मतलब वो किसी भी तरह से उसको जज नहीं कर पाते कि सही है या गलत है, वो तुरंत कॉपी कर लेते हैं अपने बड़ों को। तो
1: जी
0: जब भी वो कुछ इस तरह के नेगेटिव माहौल में रहते हैं तो वो उसी नेगेटिविटी को अपनी पर्सनालिटी में डेवलप कर लेते हैं, वो वैसे ही हो जाते हैं, तो
1: जी
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चल के
1: सही कहा।
0: भविष्य में ये उनके लिए बहुत परेशानी का कारण बन जाता है।
1: जी, विमला जी, वैसे भी हम देखते हैं ना, हमारे घर में भी हमारे बड़े लोग हैं, वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, जितने भी बड़े भाई बहन हैं, और मैं तो अपने घर में बड़ी बहन रही हूँ, कि आप जो बिहेव करेंगे वही आपका छोटा भाई बहन है वो आपको देख के सीखेगा, तो हमेशा एक वेल मैनर्ड की तरह बिहेव करिए, ताकि उसको उस पे गलत इफेक्ट ना पड़े आपके इस गलत व्यवहार का, क्योंकि वो वही देख के सीखता है, बच्चा बहुत जल्दी अडेप्ट करता है। तो आपने
0: जी
1: बताया कि
0: जी
1: अगर निगेटिव माहौल में रहेगा तो बच्चे कितनी जल्दी निगेटिविटी को अडेप्ट करेंगे, तो उतना ही उनके लिए जरूरी है एक अच्छा माहौल देना। अच्छा दीपमाला जी, आज आपसे इतनी सारी बातें हुई हैं, बच्चों के बारे में आपने मुझे बताया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने ये एनजीओ खोला, आपने इसका फैसला कब लिया, मतलब कैसे आपके मन में आया कि आपको इधर जाना चाहिए, इस जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, कैसे आपको प्रेरणा मिली ये शुरू करने के लिए?
0: बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही टीचर हूँ,
1: जी
0: अभी तो प्रिंसिपल हूँ, तो बच्चों के साथ लगातार मतलब मेरा कनेक्शन रहा है। और खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं। मैंने एक इंक्लूसिव एजुकेशन की ट्रेनिंग करी थी, तो एक होता है कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, हम भी
1: जी
0: बच्चों से सीखते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं वाली चीज होती है।
1: जी जी
0: तो जब वो इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने ट्रेनिंग ली तो मैंने देखा कि एक दिव्यांगता भी एक उसकी एक श्रेणी है, और वो बच्चे जो है उनका ड्रॉप आउट रेट, उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होना, ये मतलब बहुत बड़ी समस्या है।
1: जी जी
0: तो जब टीचर्स टीचर्स के साथ ट्रेनिंग के टाइम पे हमने लगभग 1600 टीचर्स के साथ इस बात पे डिस्कशन किया, तो मुझे ये चीज लगा कि शायद इस पे काम करने की जरूरत है कि

0: हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे जो है वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ ही नहीं पा रहे। रीजन बहुत सारे हैं बट
1: जी
0: वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो उनकी रीच स्कूल तक है ही नहीं, जबकि इतने स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स तो हर 1 किलोमीटर पे गवर्नमेंट स्कूल है, फ्री एजुकेशन है, तो फिर वो क्यों स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं।
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: वहीं से ये शुरुआत हुई मेरी इस फील्ड में काम करने की और बच्चों से जुड़ने की। और जब बच्चों के साथ आप जुड़ते हो और आप रिजल्ट्स देखते हो कि हाँ बच्चे स्कूल आ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो जो वो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको खुद ही मोटिवेट करते हैं आगे उस चीज को
1: जी
0: काम
1: जी
0: करने के लिए, उसको
1: जी
0: फैलाने के लिए।
1: अच्छा दीपमाला जी, क्या कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए कि जो दिव्यांग बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं या भेदभाव उनके साथ होता है, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, या हम एक जागरूक युवा की तरह कैसे इस चीज को हम खुद से एप्लीकेबल कर सकते हैं, बाकी और दूसरों पर भी एक अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नॉर्मल बच्चे और दिव्यांग बच्चे किसी भी तरह से अलग नहीं है।
1: जी
0: एक्चुअल में एजुकेशन में या कैसे भी आप अगर किसी भी पर्सपेक्टिव से देखो तो हर बच्चा अपने आप में अलग है,
1: जी
0: सबकी एबिलिटी अलग है, एप्टीट्यूड एटीट्यूड सब अलग होते हैं, सब बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है।
1: जी
0: पर क्या हुआ कि हमने कुछ फिजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन बच्चों को कैटेगराइज कर दिया, एक मतलब माइंडसेट बन गया सोसाइटी
1: जी
0: का
1: बिल्कुल
0: कि हाँ ये बच्चे जो हैं ये देख नहीं सकते तो मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, ये सुन नहीं सकते तो कुछ नहीं कर सकते, या ये मूव नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। एक परसेप्शन क्रिएट हो गया सोसाइटी में और वो परसेप्शन क्या हुआ, फिर लगातार वो चलते जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो जा रहा है। तो
1: जी
0: युवाओं को मतलब वो बिल्कुल सभी बच्चे मैंने देखा, अब जब मैं काम करती हूँ और बहुत सारे हमारे साथी काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हर बच्चे में एबिलिटी है, हर बच्चा सीख रहा है, बस ये कि कोई देर से सीख रहा है, कोई जल्दी सीख रहा है, कोई साइन लैंग्वेज से सीख रहा है, कोई ब्रेल से सीख रहा है,
1: जी जी जी बिल्कुल
0: बल्कि कुछ बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी है, कुछ की पेंटिंग बहुत अच्छी है। मैं थोड़ा सा ऑफ बिट जा रही हूँ बट मैं अभी बताना चाहूंगी
1: जी
0: कि
1: जी
0: अभी हम एक इवेंट कर रहे हैं तो हमने फैशन शो में कुछ जो हमारे सुन और बोल नहीं सकते, हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनको उसमें पार्टिसिपेट करा रहे हैं। तो वो बच्चे बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं बट उनके जो लेग्स का मूवमेंट है, फुट मूवमेंट है, वो इतना परफेक्ट है कि उसको देख के आप सोच ही नहीं सकते कि इस बच्चे को म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, वो इतना परफेक्टली उसको कॉपी कर लेते हैं, इतना परफेक्टली वो एक आपके एक इशारे में समझ जाते हैं चीजों को। तो बस सोचने का तरीका है
1: जी
0: कि हमने ये सोच बना रखी है कि नहीं कर सकते, जैसे ही हम ये सोचते हैं ये कर सकते हैं तो वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा कर ले जा रहे हैं बच्चे, मैंने तो ये देखा है।
1: जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग डिफरेंस पैदा कर देते हैं खुद से ही, कि वो अलग हैं और उनसे ये नहीं हो पाएगा। हम अपने मन में ही ये सारी बातें या गणना कर लेते हैं कि अगर इनके साथ कोई दिक्कत है तो दिक्कत उनके साथ नहीं, हमारी सोच में है। पहले तो हमें अपनी
0: जी
1: सोच
0: बिल्कुल
1: को ठीक करना चाहिए, और हर बच्चे को हक है अपने आप को प्रूव करने का, आगे बढ़ने का, और उसको भी पूरा अधिकार है, उसको भी शिक्षा मिले पूरी तरीके से, और वो भी समाज का हिस्सा है तो वो भी समाज की उन्नति के लिए एक भाग बने। अच्छा आपने मुझे बताया कि दिव्यांग बच्चों में बहुत सारी आपने क्वालिटीज देखी हैं, कितने सारी की मेमोरीज अच्छी है, कुछ डांस में बहुत अच्छे हैं, कुछ पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप जब दिव्यांग बच्चों के आप मोटिवेट करती हैं स्कूल आने के लिए, आप उनको बताती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उनके माता पिता की क्या सोच रहती है, तो उनका क्या रवैया रहता है, उनका क्या रुख रहता है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
0: जब भी मैं दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स से मिली हूँ तो जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा है वो बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर के होता है
1: जी
0: कि जब मेरा बच्चा, क्योंकि हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात करते हैं, हम इंक्लूसिव स्कूल्स में नॉर्मल और स्पेशल बच्चों को एक साथ पढ़ने की को रिकमेंड करते हैं,
1: जी
0: तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि मेरा बच्चा अगर इस ऐसे ओपन एटमोसफेयर में जाएगा तो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: वो सिक्योर है, वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उसके साथी बच्चे जो हैं वो उसको मतलब बुली ना करें। तो इस तरह की जो एक नेगेटिव वो प्रोसेस रहती है पेरेंट्स
1: जी
0: के
1: जी
0: दिमाग में,
1: उनके साथ
0: उनकी
1: मतलब उनका
0: सिक्योरिटी के
1: डर,
0: लेकर के,
1: जी।
0: हाँ बिल्कुल डर रहता है अंदर से केयर की, वहां पे प्रॉपर उसे केयर केयर नहीं मिलेगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम उसे घर में बहुत ही केयर में रखे होते हैं बच्चे को
1: जी
0: और ये लगता है स्कूल में उसकी प्रॉपर केयर नहीं होगी, तो ये सारे छोटे छोटे कंसर्न होते हैं पेरेंट्स के। लेकिन जब बच्चा स्कूल आता है और जब पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं मेरा बच्चा तो सीख रहा है, वो तो
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: सिक्योर है,
1: बिल्कुल बिल्कुल

0: स्कूल से वापस आके खुश है
1: जी
0: तो फिर उनका कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है और वो खुद भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को स्कूल में, और बल्कि चार और पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप ही भेजिए।
1: जी
0: मेरे स्कूल में एक बच्चा था, उसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ क्लास
1: जी
0: सिक्स में। तो फिर मतलब क्योंकि फिर सभी जगह ये बात पता चली कि दिव्यांग बच्चा था और वो नवोदय में पढ़ने जा रहा
1: जी
0: है,
1: जी
0: उसके पेरेंट्स ने भी बताया होगा। तो मेरे पास बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कॉल आए कि क्या तरीका है कि हमारा बच्चा जो है वो नवोदय में जाए। तो मतलब मैंने उन्हें बताया कि कोई ऐसा स्पेशल तरीका नहीं है भाई, नवोदय के फॉर्म आते हैं, आप सब फॉर्म डलवाइए और बच्चे को
1: जी जी
0: पढ़ाइए
1: जी
0: और भेज
1: बिल्कुल
0: दीजिए।
1: बिल्कुल
0: तो मतलब उन्हें अंदाज नहीं था कि हाँ एक नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करके हमारा बच्चा जो है वो भी अच्छे रेपुटेटेड स्कूल्स में जा सकता है, उसके एग्जाम्स क्लियर कर सकता है और आगे पढ़ सकता है। तो
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही
0: हाँ
1: बात कही कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के मन में डर बैठा होता है अपने बच्चे को लेकर। जब देखते हैं ना आजकल के समाज में कि आपको आपका बच्चा अलग है, आपका बच्चा अलग है, ये कह कह के, तो उनको डर बैठने लग जाता है, क्या हम इस समाज में अपने बच्चे को निकाल सकते हैं, क्या इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जब उनको श्योरिटी मिलती है कि उनका बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है या पढ़ रहा है, तो उनको बहुत खुशी मिलती है। अच्छा, आपने बताया कि काफी आपके एनजीओ से काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा आपके एनजीओ के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपका जो एनजीओ वो किस तरीके से वर्क करता है और कैसे कैसे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: इनिशियली स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, एक्चुअल में ये एक अभियान है, वन टीचर वन कॉल एक अभियान है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मन की बात में इसको अप्रिशिएट किया था कि किस तरह से हमने एक नेटवर्किंग करी,
1: जी
0: लोगों को जोड़ा इससे। तो बहुत सारे टीचर्स को जोड़ा स्टार्टिंग में हमने, फिर टीचर्स के साथ हमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी क्योंकि तो बहुत सारे केसेस में स्पेशल बच्चों को उनके किस तरह से उन्हें पढ़ाएं सिखाएं तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स भी चाहिए होती हैं। तो हमने स्पेशल एजुकेटर्स को जोड़ा, फिर बच्चों के फिजियोथेरेपी के लिए या हम लोग कैंप्स लगाते हैं कि
1: जी
0: बच्चों की प्रॉपर टेस्टिंग हो, तो उसके लिए फिर हमने डॉक्टर्स को जोड़ा। फिर और भी सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, कभी किसी बच्चे को डोनेशन की जरूरत होती है तो वो लोग भी जोड़ते हैं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्कूल्स के टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, डॉक्टर्स और इस तरह के लोग जो है वो लगातार हमसे जुड़ते रहते हैं और जुड़ जुड़ के एक काफी अच्छा बड़ा नेटवर्क बन गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सब वॉलंटियर अवेलेबल रहते हैं हमेशा बच्चों की मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए।
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सारे पेरेंट्स भी जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स का फीडबैक भी चाहिए होता है, तो
1: जी बिल्कुल
0: या पेरेंट्स को क्या समस्याएं हैं, हम किन समस्याओं पे काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स, इवन अब तो कुछ बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बच्चे ही और अपने साथी बच्चों की मदद कर रहे हैं, मतलब वो भी एक वॉलेंटियर की तरह
1: जी
0: ही हमारे साथ काम कर रहे हैं।
1: जी जी जी जी दीपमाला जी, आप नहीं बोला कि ये जितने भी युवा साथी हैं वो आपसे जुड़े। मैं चलते चलते आपसे एक बात जानना चाहूंगी, आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आप एक समाज के इतने प्यारे हिस्से के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारे युवा साथी भी उस हिस्से के बारे में जाने, समझें, और एक खास जो लगाव आपके बात करने से पता चल रहा है, वो लगाव हमारे युवा साथी तक पहुंचे।
0: बिल्कुल, आज के जो युवा है उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो सफलता है वो सिर्फ अच्छी नौकरी, बड़ी कमाई, सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए। अच्छी सफलता तब है जब आपका जो नॉलेज है, आपका टाइम है, आपकी सेंसिटिविटी है, उससे आप कम से कम एक बच्चे के जीवन जो है उसको बेहतर बना सके। मतलब हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमारा इसका नाम ही है वन टीचर वन कॉल, तो आपका एक फोन कॉल, एक घंटा, एक संवेदनशील दिल, ये किसी भी बच्चे का जो भविष्य है उसको बदल सकता है।
1: जो स्पेशल बच्चों की आवाज़ बनी है उसके बारे में जानकर, उसके सफ़र के बारे में जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारे युवा साथी इसके बारे में सुनेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज आप से बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: भारत सरकार ने देश भर में 21वीं पशुधन गणना आरंभ कर दी है।
3: सरकारी कर्मचारी आपके घर भी आते ही होंगे। सभी पशुपालक अपने पशुओं की सही जानकारी दें ताकि सरकार आपके लिए बेहतर योजनाएं बना सके।
2: याद रहे, अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 की 21वीं पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा संग्रह किया जा रहा है। कोई भी पशु छूटने ना पाए।
3: मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी।
2: पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा देश हित में जारी।
4: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।

0: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: दोस्तों अब चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। इसका सही उत्तर है भारत, और हमें सही उत्तर मिला है अजीत कसाना लदावली से, लाल मोहम्मद अंसारी का, प्रवीण चौहान का, नंद कुमार ठाकुर का बालोद्रा बाजार छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजपीए का, शादुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ का, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा का, दिनेश कुमार रंगीनी छत्तीसगढ़ से, दतरेंगी बाटापारा से हीरामणि वर्मा, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो का, हल्द्वानी रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत का, करेली से निसार अहमद अंसारी का, संजय डींगिया बागपत से, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तन पुरी गोस्वामी का, और बरेली से अनोखेलाल मौर्य का। इन सभी ने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना ख्याल रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज के प्रोग्राम से अपनी दोस्त प्रज्ञा पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार साथियों।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। और अब श्रोताओं, समय हो चला है किसान वाणी का, तो लीजिए रविंद्र भैया और क्षमा दीदी लेकर हाजिर हो चुकी हैं और आ चुकी हैं हमारे समक्ष लेकर कार्यक्रम किसान वाणी।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को आपकी बहन क्षमा
2: और भैया रघु की
1: राम राम। और बताओ रघु भैया, क्या हाल चाल है? खेती बाड़ी, घर परिवार सब कैसे चल रहे हैं?
2: देखो क्षमा बहन, खेती बाड़ी की बात करें तो खेती बाड़ी सही चल रही है, लेकिन जा है कि अब गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ रही है और खेतन में काम भी करने पड़ रहे है, तो बस जा है कि मौसम की थोड़ी मार झेलने पड़ रही है। वैसे जा है कि गन्ना की देखभाल भी सही चल रही है और पौध भी डाल दी है हमने धानन की, और काम जो है वे सब सही चल रहे हैं, मगर बस थोड़ी सी गर्मी से राहत ना मिल पा रही है।
1: बिल्कुल रघु भैया, इस समय तो गर्मी तो जी तोड़ पड़ रही है भैया। हाँ। और देखो हमारे साथी खेत पे जाते हैं तो हमेशा अपना सर को जो गमछा से ढक के जाएं, और भैया देखो जहाँ मौसम में पानी की कमी ना होने दें, हमेशा पानी की बोतल अपने साथ ही रखें भैया।
2: हमारे पड़ोसी हैं प्यारे लाल, उनको हो गई डायरिया।
1: अरे भैया
2: हाँ, तो पानी पिए ना रहे हैं, हौस में काम करे जा रहे हैं, फौरो चलाए जा रहे हैं, खेत में फौरो चलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी ना पी रहे हैं। तो हमने उनसे कही भैया पानी की बोतल जल ले आयो, कि यहाँ ना थोड़ो और कर ले तो पी लेंगे, तो पी लेंगे, तो लो उनको काम खराब ही गो। तो अब परसों डॉक्टर साहब को कह रहे हैं कि 5,000 रुपया लागे।
1: अरे राम, देखो भैया जा इतनी बिकट गर्मी में तो हमारे साथ ही पानी की कमी ना हो रही है।
2: हाँ, और हौस में काम ना करें। हाँ। जैसे बीच बीच में अपने छायादार पेड़ के नीचे आराम
1: बिल्कुल,
2: करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: आप सुना वो खेती बाड़ी को का हाल चाल है?
1: बस बढ़िया,

0: चल रहे हो खेती बाड़ी को काम, और हमारी भी गन्ना की देखभाल चल रही है भैया, और पौध डाल दिए, बाकी देखभाल कर रहे हैं वो,
1: हाँ भाई, तो यही काम है।
0: यही
1: तो
0: काम है।
1: आज सवाल कल आई हो क्षमा बहन।
0: तो भैया आज सवाल लेकर आए हैं हम अपने साथियों के लिए, भूजल संरक्षण में किसान भाई कैसे योगदान कर सकते हैं?
1: तो बड़ो अच्छो सवाल है, क्योंकि इस समय खेत बचाओ अभियान भी चला रही है कृषि मंत्रालय, और खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत ये सब बातें हैं, हमें भूजल संरक्षण करने हैं, मृदा की सेहत सुधारने हैं, फसल
0: हाँ
1: चक्र अपनाने हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियों को प्रयोग करने हैं। तो बहुत अच्छो सवाल आज आपने पूछो, और भैया जी आपको जवाब लिख के रखेंगे, और आप भी कार्यक्रम के अंत में बता दिए।
0: और अगु भैया देखो, हम बातचीत करते हैं सरकारी योजनाओं की, सरकार हमारी समय समय पर बहुत सी योजनाएं चलाती है,
1: हाँ
0: उसी
1: हाँ
0: में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो हमारे साथियों को हम अपने कार्यक्रम के द्वारा बताते रहते हैं कि कौन कौन सी योजनाओं के क्या क्या लाभ हैं, वो उनके प्रति जागरूक रहें और अधिक से अधिक लाभ उठावें। जाए क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भारत सरकार की एक फसल बीमा योजना है, जिसे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई।
1: बिल्कुल क्षमा बहन, इतनी अच्छी योजना है कि पिछले साल हमने, क्योंकि हमने तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए,
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: पास है हम लेते हैं खेती के लिए लोन, तो जब लोन लेते हैं तो जो है कि बैंक जाते हैं तो वे हमारी फसल को बीमा कर देते हैं, चाहे
0: अच्छा
1: रबी फसल हो या खरीफ फसल हो, जब बीमा होता है तो कर देते हैं। और अच्छी बात जा भाई कि पिछले साल आएगी बाढ़, जब धान उठान
0: हाँ
1: चले,
0: हाँ
1: हमारे
0: भैया
1: धान तो सब खेते में सड़ गए,
0: अच्छा
1: मगर जा है कि हमने बीमा कराया दो तो हमें बाको मुआवजा मिल गो।
0: बिल्कुल रघु भैया, क्योंकि देखो प्राकृतिक आपदा का कोई ठिकाना तो है ना कि
1: हाँ,
0: कभी भी आ जाए किसी के
1: कहूँ
0: ऊपर भी।
1: आंधी है, कहूँ पानी है,
0: हाँ
1: कहूँ ओरे हैं, और खास कर देखिए क्षमा बहन, हम लोगों को तो काम ऐसा है कि हमारी खेतिए पे ज्यादा टूट पड़ते हैं प्राकृतिक आपदा।
0: हाँ भैया देखो, हर साल कुछ ना कुछ हो जाता है कि कोई ना कोई आपदा आ जाता है और हमारे जो किसान साथी हैं वो पिछड़ जाते हैं भैया।
1: बिल्कुल, तो अब जा है कि जाके लिए जो बहुत अच्छी योजना है, और हमारे भैया जाको लाभ उठावेंगे, और बता दो कुछ जय योजना के बारे में।
0: भैया जय योजना के जो लाभ हैं वो
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता मिल जाते हैं भैया,
1: हाँ
0: किसानों की आय में स्थिरता रहता है, कृषि ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिलता है, और तो और रघु भैया प्राकृतिक आपदाओं के समय पूरी सुरक्षा देते हैं हमारी सरकार।
1: बिल्कुल, और जय सुरक्षा बहुत जरूरी है कि हम देखो 6 महीना मेहनत करते हैं, और खेत में जब फसल तैयार हो जाती है, बाकी बाद एकदम ओरे बारिश या प्राकृतिक कोई भी आपदा फसल ले जाए,
0: हाँ
1: तो फिर हमारी तो जाएगी कई साल की आमदनी खत्म ही जाती है।
0: बिल्कुल रघु भैया, और जय योजना को जो मुख्य उद्देश्य है वे तो यही है, किसानों की फसल हानि की भरपाई करना, यानी कि
1: बिल्कुल
0: हमारे जो किसान साथियों को नुकसान हो जाते हैं उसकी भरपाई कर पाते किसान हमारी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। और देखो रघु भैया, आज दिन है गुरुवार, तो आज के दिन हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से साथी स्टूडियो में आ गए और वे इंतजार कर रहे हैं कि रघु भैया अपने सवालों के द्वारा उनसे बातचीत करें
1: हाँ हाँ
0: कृषि गोष्ठी के अंतर्गत। तो देखो भैया, आज कृषि गोष्ठी को विषय है खरीफ फसलों से अधिक उत्पादन कैसे लें, और तो रघु भैया आप बातचीत कर लो हमारे भैया श्री राम स्वरूप, एवाब हुसैन जी और शाहबुल हसन जैदी जी से।
1: तो भैया देखो, कृषि गोष्ठी अब हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जा है कि जब बातचीत हम करेंगे खेती बाड़ी की, और सब पूछेंगे आपको, हाल चाल पूछेंगे, खेती बाड़ी के बारे में पूछेंगे, तो जा है वैसे पहले सबसे पहले कहा है कि बामे एक दूसरे को जान तो लें, कौन भैया का नाम है, कौन से गांव से आए हैं। तो सबसे पहले भैया बता दो आपनो नाम और कौन से गाँव से आए हो।
2: नाम है रामस्वरूप,
1: अच्छा रामस्वरूप भैया, कौन से गाँव रहते हो
2: बरखना
1: और तहसील कौन सी है।
2: नवाबगंज।
1: अच्छा, तो रामस्वरूप भैया कितनी उम्र हुई आपकी इस समय।
2: उम्र हुई करीब 60 साल।
1: 60 साल की उम्र है आपकी। तो खेती कौन से कर रहे हो।
2: खेती 20 साल की उम्र से कर रहे हैं।
1: अच्छा, मतलब पिताजी के संग से खेती करनो शुरू कर दे हो।
2: हाँ,
1: तो कौन कौन सी फसलें कर रहे हो खेतन में।
2: अब इतने टाइम लौकी है, काली
1: हाँ
2: तोरई है,
1: हाँ हाँ
2: बैंगन है।
1: अच्छा, तो सब्जी की फसलें ज्यादा कर दो।
2: हाँ, हम सब्जी कर रहे हैं।
1: अच्छा, और भैया आपको क्या नाम है, कौन से गांव से आए हो।
3: शहाबुल हसन जैदी नाम है, बरखना गांव से।
1: बरखना गांव से आए हो, तो कौन सी तहसील पड़ती है बरखना की।
3: नवाबगंज।
1: नवाबगंज तहसील है। कितनी उम्र होगी।
3: उम्र है 30 साल।
1: 30 साल। खेती कितने साल हुए कर तुम्हें।
3: खेती हो गए 8-10 साल।
1: 8-10 साल हुए गए। तो अब जा बताओ कि कौन कौन सी फसलें करते हो आप अपने खेतन में।
3: खेतन में इतने टाइम जो है गन्ना धान की फसल कर रहे हैं।
1: अच्छा, और भैया आपको क्या नाम है।
4: एवाब हुसैन।
1: अहबाब हुसैन भैया आप

0: कौन से गांव रहते हो?
1: बरखना हरचंदपुर।
0: अच्छा, बरखना हरचंदपुर रहते हो, तो तीनों भैया हमारे एक ही गांव से हैं, और सबसे अच्छी बात है कि तो हमें पता चल जाएगी, और भैया अलग अलग खेती कर रहे हैं, कैसी खेती कर रहे हैं, तो कैसी पैदावार भी रही है बरखना हरचंदपुर में। तो उम्र क्या होगी आपकी?
1: 36-37 साल है।
0: अच्छा, तो खेती कौन से कर रहे हो?
1: 15 साल
0: 15 साल से खेती कर रहे हो। तो देखो भैया, जैसे आज को हमारा विषय तो वह है कि खरीफ फसलन से अच्छा उत्पादन कैसे लें, और अब सीजन आएगा वो खरीफ फसलन को, अब जैसे धान मुख्य फसल है तो बाकी तैयारी चल रही है। तो रामस्वरूप भैया, अब जब बताओ कि जो खरीफ फसलन में धान की फसल है तो पौध डार दी
2: कल
0: कैसे डारी, कैसे कैसे तैयारी करी?
2: पहले खोद खोदो, जोतवाओ, फिर बढ़िया करके बनाओ उसे घास कूरा, फिर उसमें जल भरो।
0: अच्छा।
2: अंजन से।
0: हाँ।
2: फिर पटेला लगाओ, जिसके बाद में पौध डाली, धान। हाँ, धान बोए।
0: अच्छा, बीज कहाँ से लाए?
2: बीज नवाबगंज से लाए गए।
0: नवाबगंज से बीज लो, तो ये बीज को का भिजाए कहू तो रखता है ये
2: काट देना? भिजाए
0: तो कैसे करके भिजाए?
2: जल में भिजोए दाए, कट्टा में दबाए दाए, तीसरे दिन कल को पानी डाल दो उनमें, फिर से भिजोए दाए। तीसरे दिन वे सब कल्ला दे गए इतने तो बड़ो।
0: अच्छा अच्छा,
2: तई डाल दई वे।
0: तो मामा कदहर करने पड़ते?
2: हाँ, कंदहर करने पड़ा है।
0: कैसे करूँ कदहर?
2: अब थोड़े धान डाले,
0: अभी
2: पानी भर के हाथ से पटेला लगा दो, लकड़िया वकड़िया।
0: हाँ, तो ठीक है। अब जैसे बड़ो खेत होते तो
2: ट्रैक्टर चलवा दे।
0: हाँ, जो बस सही है। तो अब कल पौध डार दई।
2: हाँ, डार दई पौध।
0: अब जाके देखभाल कैसे करोगे?
2: अब 3-4 दिन के बाद उठ जाये, जब पानी मार देंगे।
0: हाँ हाँ।
2: और चार चार उंगली बेड़ हो जाये तो ये खाद को छींटा मार देंगे।
0: हाँ
2: हाँ। 20 दिन में बेड़ तैयार हो जाये पौध।
0: अब जैसे गर्मी तो ज्यादा पड़ रही है
2: ना, उससे कोई फर्क ना है, गील पे गील पानी लगता रहा है।
0: अच्छा, तो पानी कौन से टाइम लगा वो पौध में?
2: पौध में शाम खन को लगा मैं।
0: शाम खन को बासे का फायदा होए?
2: बासे रात भर में पानी खत्म हो जाए।
0: हाँ हाँ।
2: नमी बनी रहे खेत में,
0: नमी बनी रहा
2: है। और दिन में भरा होते ही पानी गर्म पड़े तो पौध खराब होए।
0: हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारे भैया भी आज कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे होंगे आपकी बात कि कैसे देखभाल करना चाहिए अपनी पौध की, क्योंकि पौध बड़ी नाजुक होती है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया करके कराए।
0: अच्छा, अब बात करते हैं साहबुल हसन जैदी भैया से। तो साहबुल हसन भैया, अच्छा बताओ आप कौन कौन सी खेती करो?
3: धान की और गन्ने की।
0: अच्छा, तो अब जैसे इस समय गन्ना की जो फसल है, तो बामक का काम कर रहे हो?
3: इतने टाइम जो है गुड़ाई लगा रहे हैं।
0: गुड़ाई लगा खेत में। अच्छा, चूंकि गर्मी ज्यादा है तो सिंचाई की ज्यादा जरूरत,
3: सिंचाई की जरूरत भी पड़ रही है।
0: अच्छा, का बरखना घाई नहर की सिंचाई है का?
2: ना
0: है। नहर की सिंचाई ना है, तो सिंचाई की क्या व्यवस्था कर रहे हो?
3: सिंचाई व्यवस्था जो है इंजन है।
0: हाँ,
3: और सोलर पैनल की भी व्यवस्था है।
0: अच्छा, सोलर पैनल जो लगे हैं बासे अपने
3: भराई कर ले।
0: तो गन्ना की फसल से अच्छा उत्पादन मिले भैया को, तो बाकी लिए का काम करना सही है?
3: उसके लिए काम जो है सिंचाई, इतने टाइम सिंचाई बहुत जरूरी है।
0: हाँ,
3: सिंचाई करो, गुड़ाई
0: गुड़ाई कर।
3: हाँ, गुड़ाई जितनी होगी उतनी बढ़िया कल्ला निकल गई एकदम।
0: अच्छा, तो गुड़ाई से और का फायदा हो जाता है फसल को?
3: गुड़ाई से जो है मूढ़ा जो तगड़े पड़ जाते हैं, बड़े बड़े पड़ जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, घास भी खो जाते हैं।
0: हाँ।
3: तो एकदम जो है उसे फसल को गन्ने को कीड़ा खाए ना है, घास। हाँ। ना होगी तो
0: बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जो बताओ मोए कि आजकल जो सुनने में आ रही है, कल कुछ भैया से बात करी मैंने कि गन्ना की फसल में सुड़ी लग रही है।
3: हाँ, सुड़ी लग रही गन्ना की फसल में।
0: तो जासे का नुकसान हुए फसल को?
3: तो सुड़ी जो है अंदर जो गन्ने की पोंगी होती है उसे सुखा दे।
0: अच्छा।
3: काट देती नीचे से, पौधा सूख जाता है ऊपर से।
0: तो जाको कैसे उपचार करते भैया?
3: उसके लिए जो है कीटनाशक दवाई लगाते हैं।
0: अच्छा। हाँ,
3: कीटनाशक दवाएं दुकान पे ऐसे ला के उसका छिड़काव करते हैं।
0: हाँ।
3: छिड़काव करना बहुत जरूरी है, पानी भर के छिड़काव करो तो सुड़ी जो है जड़ से खत्म हो जाएगी।
0: और जब अब जैसे भैया अब बीच में आंधी उंधी आई, तो आंधी उंधी आई आपके घाई?
3: हाँ, आंधी आई उधर।
0: तो आंधी से नुकसान तो ना हो जाता?
3: थोड़े बहुत पेड़ जो मेड़ा लगा हुआ है खेत किनारे, पेड़ फट गए।
0: हाँ,
3: खेत में गिर गए, उससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ।
0: अच्छा, अब बात करते हैं अहबाब हुसैन भैया से। तो अहबाब हुसैन भैया, जब बताओ कि आप कौन कौन सी फसलें करते हो खेतन में?
1: गन्ने की और धान की और ढैंचे की।
0: अच्छा, ढैंचा करूँ है
1: जी।
0: तो ढेचा आपकी बो आपने?
1: हाँ, बोया, जम गया, एक एक बालिश का हो गया।
0: अच्छा, तो जाके पलटाई को करोगे?
1: जो जब पौध तैयार हो जाएगी।
0: हाँ हाँ।
1: पानी भर के जब पलट दिया जाएगा।
0: अच्छा, अब जब बताओ कि जो ढेचा की बुवाई करी

0: हरी खाद के रूप में जा सकता, का फायदा होएगो खेत को।
1: इससे यूरिया कम लगेगी, गोबर की खाद है नहीं, यूरिया यूरिया कम लगेगी, धान अच्छा होगा, हरी खाद बन जाएगी, फसल में बीमारी कम लगेगी और फसल की पैदावार ज्यादा मिलेगी,
0: पैदावार ज्यादा मिलेगी और जो मट्टी है वहां ताकत बढ़
1: ताकत
0: जाएगी।
1: आएगी
0: बिल्कुल। तो इस तरह से अब वैसे तो भैया

0: अब वैसे तो भैया ने हमारे हरी खादों करनो कम कर दी है, जाके पीछे का वजह है?
1: इसके पीछे और खाद यूरिया फूरिया ये कम लगानी होंगी और गोबर की खाद बहुत कम आएगी
0: कम हैगी,
1: इसी।
0: लेकिन पहले बहुत भैया हमारे ढेचाई बुवाई करते हैं, अब ढेचाई बुवाई कुछ कम कर दी
1: बहुत
0: है,
1: कम हो गई,
0: तो जाको का कारण है?
1: पहले ज्यादा होती, अब आदमी जब फसल कटी तुरंत दूसरी फसल बो देता है।
0: हाँ, और मतलब जाएगी, पहले देखो खेत परहल छूटे रहते
1: छूटे रहते
0: और हरी खाद बो देते,
1: बोल
0: लेकिन अब कहा है कि आदमी को जल्दी है
1: जल्दी है
0: कि एक फसल काटो और दूसरी फसल बोए के
1: बोल
0: खेत से ले लो, मगर जा में जाए फसल तो लइए पा रहे हैं, लेकिन जाए मट्टी कमजोर हो जा रही है। तो अब रामस्वरूप भैया, आपने शुरुआत में बताई कि आप सब्जी फसलें कर दो, तो कौन कौन सी सब्जी फसल है आपका इस समय?
2: इतने टाइम घुइया चल रही है,
0: हाँ,
2: काली तोरी चल रही है, लौकी चल रही है, टमाटर चल रहे हैं।
0: तो अब जैसे गर्मी पड़ रही है बहुत, तो इनकी कैसे देखभाल कर रहे हो?
2: देखभाल का शाम खन को पानी लगावा है, रात भर में पानी खत्म हो जाए, खेत में गील बनी रहा है, फसल अच्छी खासी हो है, कीड़ा फीड़ा लग जाए तो उसकी स्प्रे कर दें।
0: अच्छा, तो अब जिनकी तुड़ाई कैसे करते हो, कैसे पता चलती है कि अब
2: तुड़ाई सुबह कर लिया था
0: कि फसल की तुड़ाई को समय ही, वो कैसे पता कर चल जाते हैं?
2: फसल खुद पक जाते, पीली धमार जाई वैसे वो है हरी, फिर जब पकेगी तो पीली धमार चली जाई, पीली पीली तोड़त रहे, हरी हरी छोड़त रहे।
0: अच्छा, तो जैसे अब घुइया की फसल है, तो जा में का काम कर रहे हैं किसान भैया?
2: घुइया की फसल में चार पुती हैं पेड़ में, दो तोड़ लई दो रहन दई,
0: अच्छा
2: 15 दिन के बाद बेऊ हो जाएंगी।
0: तो कितने दिन में तुड़ाई करते हो घुइया की?
2: घुइया तो बहुत टाइम लगाए उसमें,
0: हाँ,
2: खोदत पनौत फिर बाजार ले जाओ या आड़त पे ले जाओ,
0: हाँ,
2: उसमें पूरा दिन लग रहा है।
0: दिन लग जाए
2: हाँ,
0: तो मतलब जाए कि सब्जी की जो खेती है बा में जाए टाइम ज्यादा लगता
2: टाइम ज्यादा आया,
0: लेकिन फायदा भी तो ज्यादा है,
2: ज्यादा फायदा भी है।
0: अब जैसे जो भैया गेहूं धान की खेती कर रहे हैं और आप
2: हमें,
0: सब्जी की खेती कर
2: हाँ,
0: रहे हो, तो फायदा किस में ज्यादा है?
2: हमें तो फायदा सब्जी में है,
0: अच्छा
2: जब तैयार हो जाए तो 5-6 महीना 4 महीना चलते बा,
0: हाँ,
2: रोज तोड़ो दूसरे तीसरे तोड़त रहो बेचत रहो, भाई गेहूं धान की फसल करो तो 6 महीना बाद मिलेगी,
0: 6 महीना बाद मिलेगी। तो ऐसे में जाए कि जैसे एक तो नकदी पैसा जल्दी जल्दी मिलते रहे
2: हाँ,
0: थे,
2: जेब में पैसा बने रहा है,
0: पैसा बनो रहा है और बाद में इंतजार करने पड़ते हैं और जा है कि, लेकिन अगर हमारे भैया सब्जी की फसलें करत रहे धीरे धीरे तो उनकी आमदनी भी सही
2: हाँ
0: रहेगी
2: सही है,
0: और बड़ी फसल में भी मदद मिलेगी पैसा
2: हाँ
0: लगाने की।
2: हाँ मदद मिलेगी।
0: तो साहबुल हसैन जैदी जी, आप अब धान की तैयारी कर रहे हो, तो कैसे खेतन की तैयारी करोगे धान की फसल के लिए?
3: धान के फसल के लिए खेत को जो है गहरा खूब भैरों से जोत दिया है,
0: हाँ,
3: ऐसे ही पड़ा है, खूब परल बन जाएगा, और बारिश होगी फिर जोत दिया जाएगा,
0: अच्छा
3: जो भी घास है हल्का फुल्का जो जमता जमता है वो जम जाएगा सब।
0: अच्छा, तो लगभग कितनी जुताई करने पड़ती है आपको?
3: जुताई 2 बार हैरों से जोत डाला खेत, अब 2 बार अभी और जोतना है, फिर जो है धान की अच्छी पैदावार के लिए कल्टीवेटर हो,
0: अच्छा
3: उससे खूब अकरा खेत जितना जुत जाएगा धान के लिए उतना बढ़िया है।
0: अच्छा, मतलब भाई सही बात है, वैज्ञानिक भी बताते हैं कि खेत की तैयारी बहुत मुख्य बात है, अगर खेत हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमें फसल भी अच्छी मिलेगी और हमें फायदा भी ज्यादा होगा, और अगर हम खेते की तैयारी में कमी छोड़ देंगे तो फिर का हमें उत्पादन मिलेगा। तो आज का बताना चाह रहे हो रेडियो के माध्यम से, किस तरह से धान के खेत की तैयारी करें भैया?
3: धान की खेत की तैयारी जैसे करें, खेत को ज्यादा ज्यादा जोतें, जोतें और अकरा जुतवाएं, हैरों से जोतें, रूटर का यहाँ पे इस्तेमाल ना करें, और कल्टीवेटर तो खूब गहरे गहरे जोत के खेत को छोड़ दें इसे, उसके बाद जब कंधार करें तो अभी उसे कल्टीवेटर चलावा है, फिर पटला चलावा है बराबर करने के लिए, और उससे पाटा मारा है खूब खेत को लेवल करके, बड़ी बड़ी क्यारियों में पानी कम से खड़ा कर दें बढ़िया करके, फिर उसके बाद पद की रोपाई करवाएं।
0: बिल्कुल, तो हमारे भैया समझ गए होंगे कार्यक्रम के माध्यम से साहबुल हसन जैदी जी ने जो बातें बताई हैं कि किस तरह से खेत को तैयार करें, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अहबाब हुसैन भैया से, तो अहबाब हुसैन भैया जा बताओ कि अब मेड़ उड़ तो ना काट रहे हैं गांव में, जैसे पहले बहुत मेड़े उड़े काटते पास पड़ोसी खेतन की, तो अब तो ना कटौती हो रही है?
1: अब मेड़ों कटौती नहीं हो रही, अब लिप्टिस पॉपुलर मेड़ों से लगती है।
0: अच्छा, तो जो लिप्टिस और पॉपुलर हमारे भैया खेती के संग संग लगा रहे हैं, तो जैसे का फायदा है किसान को?
1: इससे ये फायदा है, इससे 1 रुपया मिल जाता है किसानों को,
0: हाँ
1: 4-6 साल के बाद।
0: अच्छा, तो कितनी जैसे कितने दिन में तैयार हो जाती है?
1: 5-7 साल तक।

0: से 7 साल तैयार हो जाती है। तो अब जैसे चौमासे आने वाले हैं, तो इस समय लगा सकते हैं भैया पेड़?
1: जी लगा सकते हैं,
0: अच्छा, तो कौन कौन से पेड़ लगा सकते हैं?
1: लिप्टिस के लगाएंगे, पापरल के तो लगेंगे नहीं। लगन
0: तो इनकी जैसे जो पेड़ लगाई होता है, देखो एक तो लगा देनो है, ऊपर से उनकी देखभाल, तो देखभाल कैसे करते चाहिए भैया इनको?
1: देखभाल सो अभी लगा दिया जाए धान गाड़ने से पहले बढ़िया बना दिया जाए, पानी नहीं लगता रहा है, और जो कीट कीड़ों बैठे सुरा कर दे पत्तों, इस पे स्प्रे स्प्रे लग जाए।
0: हाँ,
1: जब धान गाड़े पेड़ों पर हल्की हल्की मट्टी लग जाए, पेड़ नहीं गिरे।
0: नहीं गिरे। दूसरी बात यह है कि पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखी जाए?
1: 3 मीटर
0: डिगले
1: करके रखे यहाँ।
0: अच्छा अच्छा। हाँ,
1: पेड़ मटाता रहा, फसल पर भी कोई नुकसान नहीं आएगा।
0: तो जैसे अब पहले तो हमारे जो किसान भैया है पेड़ ना लगाते, लेकिन अब कुछ समय से देखी जा रही खूब पेड़ लगा रहे हैं, जाके पीछे क्या बात है?
1: इससे 1 रुपया काश्तकार को मिल जाता है। फसल में तो ज्यादा पैदावार है ही नहीं, बहुत कम आएगी। और क्या कहा, मेड़ भी कटना रुक गई, एक दो मेड़ों पीछे पहले बहुत होते
0: लड़ाई होती, लड़ाई होती। तो लड़ाई झगड़ा भी रुको है।
1: हाँ जी।
0: कि भैया तुम अपनी हद में गाड़ लो, हम अपनी हद में गाड़ लें, तो अच्छी बात है। और देखो गांव बस्ती में प्रेम से रहते हैं तो तरक्की होती है। अब लड़ाई धुंध करो तो कोर्ट कचहरी भाजने पड़ते, बासहू हमारे किसान भैया की तरक्की रुकती है।
1: अब बाजारों की भी आड़ होगी पेड़ों से लगने से।
0: हाँ,
1: तारू बांधने में आराम है।
0: बिल्कुल, जो आवारा पशु हैं उनसे भी सुरक्षा हो सकती है। तो अहबाब हुसैन जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है किसानन के लिए, उनको फायदा ले रहे हो?
1: जी, ऐसे सोलर पैनल है किसानों के लिए, 50% छूट दे रही।
0: तो जैसे का फायदा होगा किसान को?
1: इससे डीजल की बचत होगी। डीजल से पानी इतना नहीं लगता, इसमें पैनल से लग जाता है।
0: तो मतलब ये है कि अगर सोलर पैनल पे, एक तो सरकार ने सब्सिडी दी है 50%, ऊपर से यह है कि अब देख रहे हो इस समय मतलब पूरे विश्व में एक संकट है ऊर्जा को, ऐसे में जाए कि अब जिसके सोलर पैनल लगो वाको कोई चिंता ना है,
1: चिंता नहीं।
0: बस घाम निकलत रहा है और वाको खेत भर रहा है। तो अब ये देखो बहुत सी चीजें होती हैं कि नजर ना जाती है, लेकिन ये कितनी काम की चीज है। आज अगर डीजल ना मिले तो सोलर जिसको लागू बाकी भराई होत रहेगी, और सरकार ने सब्सिडी भी दी है। तो रामस्वरूप भैया अब जब बताओ कि खेती बाड़ी तो करते हैं हम लोग, आपो कर रहे हो, हमो कर रहे हैं, जे सब भैया कर रहे हैं, तो ज्यादा उत्पादन लेने के लिए कौन कौन सी बातन को ध्यान रखना चाहिए?
2: अब धान, अब देखो जितनी मेहनत कर ले फसल में उतने ही लाभ मिल जाए।
0: हाँ हाँ।
2: और मेहनत कम करो तो कोई फसल करो।
0: हाँ हाँ।
2: तो लाभ कम मिला है,
0: कम मिला है। तो जैसे आप पौध तो डालिए दइए, 15, 20 और 25 दिन की पौध लगाने के लिए हुई जाती है।
2: हाँ।
0: तो जब धान लगाओगे तो का ध्यान रखोगे, कैसी पौध की रोपाई करोगे?
2: एक बिला तो पौध लगावा है, एक पौध हिया एक हिया, कलहर बनवा एक लगा दई, और जब हो गई 10-15 दिन की तई खाद को छींटा मार दे।
0: अच्छा।
2: फिर धान होकर चलो आवे,
0: धान तो होकर चली आवे, लेकिन अगर घास जम आई तो बाकी का करतो?
2: फिर नराई कर दे उसकी,
0: नराई
2: हाँ, गैला डाल दे, बहुत से लोग दबा स्प्रे कर दे।
0: अब आजकल चक्कर जो है कि ज्यादा मजदूरों ना मिल रहे गांव में, तो फिर दवाई करोगे या नराई करवाओगे?
2: नराइयो हो दबाओ है, दोनों काम करा है।
0: अच्छा अच्छा। लेकिन जैसे फायदा तो नराई से है?
2: नराई से तो धान ज्यादा मुड़े आवे।
0: हाँ हाँ।
2: जमीन मुलायम होई, जब आदमी ना मिल रहे हैं तो मजबूरी है, तो फिर दबा से काम हो जाए।
0: तो जैसे आपके इतने कौन कौन से धान की प्रजाति की बुवाई करते हैं?
2: नए नए धान है, कई मेल धान है।
0: हाँ, जैसे मोटू है, सरबती है,
2: PR 13 है, PR 14 है, सरबती है, कुशला 4 है, और 64-44 है।
0: अच्छा।
2: कई मेल धान है कि नहीं, कहीं गिलावा है।
0: अच्छा। हाँ, मतलब जो है जो जिसकी समझ में आई वो बोलो,
2: वही बोले।
0: अच्छा अच्छा। तो जैसे आप चौमासों को महीना आ रहे हुए, तो जब बताओ कि पशुपालन कर रहे हो ना कर रहे हो?
2: हाँ, दो भैंसा है।
0: तो अब पशुपालन में तो बड़ो ध्यान रखने की जरूरत है, एक तो अब गर्मी पड़ रही है,
2: रोज नहलावा है उन्हें।
0: हाँ।
2: चरी बोए दई है, गेहूं काट के चरी लावाए, उन्हें भूसमा मिलवाए, और एक बाल्टी पानी डालो, थोड़ो दानो डालो, खिलाए दे।
0: अच्छा।
2: लेकिन नहलाने रोज हुए।
0: और पानी कैसे पिवा रहे हो?
2: नल को पिला रहे हैं।
0: भैया जो तालाब को पिवाते हो?
2: ना, तालाब को ना पिया मैं।
0: हाँ। क्योंकि पानी हमें जाहे कि अपने पशुओं को कतई साफ पिलाना चाहिए,
2: ताजी पिला।

0: आ रहा है।
1: और ताजी पानी में जो फायदा है कि हमारे पशु बीमार ना हो, और बहुत सी बीमारियां पानी की वजह से होती हैं।
0: 3 बार पानी पी रहे हैं, उधर सुबह को, इधर दोपहर को, इधर शाम को।
1: अरे तो भैया आप तो 5 फेरा पी रहे हो, तो पशुओं ना पियेंगे? अब भाई देखो, गर्मी जब हमें लाग रही है तो हमारे पशुओं को भी ला गई।
0: और दो दो फेरा नहलावे दोपहर को और शाम को,
1: अरे तो जरूरी
0: नदी
1: है।
0: है ना, वो
1: हाँ
0: नहलाने पड़ा है।
1: अरे तो अच्छी बात है कि जहां से पशु तो सुरक्षित है। अब आजकल
0: हाँ
1: का पशु सस्ते हैं, एक सही भैंसिया कम से कम 60-70 हजार की है,
0: हाँ
1: तो अब ऐसे में उनको ध्यान रखो। तो चारा में इस समय क्या दे रहे हो अपने पशुओं को?
0: चारा में इतने टाइम चरी बोए दई है, भूसा है,
1: अच्छा
0: उसमें दाना मिलो दें, गेहूं पिसवा दें थोड़े मिलो दें दाना।
1: दाना मिला दो, तो हरो चारा और सूखो चारा मिला के खिला रहे
0: हाँ
1: हो।
0: मिलाए खिला रहे हैं।
1: अच्छा, देखभाल कैसे कर रहे हो, मच्छर मक्खी से कैसे बचा रहे हो अपने पशुओं को?
0: पंखा बत्ती है उससे चलता रहे,
1: अच्छा
0: बत्ती ना आवे तो मजबूरी है।
1: हाँ, और जो मक्खी उक्की काटती है रात को, तो
0: हाँ।
1: बाकी लगा कर रहे हो?
0: बाकी ताई धुआं रख दें थोड़ा, वे
1: काय को करते धुआं?
0: कंडा दो रखे और आग जलाए दई।
1: और नीम के पत्ता आपने रख दे, चाहे तो नीम की डाली रख दे।
0: हाँ, नीमों की लकड़ी रख दें, पत्ते भी रख दें,
1: हाँ,
0: उसके मारे मच्छर कम लगाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो अब बात करते हैं साहबुल हसन जैदी भैया से, कि देखो भैया, किसान भैया खेती तो कर ही रहे हैं और चाहते हैं कि आमदनी बढ़े, तो आमदनी को देखो एक स्रोत तो हो सकता है पशुपालन। आपकी इलाके बारे में क्या राय है?
2: बढ़िया राय है, पशुपालन जो है किसान के लिए बहुत जरूरी है।
1: हाँ,
2: हाँ, खेत की खाद उसे जो मिल जाए, गोबर की खाद है, वो खेत किसान के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: और काका आदमी काम कर सकते पशुपालन के द्वारा?
2: पशुपालन से आदमी को बहुत है, दूध घर में हो जाता है।
1: हाँ,
2: हाँ, दूध की भी बिजनेस कर सकत है, दूसरे को बेच सकत है,
1: हाँ
2: उसके माध्यम से उसे जो है पैसा मिल जाएगा।
1: हाँ और आजकल तो देखो दूध के उत्पाद भी बना के बेच सकते हैं, चाहे पनीर के रूप में बेच दे।
2: हाँ
1: अब देखो हर चीज बिक जा रही है, मठा भी बिक रहा है, दूध भी बिक रहा है, पनीर भी बिक रहा है, और फिर घी भी बेच सकते हैं। तो अगर हमारे जो भैया हैं वे पशुपालन करें खेती के संग संग, तो ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी और भी चीजें हैं, जैसे कुछ जो काम है खेती के संग कर सकते हैं, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, तो इनकी तरफ का रुझान है गांव वाले भैया को?
2: मछली पालन इसके और रुझान जो है थोड़ा कम है।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: ऐसी क्या बात है कि लोग ज्यादा तरफ ना बढ़ रहे हैं?
2: ऐसा है, उसके लिए देख रेख ज्यादा करने पड़ता है। एक अपनों तालाब खुदवाओ, फिर उसमें मोटर लगवाने पड़ता है। हाँ, इसलिए मछली का पानी गर्म ना पड़ा, उसे बदलने पड़ता है। इस तरीके का मछली पालन करने पड़ता है, मतलब तालाब जो है गांव में मछली पालन हो रहा है,
1: हो
2: उससे
1: रहा है।
2: फायदा है किसानों को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब अहबाब हुसैन जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि किसान भैया जैसे सहफसली खेती करते हैं,
2: जी।
1: गन्ना के संग गोभी लगाई दी, गन्ना के संग सरसों कर दी,
2: जी,
1: जैसे का फायदा होता है
3: इससे डबल फसल मिल जाती है,
1: और लागत पे का असर आता है?
3: लागत कम लगती है, दोनों फसल तैयार हो जाती हैं।
1: दोनों फसल
3: जी
1: तैयार हो जाती हैं। तो का आज रेडियो के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि किसान भैया का है सह फसली खेती ना करते हैं, तो जैसे उनको आमदनी कम होती है, तो आज का बताना चाह रहे हो?
3: सह फसली में क्या कम लागत में दो फसल तैयार हुई, भिंडी भी जैसे बोई जाती है उसमें, गन्ने में, रेजा में, टमाटर भी लग जाता है, मक्का भी जाती है। जब जब फसल कट जाती ये गन्ना सही भी हो जाता है, थोड़े दिन हल्का रहेगा, बाद में बरसात में बारिश हो जाता है, फिर अच्छा गन्ना हो जाएगा।
1: तो मतलब ये है कि सह फसली करके दो फसलों को लाभ भी किसान भैया ले सकते हैं।
3: जी,
1: तो कुछ भैया जा कहते हैं कि यार गन्ना की फसल खराब हो जाएगी, ऐसी कोई बात है का?
3: ना, ऐसी कोई बात नहीं, और फसल अच्छी हो जाती है गन्ना, उसमें दवाई वाई है, खाद पानी नराई गुराई सब लग जाती, वैसे इतनी नहीं लगाते।
1: हाँ, तो गन्ना की फसल में कौन कौन सी खेती कर सकते हैं?
3: गन्ना की फसल में प्याज की खेती हो जाएगी, भिंडी हो जाएगी, और ये तरबूज खरबूजा ये भी हो जाएगा।
1: अच्छा, तो अब धान लगान की तैयारी कर रहे हो आप भी,
3: जी,
1: तो पौध डाल दी,
3: पौध डाल दी,
1: तो कौन सो धान को प्रजाति को चयन करो है?
3: PR 13।
1: PR 13 जाकी कोई खास विशेषता है?
3: इसकी खास बात यह है, सरकारी रेट पर यही PR 13 मांग ज्यादा है, मोटे धान जिसमें चावल का औसत ज्यादा रहा है, सरकार यही धान ज्यादा लेती है।
1: अच्छा, तो इसलिए PR 13
3: तेरह
1: लगा हुआ है आपने, कितने बीघा में लगभग लगा रहे हो?
3: है 10 एकड़ में।
1: अच्छा, तो 10 एकड़ के लिए तो बहुत पौध डालने पड़ी होगी।
3: जी,
1: तो कैसे डाल दी पौध?
3: पौध डाल दी,
1: कई दिना की होगी?
3: हो गई 1 हफ्ता की।
1: 1 हफ्ता की, तो कितने दिन बाद कर दोगे रोपाई जाकी?
3: 15 दिन बाद।
0: 15 दिन।

0: तो रुपाई करत समय का का ध्यान रखने हुए किसान भैयन को, कौन कौन सी बातन को ध्यान रखें जिससे अच्छी हो उनकी धान की फसल?
1: सबसे पहले रुपाई करण से पहले उस पर नियर पर घास की खरपतवार की स्प्रे लग जाएगी, घास चारों से उग जाएगी, फिर नियर डल के कंधार बनवा दिया जाएगा, कंधार बनवा उस पर खरपतवार की स्प्रे मछैटी चैटी कुछ घास नहीं जमे उसका विशेष ध्यान, और जड़ पर खाद लग जाएगी एनपी उनपी के, रुपाई करवा दी, ये सब चीजें देखने हैं।
0: रुपाई कैसे करवाते हो?
1: हाथ से करवाते, और अब मशीन भी आ गई धान बोने वाली, वो कंप्यूटर लेवल करवा के सूखे में किलो बीघा की वो बुवाई करती है,
0: सूखे में कर देती है। लेकिन आपने तो पौध डाली है, तो पौध हाथ से ही लगवाओ?
1: ये तो हाथ से ही लगी पौध।
0: तो जाके ले जो कीचड़ तैयार करते हैं तो वो कैसे करते हो?
1: वो रूटावेटर करते हैं, पहले कल्टीवेटर चलवा दिया, बाद में रूटर, फिर बाद में पटेला लगवा दिया, खेत लेबल हो जाए।
0: अच्छा अच्छा, तो अब कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो धान की फसल की देखभाल के लिए जरूरी हैं?
1: सबसे पहले इसके दवाई वाई या ये खरपतवार उसके ध्यान देखना है, और ये कंधार उसकी, फिर रुपाई उसकी जा करते समय ज्यादा बिगला नहीं लगा देना, ज्यादा घना भी, इन्हीं सब चीजों का ध्यान करने है।
0: ध्यान करने है। तो देखो भैया, आज की कृषि गोष्ठी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें, वहीं रामस्वरूप भैया ने अपने अनुभव बताए, साहबुल हसन जैदी भैया ने अपने अनुभव बताए, और अहबाब हुसैन भैया ने भी अपने अपने अनुभव बताए जिस तरह से खेती कर रहे हैं, सोलर पैनल की बात करी जिससे पानी भर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, रामस्वरूप भैया ने बातें बताई अपने कैसे सब्जी की फसल से लाभ ले रहे हैं, फायदा ले रहे हैं। तो देखो भैया, अब समय ही चलू है कि हम अपनी जो कृषि गोष्ठी है बाको समापन करें। तो आप लोग आज जो कार्यक्रम में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और रघु भैया, अब बता देते हैं आज को सवाल को जवाब। आज को सवाल हो, भूजल संरक्षण में किसान भाई कैसे योगदान कर सकते हैं? तो जाको सही जवाब है, किसान साथी आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को अपनाएकर खेत की मेड़बंदी, फसल चक्र और खेत तालाब निर्माण के माध्यम से भूजल संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। और बात करें आज की नसीहत की, तो आज के कार्यक्रम से हमें जाही नसीहत मिलते हैं, किसान साथी खेतीबाड़ी की आधुनिक तकनीकों को अपनाएकर अपनी आय को दोगुना करें।
0: भैया बहनों, राम राम।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। लीजिए, आप समय हो चला है ग्राम जगत का।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: ग्राम जगत कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोतन को बहुत बहुत स्वागत है। देखो रघु भैया, हमारे जीवन में समय को बहुत महत्व होता है। जो समय को सम्मान देता है, समय भी उसको सम्मान देता है।
3: बिल्कुल, और देखो कहावत भी चलती है कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुगे खेत।
2: बिल्कुल।
3: तो जाको मतलब जो है कि हमें समय को ध्यान रखना है।
2: और देखो रघु भैया, आज कार्यक्रम में हम एक वार्ता लेकर आए हैं, जल संरक्षण आज की आवश्यकता, और वार्ताकार हैं सुश्री प्रियंका गुप्ता। तो आबो भैया बहनों, सुन लेते हैं जब वार्ता।
4: मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरा नाम प्रियंका है, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, जल संरक्षण। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर कल सुबह आप उठें और आपके घर के नल में पानी ना आए, अगर आपके पास पीने के लिए एक बूंद भी पानी ना बचे, अगर खेत सूख जाएं, नदियां खाली हो जाएं और धरती प्यास से तड़पने लगे, तो क्या होगा? शायद हम में से अधिकांश लोग एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस जल को हम जीवन कहते हैं, उसी जीवन को हम अपने हाथों से नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर पानी बहुत दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में पीने योग्य पानी बहुत ही कम बचा है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% पानी

खारा है और केवल 3% पानी ही मीठा है। इतना ही नहीं, उस 3% में से भी अधिकांश पानी बर्फ और ग्लेशियर में जमा है, यानी इंसानों के उपयोग के लिए उपलब्ध पानी 1% से भी कम है। फिर भी हम पानी को ऐसे बहा देते हैं जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। समुद्र का खारा पानी हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। नदियां और झीलों का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और भूजल का स्तर तो मानो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, और हम ये सब जानते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। एक समय था जब गांव में तालाब भरे रहते थे, कुएं पानी से लबालब रहते थे, नदियां पूरे वर्ष बहती थीं। लेकिन आज अनेक नदियां सूखने लगी हैं। कई शहरों में पानी टैंकरों से पहुंचाया जा रहा है। लोग घंटों लाइनों में खड़े होकर सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में 2 अरब से अधिक लोग आज भी सुरक्षित पेयजल की सुविधा से वंचित हैं। जरा सोचिए, जिस पानी को हम ब्रश करते समय बहा देते हैं, उसी पानी के लिए कोई बच्चा कई किलोमीटर पैदल चल रहा होता है। जिस पानी से हम बेवजह गाड़ियां धोते हैं, उसी पानी की कमी के कारण किसी किसान की पूरी फसल सूख जाती है। जिस पानी को हम महत्व ही नहीं देते, वही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना हुआ है। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है जल संकट। भारत दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास विश्व के केवल 4% मीठे जल संसाधन है, यानी हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक हमें कई बार चेतावनी दे रहे हैं, यदि हमने अभी से पानी बचाना शुरू नहीं किया तो आने वाले वर्षों में पानी को लेकर संघर्ष बढ़ेंगे। हो सकता है कि भविष्य में युद्ध जमीन या सोने के लिए नहीं बल्कि पानी के लिए लड़े जाएं। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी माँ से पूछेगा कि माँ नदी कैसी होती है, और माँ उसे क्या जवाब देगी? माँ उसे केवल किताबों में तस्वीर दिखा पाएगी। एक बच्चा बारिश को देखकर खुश हो, लेकिन उसके पास उसे संग्रह करने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, पानी केवल हमारी आवश्यकता नहीं है, यह प्रकृति की धड़कन है। पानी के बिना खेत नहीं, खेतों के बिना अन्न नहीं, अन्न के बिना जीवन नहीं। इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है बल्कि मानव अस्तित्व का विषय है। जब प्रश्न उठता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या केवल सरकार ही जल संरक्षण कर सकती है? नहीं, इसकी शुरुआत हम सभी को अपने घर से करनी होगी। सबसे पहले ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें, क्योंकि एक टपकता हुआ नल साल भर में हजारों लीटर पानी बर्बाद कर सकता है। दूसरा, जहां आवश्यकता हो वहीं पानी का उपयोग करें, क्योंकि बचाया हुआ हर लीटर पानी भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाएगा। तीसरा, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। बारिश का पानी सीधे नालियों में बह जाने देने के बजाय उसे संग्रह करें। विशेषज्ञों का मानना है कि वर्षा जल संचयन अपनाकर हम अपनी जल आवश्यकताओं को बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। चौथा, पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि वर्षा चक्र को भी संतुलित रखते हैं। एक पेड़ अपने जीवन काल में हजारों लीटर पानी को धरती में संरक्षित रखने की मदद करता है। पांचवा, नदियों, तालाबों और जल स्रोतों को गंदा ना करें, क्योंकि पानी को बचाने से पहले उसे स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन सभ्यताओं ने पानी का सम्मान किया वे विकसित हुई, और जिन्होंने पानी को महत्व नहीं दिया वे धीरे धीरे समाप्त हो गईं। आज प्रकृति हमें संकेत दे रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जल स्रोत समाप्त हो रहे हैं। यह प्रकृति का संदेश है कि अब समय आ गया है जागने का। मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक व्यक्ति नदी किनारे बैठा था। उसने एक बूंद पानी को हाथ में लेकर कहा, तुम तो सिर्फ एक बूंद हो, तुम्हारा क्या महत्व? बूंद मुस्कुराई और बोली, अगर मैं महत्वहीन हूँ तो समुद्र भी सिर्फ बूंदों का ही समूह है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हर बूंद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम जब एक बूंद बचाते हैं तो हम केवल पानी नहीं बचाते, हम किसी किसान की उम्मीद बचाते हैं, किसी बच्चे का भविष्य बचाते हैं, किसी परिवार की जिंदगी बचाते हैं। आज आवश्यकता है किसी बड़े आंदोलन की नहीं बल्कि छोटी छोटी जिम्मेदारियों की है। जब हर घर पानी बचाएगा तब पूरा देश पानी बचाएगा। और याद रखिए, अगर आज हम पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। वो हमसे पूछेंगी कि जब समय था तब आपने क्या किया, और शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें, हम पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे, अनावश्यक पानी नहीं बहाएंगे, वर्षा जल का संग्रह करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे। अंत में मैं अपनी बात इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी, पानी की हर बूंद में जीवन बसता है, धरती का हर सपना इससे सजता है, आज इसे बचा लो, कल यही सहारा होगा, वरना आने वाला कल केवल एक सवाल होगा। और याद रखिए,
जब आखिरी पेड़ कट जाएगा, जब आखिरी नदी सूख जाएगी और जब आखिरी बूंद भी खत्म हो जाएगी, तब इंसान समझेगा कि पानी ही सबसे

0: बड़ी दौलत था। जल बचाइए, जीवन बचाइए। धन्यवाद।
1: अबे हमारे साथियों ने सुनी आज की वार्ता, विषय हो जल संरक्षण आज की आवश्यकता, और वार्ताकारी सुश्री प्रियंका गुप्ता। और देखो रघु भैया, हमने वार्ता सुन ली, अब हमारे बहुत से साथियों ने अपनी फरमाइश भेजी है और इंतजार कर रहे होंगे कि रघु भैया क्षमा बहन बातें ही करे जा रहे हैं, आज का वो लोकगीत ना सुनाओ। तो भैया सुनवा रहे हैं लोकगीत,
2: लोकगीत तो सुनवाऊंगी क्षमा बहन, लेकिन पहले पढ़ देते हैं भैया बहनन के कमेंट। हमें कमेंट मिलो है सोनवीर सिंह भैया को शाहजहांपुर से।
1: और वहीं फरमाइश भेजने वाले हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य और उनको परिवार। वहीं अपनी फरमाइश भेजिए आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मूरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदली जंगेल ने।
2: साथ ही साथ हमें फरमाइश मिली है ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव और उनके परिवार की। हमें फरमाइश मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा की और उनके परिवार की, मीका विर्क की, ताज अंसारी जी की, मदौसा दोना मुकेश राणा जी की, रामचंद्र मखीना जी की।
1: और वहीं फरमाइश भेजी है विजयपाल यादव जी ने, शुभम यादव, शिखा और गुड़िया यादव ने। और फरमाइश भेजने वाले हैं गांव कुम्हड़ा हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन और नाजिया इब्राहिम ने। और वहीं फरमाइश भेजी है ओम प्रकाश राय जी ने, नबी हसन अब्बासी जी ने और जमुना प्रसाद जी ने।
2: और ठाकुर सिंह मुन्ना सिंह कठेरिया जी की फरमाइश हमें मिली है ग्राम दूने नगर से।
1: और फरमाइश भेजने वाले हैं हमारे नियमित श्रोता लाद मोहम्मद अंसारी जी। तो आओ भैया बहनों, आप सबकी पसंद पे सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: रघु भैया, अब अपने साथियों से अनुमति ले लेते हैं आज के कार्यक्रम से। तो आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से अपनी बहन क्षमा
3: और भैया रघु को दो अनुमति। भैया बहनों
2: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:15 और 25 सेकंड हुए हैं। खोई व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं आकांक्षा पुत्री राजू, आप जोगीपुरा थाना कोतवाली जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी उम्र लगभग 21 वर्ष है, लंबाई 5 फीट लगभग, इकहरा मजबूत जिस्म, चेहरा अंडाकार व रंग गोरा है। इन्होंने सलवार सूट पहना हुआ है। ये हिंदी भाषा जानती हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। इसी क्रम में एक और नाम है कविता का, पुत्री नरेश, थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं की ये निवासी है। आपकी आयु 28 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 2 इंच, इकहरा मजबूत जिस्म, चेहरा लंबा व रंग गोरा है। ये 15 अप्रैल 2026 से लापता हैं। हिंदी भाषा जानती हैं। इनसे संबंधित किसी भी सूचना के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें।

यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने गंतव्य क्षेत्र तक पहुंचें। अपने और अपने से आगे वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और हमेशा याद रखें, दुर्घटना से देर भली। नशा, नींद और तेज रफ्तार दुर्घटना के हैं ये आधार। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों

0: एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस्ड श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत

0: और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
2: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
1: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। समय मिलाइए 7:31 और 32 सेकंड हुए हैं और हम आपके ढेर सारे पत्रों के साथ लेकर हाजिर हो गए हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर। तो कौन कौन श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कौन से उनके फरमाइश के गीत हैं, ये सब जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। शामिल करेंगे सभी पत्रों को। वैसे आप भी हमारे कार्यक्रम में पत्र लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारे कार्यक्रम का पता, कार्यक्रम अनुरोध गीत, द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर 243001। बस इस पते पर पत्र लिख भेजिए, अपना नाम बता और अपनी फरमाइश का गीत, और बस शामिल हो जाइए हमारे कार्यक्रम में। चलिए फिलहाल देखते हैं कि पहले श्रोता कौन है आज के और कौन सा गीत पहला आप तक आने वाला है। पहले श्रोताओं के नाम लेते हैं। तो आप हैं शीतल, रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। तिलोक चंद्र वर्मा।

श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा, सचिन राम, माफ कीजिए, समर राज, आर्यन वर्मा, वीवी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि और श्वेता वर्मा। इसी क्रम में ये पत्र मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से है, मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, इकबाल फरीदी का। साथ में है सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये पत्र सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से है, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, रामुज तावा खान, राउफ, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा देवी, अजय, फजलुद्दीन भाई, आप अशरफ खां, पानी टंकी, छावनी, होली चौक के पास से, बरेली से हैं। ये पत्र मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगेना बरेली से हमें मिला है। पन्नीलाल सागर, विनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना भारती, एकता, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश का। अब आपको बताते हैं कि हमारे इन श्रोताओं ने किस गीत के लिए अनुरोध हमसे किया है। तो पति पत्नी और वो इस फिल्म से इस गीत को इन्होंने सुनना चाहा है, सलमा आगा, मोहम्मद अजीज की आवाजों में।

सलमा आगा मोहम्मद अजीज की आवाज में ये खूबसूरत गीत, और इसके बाद अगला कौन सा गीत है और किन श्रोताओं की पसंद पर है? अगले गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजे हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिवा कौर ने, बिहारी कॉलोनी महास मुंद से बलीउल्लाह फकीर, डब्लूल्लाह फकीर और परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से हैं बद्रू अली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी, पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से मुनब्बर लल्ला, नसरीन मिर्जावी, अरवाज खान, शहबाज खान, बादाम किशमिश जहां, सूफिया महबूबा, फातिमा गजाला फातिमा, नरगिस वानो, कशिश वानो और रजिया शहजादी, लच्छनपुर से हैं रामजी साहू और जीवनलाल रजक, ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश तानी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर, अलीगंज रोड ग्राम महोलिया से हसरत खां, हशमत खां, अजमत खां, डालमिया, नसरीन और रईश बानो। ये पत्र पाकीजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबद मध्य प्रदेश से हम तक आया है। भेजने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादा खत्री। आप हैं महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे और हनुमान बोडखे। अब आपको बताते हैं।

खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ये पत्र शिवाजी चौक रबचिम छत्तीसगढ़ से हमें मिला है, अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। मोहल्ला हलवाइयन, माफ कीजिए, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से हैं फजरुद्दीन भाई, अबरार अफजल, राम प्रसाद शर्मा। पीर बहुड़ा बरेली से हैं आजाद खान, दिलशाद, मुस्तकिम और तबस्सुम। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। मोहल्ला गढ़िया बरेली से हैं कैसर शमशी, अजीम शमशी, सलीम, नवेद, रजिया शमशी और इनके परिवार के सभी सदस्य। बरेली जंक्शन से हैं वीरेश सिंह चौहान, गरीब भाई, विक्की भारद्वाज, सोनू, अंकित सिंह चौहान और इनके सभी साथी। ककराला बदायूं से है मसरूर खान और ये पत्र कटरा चांद का। मौर्य मंदिर पुराने शहर बरेली से मिला है हमें अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य का। आप सभी की फरमाइश पर अब कार्यक्रम का ये गीत हीरो नंबर 1 फिल्म से है, विनोद राठौर और पूर्णिमा की आवाजों में।

और अब समय हो चला है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। इस अंतिम गीत के लिए पत्र हमें मिले हैं आप सभी के, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, विट्टा बजाज और साहिल। चंडीगढ़ से ये पत्र सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, मेहराज जहां, आप आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी की फरमाइश पर आप तक भेज रहे हैं विश्वात्मा फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना, विजू शाह का संगीत, आवाज है साधना सरगम की।

कार्यक्रम के इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम अनुरोध गीत का जो समय है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम अनुरोध गीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। रात्रि के 8 बजे हैं और हम अब लेकर हाजिर हुए हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा। प्रतिभागी हैं मनोज सक्सेना, सत्यवती सिंह, ऋषि कुमार शर्मा, राम कुमार कोहली, अखिलेश कुमार गुप्ता, कमलकांत और अंजलि वर्मा।
1: मैं आज का जो 90 वर्ष की जीवन यात्रा के शुभ अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सबके लिए शिक्षा प्रद है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज जो हमारा कवि सम्मेलन हो रहा है इसमें हमारे प्रतिभागी जो प्रतिभाग करेंगे एक कवि के रूप में, उनमें सत्यवती सिंह सत्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, और श्री कमलकांत श्रीवास्तव जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, उनका कवि गोष्ठी में स्वागत है, और इसी क्रम में श्रृंखला में ऋषि कुमार शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, उनका स्वागत है, और हमारे डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी जो एक गीतकार के रूप में, मुक्तकार के रूप में, दोहाकार के रूप में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका मंच पर स्वागत है। और इसी श्रृंखला में हमारे बड़े अच्छे गीतकार जो अनेक विषयों पर अपने गीतों का सृजन करते रहते हैं हमारे श्री मनोज सक्सेना जी, मनोज हमारे बीच में मौजूद हैं, और इसी श्रृंखला में हमारी कवित्री बहन श्रीमती अंजलि वर्मा जी मौजूद हैं कवि गोष्ठी में, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें मैं अपने सारे कवियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इसी श्रृंखला में मैं हमारे बीच में बहुत प्रतिष्ठित कवित्री श्रीमती सत्यवती सत्या जी मौजूद हैं, और वो जैसा कि हमारी परंपरा रहती है कि हम अपनी कवि गोष्ठियों का शुभारंभ विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की वंदना से करते हैं, तो मैं वंदना के लिए निवेदित हूँ श्रीमती सत्यवती सिंह सत्या जी से कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत करें।
2: माँ शारदे के चरणों में वंदना रखती हूँ।

0: ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो।
1: धन्यवाद। अभी हम सब सत्यवती सिंह सत्या जी से सरस्वती वंदना सुन रहे थे। इसी के साथ आज ये 90 वर्ष की जीवन यात्रा पर आयोजित आकाशवाणी के द्वारा एक काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करने के लिए मैं प्रथम सुमन के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय गीतकार श्री मनोज सक्सेना जी। मनोज आए और अपनी कविता पाठ करें। आदरणीय सक्सेना जी,
2: सर्वप्रथम उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करता हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए और इस कार्यक्रम में मेरी सहभागिता रही है, मेरा सौभाग्य है। एक छोटी ही रचना पढ़ता हूँ। कुछ बहनें कुछ बेटियां यहाँ मौजूद हैं, उस संदर्भ में मेरी ये रचना है। हर

और बेटियों को क्या होना चाहिए। झांसी की रानी दुर्गावती बक्षेन्द्रीपाल कहाँ।

0: करते हैं। धन्यवाद।
1: अभी बहुत ही सुंदर मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना से उत्प्रेरित गीत प्रस्तुत कर रहे थे हमारे मनोज सक्सेना मनोज जी, और इसी श्रृंखला में हमारे डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी आए और अपना काव्य पाठ करें। आदरणीय गुप्ता जी।
2: सर्वप्रथम आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, तो यहाँ के लिए सबको बहुत बधाइयाँ, भूर भूर बधाइयाँ, शुभकामनाएं। यहाँ के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, जो भी इससे कनेक्टेड है, सबके लिए मेरी बहुत बधाइयाँ और मंचासीन सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जितने हमारे कवि भाई बहन बैठे हैं सबको मेरा भूर भूर प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ कुछ बेटियाँ बैठी हुई हैं, बहनों ग्रुप में बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं। तालियाँ बजाते रहिए और अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। बेटियों कुछ पंक्तियाँ देखिए।
3: इस धरा बाग की फूल है बेटियां,
2: अब सुनिएगा।
3: इस

हरियालियाँ बीज लहे कोर हैं बेटियाँ, प्रेम का बीज लहे कोर है बेटियाँ। हमारी बहन की दाद मिल रही हो, धन्यवाद। और सुनिएगा, सारे धर्मों की सिर मोर हैं बेटियाँ, सारे धर्मों की सिर मोर हैं बेटियाँ, और मेरी अमुराई की बौर हैं बेटियाँ। बेटियाँ मेरे बेटों से कमतर नहीं, बेटियाँ मेरे बेटों से कमतर नहीं, हर प्रगति का नया दौर है बेटियाँ, हर प्रगति का नया दौर है बेटियाँ, इस धरा बाग की फूल है बेटियाँ। अंतिम पंक्तियाँ, जीत मिलती जिधर चल पड़े बेटियाँ, बहुत नाजुक पंक्ति है, जीत मिलती जिधर चल पड़े बेटियाँ, फूल खिलता है जब हंस पड़े बेटियाँ, फूल खिलता है जब हंस पड़े बेटियाँ, आतताई निशाचर को करती खत्म। अब सुनो, आतताई निशाचर को कर

0: बेटियां, सबको बहुत प्रणाम करते हैं सब, सबको प्रणाम, धन्यवाद।
1: अभी हमारे बहुत ही सम्मानित कवि आदरणीय डॉक्टर अखिलेश गुप्ता जी अपना काव्य पाठ कर रहे थे। हमारे बहुत ही अच्छे गीतकार आदरणीय भाई श्री कमलकांत श्रीवास्तव जी आए और अपना काव्य पाठ से हम सबको प्रसाद स्वादित करें।
2: धन्यवाद संचालक महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और आज आकाशवाणी परिवार के 90 वर्ष पूरे होने पे हम सब की ओर से आकाशवाणी परिवार को और देश को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। एक छोटा सा मुक्तक देते हैं आपको कि प्रेम का एक निमंत्रण दिया था तुम्हें।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या बात।
2: कि प्रेम का एक निमंत्रण दिया

था तुम्हें, तुम हृदय से लगाते तो क्या बात थी। और फिर ना तुम ही मिले, ना निमंत्रण मिला, दो कदम साथ आते कि फिर न तुम ही मिले, ना निमंत्रण मिला।

0: ना कुछ कह सके मेरे हालात पर तुम बहुत थे हंसे।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात।
0: और गर मिलाते नजर फिर झुकाते नजर और फिर मुस्कुराते।
1: क्या बात, क्या बात।
0: सिंगार का दूसरा रूप सुनाते हैं कि हमने जी तो लिए जिंदगी बिन तेरे, कि हमने जी तो लिए जिंदगी बिन तेरे, जुदा होने की हिम्मत जुटा ना सके। और यूं तो अक्सर मिले हम किसी मोड़ पर, चाह कर भी तुम्हें हम कि यूं तो अक्सर मिले हम किसी मोड़ पर, चाह कर भी उन्हें हम

0: तेरे।
1: और पंक्तियां हैं,
0: कि उनकी तस्वीर आंखों में बनती तो है, धुंधली यादों के साये लपेटे हुए।

0: के तुमने जीतो ली।
1: अगली पंक्तियां आप तक भेजते हैं कि हमने पातो ली जीवन की हर

मगर सब अधूरी लगी, और उम्र के साथ सब कुछ घटने लगा। दिल से यादें तुम्हारी घटा, कि उम्र के साथ सब कुछ घटता गया। दिल से

0: और अंतिम पंक्ति आप तक सौंप रहे हैं
1: कि यूं तो सूरज भी निकला और दिए भी जले,

0: वाह भाई
1: श्रीवास्तव। अश्क चुपके से आंखों से ढलते रहे। कि अश्क चुपके से आंखों से ढलते

यूं तो सूरज भी निकला, दिए भी जले, जगमगाने लगा ये सारा जहां, और अश्क चुपके से आंखों से ढलते रहे। दर्द दिल का किसी

0: ना सके। और यूं तो अक्सर मिले हम किसी मोड़ पर, चाह कर भी उन्हें हम बुला ना सके। तुमने जी तो
1: बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रहे थे हमारे बहुत ही अच्छे गीतकार भाई कमलकांत श्रीवास्तव जी। और इसी श्रृंखला में ऐसे हमारे बड़े भाई श्री ऋषि कुमार जी आए और अपने गीतों की प्रस्तुति अपना काव्य पाठ करके हमें आराधित करें।
2: धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पे इसके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इससे जुड़े हुए हैं सभी का वंदन अभिनंदन। और ये यात्रा जो इसी तरीके से और चलती रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मेरा दिल लेके मुकर जाएंगी, इन पे तू ऐतबार मत करना, इन पे तू ऐतबार मत करना। तुझको ये तो समझ न पाएंगी, तेरे हर गम में मुस्कुराएंगी।

उस पे मरहम नए लगाएंगे, उस पे मरहम नए लगाएंगे।

0: अपना दिल बेकरार मत करना, तू हसीनों से प्यार मत करना।
1: तू हसीनों से प्यार मत करना, अभी गीत की प्रस्तुति दे रहे थे हमारे परम आदरणीय शर्मा जी। हमारे बीच में अभी हमारी बहुत ही प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती अंजलि वर्मा पधार चुकी हैं और मैं निवेदित हूँ कि वो अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। आदरणीय श्रीमती अंजलि वर्मा जी,
2: आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ। प्रस्तुत है, हाँ मैं वृक्ष हूँ, हाँ मैं वृक्ष हूँ, हरियाली भू मेरी जन्मदात्री, हरियाली भू मेरी जन्मदात्री, शनेह शनेह शनेह शनेह बढ़ते यौवन को

0: देख मैं धन्य हुआ। शनै शनै बढ़ते यौवन को देख मैं धन्य हुआ। प्रकृति की गोद में सिर नवा मेरा मनोबल बढ़ चला। प्रकृति की गोद में सिर नवा मेरा मनोबल बढ़ चला। मेरी कोपल मेरे पल्लव, मेरी कोपल मेरे पल्लव, ये सारे मेरे फल फूल। सबके सब सेवा को तत्पर, सबके सब सेवा को तत्पर, हाँ मैं वृक्ष हूँ। अब मैं बन चला शरण स्थली, खग मृग और पथिकों की, पक्षी करते बैठ नीड़ में चोंच मिलाकर सुंदर गान। पक्षी करते बैठ नीड़ में चोंच मिलाकर सुंदर गान। मन वीणा झंकृत हो उठती, मन वीणा झंकृत हो उठती, तरु पल्लव झूमते गाते मीत राग। हाँ मैं वृक्ष हूँ, हाँ मैं वृक्ष हूँ। ऋतु राज कह गए ले अंगड़ाई, अपना अस्तित्व बनाए रखना, अपना अस्तित्व बनाए रखना, प्रेम राग से रंजित रहना, वंश बेल को बढ़ने देना। फल पके, फल पके छिटके भू पर, लेकर मेरा ही रंग रूप, ते नूतन वृक्ष पल्लवित करने को, हाँ मैं वृक्ष हूँ। काल चक्र गतिमान हुआ, काल चक्र गतिमान हुआ, घात प्रतिघात आघात से है नूतन वृक्ष चिर परिचित यौवन पा धन्य हुआ। पर ये क्या, पर ये क्या, अब मैं बूढ़ा हो चला, पर ये क्या, अब मैं बूढ़ा हो चला, अंग शिथिल होने को है, अब पहले जैसी बात कहाँ। अंग शिथिल होने को है पर पहले जैसी बात कहाँ। जीवन के अंतिम पड़ाव में लोभ भय जिज्ञासे संतप्त, छोड़कर अपना ग्राम शरण स्थली कर्म स्थली, मानव सेवा को तत्पर, हाँ मैं वृक्ष हूँ, हाँ मैं वृक्ष हूँ। धन्यवाद आप सबको।
1: अभी श्रीमती वर्मा जी से बहुत ही सुंदर पंक्तियों को सुन रहे थे।
2: अभी तक जो मंच पे संचालन कर रहे थे, हम लोग सब लोगों को बारी बारी से पढ़ा रहे थे, अब मैं उन्हीं को कविता पाठ के लिए मंच पे बुलाना चाहती हूँ। राम कुमार कोहली जी, आइए कोहली जी अपना काव्य पाठ कीजिए।
1: धन्यवाद। आज बहुत ही श्रृंगारिक गीतों को हम सब ने सुना, हम सब आह्लादित हुए। मैं वैसे तो श्रृंगारिक गीत कम लिखता हूँ, लेकिन एक ऐसा ही गीत प्रस्तुत है कि मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रियतम तुमको पाने को, मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रियतम तुमको पाने को, जैसे सूरज श्रम करता है भू पर जल बरसाने को, ज्यों कबीर में भाव सजग हो, ज्यों कबीर में भाव सजग हो, शब्दों का भंडार अमित एक एक कर चयन करे तो, जो होवे आकार सहित, फिर उसकी गयता है तू, फिर उसकी गयता है तू, श्रम करता जितना गाने को, मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रीतम तुमको पाने को, जैसे गंगन सोखता जल को, जैसे गंगन सोखता जल को वायु आद्र बनाने में, और शशि की किरणें शीतल होती शुभ्र सुधा सरसाने में, जैसे गंगन सोखता जल को वायु आद्र बनाने में, शशि की किरणें शीतल होती शुभ्र सुधा सरसाने में, ये सब कुछ होता है तभी, ये सब कुछ होता है ज्यों सबनम टपकाने को, मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रीतम तुमको पाने को, ज्यों मिट्टी में साझा कर, ज्यों मिट्टी में साझा कर, करता किसान बीजारोपण फल फूलों के इंतजार में, करता रहता संपोषण उसकी रक्षा अभिरक्षा हित, उसकी रक्षा अभिरक्षा।

0: सहित दृष्टिपात हर दाने को। मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रीतम तुमको पाने को। मात पिता निस्वार्थ भाव से करते जीऊं लालन पालन। और शिशु कहता करते वैसा ही हित में उबटन प्रक्षालन। मात पिता निस्वार्थ भाव से करते जीऊं लालन पालन। शिशु कहता करते वैसा ही हित में उबटन प्रक्षालन। जैसे चिड़िया चूजे का चूजा करती है लाने को। मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रीतम तुमको पाने को। अंतिम बंद कि करता है अभ्यास निरंतर ईश भक्ति का अनुयायी। करता है अभ्यास निरंतर ईश भक्ति का अनुयायी। और जिज्ञासा और ज्ञान ध्यान से उसमें आती सुषमाई। जैसे सुरति सुषुम्ना तक कठिनाई है ले जाने को। मैंने क्या क्या नहीं किया है प्रीतम तुमको पाने को। जैसे सूरज श्रम करता है भू पर जल बरसाने को। जैसे सूरज श्रम करता है भू पर जल बरसाने को। अब आज की इस कवगोष्ठी की अध्यक्षा के रूप में विराजमान श्रीमती सत्या जी, जो स्वयं में ही एक संस्था है। आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था का संचालन करती हैं और कई वर्षों से आप इस कार्य को निरंतर अनवरत रूप से कम 4 कवियों को हर महीने सम्मानित करती हैं आप, और हर वर्ष एक पत्रिका का विमोचन भी करवाती हैं, उसकी संस्थापक भी रहती हैं और उसकी संपादक भी रहती हैं। तो ऐसी हमारी कवित्री बहन और जिनकी संस्था है शुभम मेमोरियल साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था, तो मैं निवेदित हूँ ऐसी बहन सत्या जी से, जो स्वयं में ही एक संस्था है। बहुत अच्छे तरुणों के साथ आप अपनी गजलों का गायन करती हैं। आइए आदरणीय बहन श्रीमती सत्या जी।
1: धन्यवाद मान्यवर जी। अब मैं एक गजल सुनाने आपको जा रही हूँ। स्वागत।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी हम सुन रहे थे आज की कवि गोष्ठी की अंतिम कड़ी के रूप में श्रीमती सिंह सत्या जी को, और आज की आकाशवाणी के माध्यम से ये बड़ा ही सफल कवि गोष्ठी रही। धन्यवाद, इसी सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को धन्यवाद, श्रोतागणों को भी सादर प्रणाम जिन्होंने इस कवि गोष्ठी में चार चांद

0: धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन

0: गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
4: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
3: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
5: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर

0: अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
4: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों।

0: आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनैना फिल्म के गीत से, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

वो फिल्म सुनैना में सुना। अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया सौदागर फिल्म का गीत, गीत और संगीत एक बार फिर से रविंद्र चैन का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

लता मंगेशकर के बाद आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में। रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, वो लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन, इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

0: ना क्या कहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

0: 1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।
1: एक

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

साठ से सत्तर के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए, जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का
1: पवन करे शोर।
3: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक से धार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध, आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled चानन भेल। Continuing this program, she now presents a composition titled एकता हम बारी कुमारी।

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कुहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled Baate Heri Din Kaati Nor Bahiye.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अवन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition.

0: क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं मैं अमीना हुसैन।
1: नमस्कार।
0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरु नाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आबेगरे के ही कही थीबा कथा मानव तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछी जाने नहीं, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

अंत में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखा रे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिकला टोरी। पहली ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमार से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।